मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 1 जून सन 2026। सुबह के 5:56 हुए हैं। प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं समाचार। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 18 तारीख को होगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंदतेग चेगलिंग मठ में अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी।

0: प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। अब सुनते हैं भक्ति संगीत से महकती वंदना। शुरुआत करते हैं समूह स्वर में देश गान के साथ।

0: आलेख है श्री एनपी नामदेव का।
1: त्याग ही तपस्या है। त्याग करने से ईश्वर प्रसन्न होकर मोक्ष प्रदान करते हैं। त्याग ही परमार्थ की कसौटी है। गृहस्थ को चाहिए कि वो अपना तन मन धन दूसरों के हित के लिए न्योछावर कर दे। संत तुलसी कहते हैं, मुखिया मुखसो चाहिए खान पान को एक, पालय पोषय सकल अंग तुलसी सहित विवेक। वृक्षों में फल दूसरों के खाने के लिए लगते हैं। नदियों का पानी प्राणियों की प्यास मिटाने के लिए बहता है। समुद्र में पानी अपरिमित गहराई तक इसलिए भरा रहता है ताकि वो अधिकाधिक मात्रा में भाप भरी हवाएं तैयार करे, ताकि वर्षा हो सके। इस शरीर का लक्ष्य ही धर्म साधना है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म का अभिप्राय धारण करना है और त्याग के धारण करने से ही परम शांति मिलती है। लोभ त्याग का दुश्मन है, इसलिए लोभ से दुख का संचार होता है। वास्तव में त्याग ही जीवन का आभूषण है। पंच तत्वों के वरदान से ही इस शरीर का निर्माण होता है। इसमें क्षितिज जल पावक गगन और समीर व्याप्त है। शरीर में सहनशीलता का गुण क्षितिज तत्व के कारण ही मिलता है। रक्त जल का स्वरूप है, प्राणवायु समीर का अंश है, जठराग्नि पावक का प्रतिरूप है और जीवन का चरमोत्कर्षी गगन का प्रतिबिंब है। पंच तत्वों के कारण ही आत्मा को जीवत्व प्राप्त होता है। जब यह शरीर निष्प्राण हो जाता है तब यही पांच तत्व महातत्वों में विलीन हो जाते हैं। क्रोध का त्याग करना ही क्षमा है। क्षमाशील व्यक्ति ही क्रोध को पराजित करता है। क्रोध पाप का मूल है। क्रोध को जीतना इंद्रियों पर विजय पाना है। इंद्रियां अजय हैं, परंतु तपोनिष्ठ उस पर विजयश्री प्राप्त कर लेता है। अतः इंद्रिय जयी के लिए कोई भी सांसारिक पदार्थ दुर्लभ नहीं है। वो मोह से मुक्त होकर निष्प्रिय हो जाता है। न तो उसे किसी वस्तु की इच्छा होती है और न किसी वस्तु की अनिच्छा होती है। वस्तु के अभाव में दुख नहीं होता और मिल जाने पर सुखी होता है। वो दिन में जागृत होकर भी सोता है और रात्रि में सोकर भी जगाता है। गीता के अनुसार उस योगी की मन स्थिति स्थित प्रज्ञ हो जाती है। उसका जीवन आदर्श सर्वस्व त्याग और निस्वार्थ सेवा हो जाता है। सेवाहीन त्याग निष्फलदायी होता है। महात्मा गांधी अपने पारिवारिक सुखों का त्याग कर भौतिक ऐश्वर्य की स्पृहा से अलग मानवता की सेवा करते रहे। संत विनोबा दरिद्र नारायण को भूमि समर्पित करते रहे। मदर टेरेसा का दीन दुखियों की सेवा करना ही एक मिशन है। राजा रंतिदेव ने प्यासा रहकर भी मरना उत्तम समझा, लेकिन अपने लिए एक घूंट पानी भी बचा न रखा। राजा रघु एक पत्नी तो क्या, अपनी सभी पटरानियों को मुनि को दान देने में तिल मात्र भी संकोच नहीं किए। राजा जनक इस संसार में रहते हुए भी असांसारिक विदेह हो गए। त्याग की महानता अनंत है। महर्षि दधीचि ने असुरों के संहार के लिए अपनी हड्डियों का त्याग कर दिया। राजा हरिश्चंद्र सत्य की रक्षा के लिए अपने राज्य का त्याग कर दिए, क्योंकि त्याग ही सत्य है, त्याग ही शिव है और त्याग में ही सुंदरता निहित है। अतः समष्टि की रक्षा के लिए व्यष्टि का त्याग करना चाहिए। अपने राष्ट्र की समृद्धि के लिए अपने पारिवारिक ऐश्वर्य का त्याग करना उचित है, परंतु कथनी मीठी खाण सी करनी विष की लोए। त्याग को अपनाना कोई एक दिन के कमाल का खेल नहीं है। इसके लिए सतत प्रयास और नित्य प्रति साधना की आवश्यकता पड़ती है।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। आलेख था श्री एमपी नामदेव का। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए अब सुनते हैं रामचरितमानस गान। गायक स्वर है ए हरिहरन और वाणी जयराम का और संगीत संयोजक थे हैं सतीश भाटिया।
2: एपिसोड 187।

माता कैकेयी की कठोरता तथा कुटिलता की भर्त्सना करके भी भरत के हृदय में सुलगती आग शांत नहीं हुई। उधर क्रोधाग्नि में जलते शत्रुघ्न के सामने मंथरा जो आई तो उन्होंने एक लात जमा कर उसकी कुबड़ फोड़ डाली और झूठी पकड़कर उसे घसीटने लगे थे कि स्वभाव से दयालु भरत ने छुड़ाकर उसके प्राणों की रक्षा की। भरत और शत्रुघ्न माता कौशल्या के समक्ष उपस्थित हैं। दिवंगत पिता तथा वनवासी राम लक्ष्मण और सीता को देखने के लिए बिलखते भरत को माता कौशल्या धीर गंभीर भाव से सांत्वना दे रही हैं। पिता के वचन की रक्षा के लिए राम ने राजसी वस्त्राभूषण त्याग कर वलकल धारण किया। ऐसा करते उन्हें न तो विषाद हुआ और न ही हर्ष। मन में न आसक्ति थी न क्रोध। सबके संतोष के लिए जब वे वन को चले तो सीता भी उनके पीछे चल पड़ी। अग्रज के वन गमन का समाचार सुनकर लक्ष्मण भी अयोध्या में नहीं रुके।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान, गायक स्वर थे ए हरिहरन और वाणी जयराम के, संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:45 हुए हैं। धान की बुआई हेतु उन्नत कृषि यंत्र विषय पर कृषि चर्चा आप सुनते हैं डॉक्टर आर के नायक से।
1: किसान भाइयों राम राम। पुराना हमर पद्धति है जैसे कि बीज के बुआई ला हमन छिड़का बुआई से करथन, धान के बुआई जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में होते तो ओला हमन बो देथन, ओकर बाद तहाँ ब्यासी करके हम धान के उपज लेके हम कोशिश करथन। लेकिन कई बार ऐसे होते कि धान के बुआई हर यदि हम छिड़का बुआई करबो तो उसमें जो नुकसान है, और ऐसे समझा कि एक ठो क्लासरूम है और उसमें हमन 50-60 जन बच्चा ला बिठा देबो और कहो कि तुम इन में खेला तो खेले नहीं सके। तो वैसे ही सेम हमार फसल भर भी होते, तो यदि हमन ओला पुराना पद्धति ला छोड़ के कुछ नया पद्धति में जाबो, जैसे कि धान के बुआई हर सीड ड्रिल से भी हो सकत है, और ओकर अलावा एक ठो हमारा नवा मशीन है DSR, ओकर नाम है डायरेक्ट सीडेड राइस करके एक मशीन है, जेमें एक इंक्लाइंट प्लेट प्लांटर रहते, जेमें इंक्लाइंट प्लेट में हमर धान हर जाके एग्जैक्ट 2 दाना या 3 दाना जैसे हमारे रोपा लगाथन 3 ठो पौधा लेके, तो वैसी सेम 3 ठो दाना जाके जमीन में जाते और तीनों पौधा हर अलग से ग्रोथ होते, तो जेमें हमर जो रोपा के पद्धति है तेकर बराबर लगभग धान के उपज हो जाते। तो ओकरे बर आज मैं आप मल्ला एक सीड ड्रिल के क्या फायदा होते तेकर बारे में चर्चा करे बर आज मैं डिस्कशन ला करत हूँ। तो बीज के बुआई यदि हम सीड ड्रिल से करबो तो बीज के समान गहराई में उहर जाही। गहराई मतलब जैसे कि आप मन जानत हो कि हमन जो छिड़का बुआई करथन ते में क्या होते कि अधिकांश बीजर ऊपर में रह जाते, जेला बाद में चिड़िया हार या फिर कोई चींटी मन खा लेते हैं या कई टाइप के वो नुकसान है। जैसे पानी गिरीस कस के तो वो जो पानी है तेहर ओला बहा के दूसर खेत ले जाते, ये आप मन मार्क करे हुए। तो बीज के गहराई एग्जैक्ट होना चाहिए 5 सेंटीमीटर के जमीन के अंदर ऊपर के परतले होना चाहिए, और ओकर साथ में यदि खाद के भी बुआई यदि साथ में हो जाए और यदि 2 सेंटीमीटर और नीचे में रही तो जैसे ओकर पौधा के जड़ निकली तो ओला तुरंत खाद हर मिल सके। यदि हम छिड़का बो देबो का होई कि बीज हर कोनोठी है और खाद हर औ कतक दूर में गिरत है तो वो दोनों के डिस्टेंस ज़्यादा हुई तो कभी भी वो हर पाए नहीं सके बीज हर हमर। तो ओकरे बर सीड ड्रिल में बुआई करे ले थोड़े कुन हमर जो पौधा ला मिलना चाहिए खाद हरते हर जल्दी मिलते। ओकर अलावा जैसे लाइन से लाइन की दूरी मेंटेन है तो आप बाद में जब भी हमर खरपतवार आई तो वो बीच में एक अंबिका पेडी वीडर करके एक वीडर आते हैं जेला चला के आप मन अपन के खरपतवार के नियंत्रण कर सकत है, और इसमें उपज हर ज़्यादा थोड़े बढ़ सकते हैं। काबर कि जैसे हम ब्यासी करथन तो ब्यासी में भी क्या होते कि जमीन ले हम एक पौधा ले उखाड़ के दोबारा लगाए के कोशिश करथन, जिसमें खरपतवार जो रहते तेहर जमीन में गड़ जाते और हमारे धान जो रहते तेहर हमारे उपज ला देते। तो वही सेम चीज़ हमारे अंबिका पेडी वीडर में होते, जब हमला चलाथन तो जतका भी खरपतवार रहते वो लाइन में और सब मर जाते और पौधा और भी थोड़े कुन हिलते। अहिले के कारण क्या होते कि कुछ जड़ हर कुछ थोड़ा बहुत टूटते, जितकी टूटती उतकी ठीक कंसाओं में उपज ज़्यादा बढ़ते। जैसे 3 ठो पौधा लगे हैं पहले ले और फिर यदि कट गई तो 10-12 ठो पौधा एक कंसा में हमारे निकले भर चालू हो जाते, तो ये हर एक फायदा होते। दूसरा ये है कि निश्चित अंतराल और कतारबद्ध में रही जब पौधा हर तो मतलब सब लाना हवा और पानी और खाद सब कुछ अच्छे मात्रा में वाला मिलते। ओकर अलावा बीज के सेविंग भी होते, जैसे छिड़का बोते हैं तो पहली जमाने में आपन जाने हुआ कि 120 kg लगभग एकड़ में किसान मन छिड़के, ओला टेस्ट करे बर मन अक्ति त्यौहार में थोड़े कुन एरिया में डाले कि उगे के परसेंटेज हुए तत्की लही ओकर हिसाब से मल्टीप्लाई करके लगभग 120 kg तक किसान मन बोत रही। जे हर के सीड ड्रिल में यदि करिया तो और 30 kg से लेके 50 kg के बीच में आ जाते, और जो प्लांटर आजकल आ गए इनक्लाइंड प्लांटर जो DSR कथन हमन ते में करिया तो लगभग ओहर और कम होके लगभग 12 kg प्रति एकड़ के हिसाब से हम यदि डाल सकबो में, और हमर बीज के बचत हुई तो बहुत कुछ पैसा ही बची। ये जो श्रम है और समय वो दोनों चीज है, एकर अलावा जो उर्वरक है उसका सही उपयोग भी होते, और कुछ पंछी और जो कीट है जैसे आप मतलब पहले बताए में कि जमीन के अंदर गड़ जाते हैं हर 5 सेंटीमीटर तरी में तो ओला कोई चिड़िया मन या कीट मन या कोई भी चीज़ खा नहीं सके ओला, तो ये फायदा आपका और मिल सकते है। तो मैं एक चीज़ और बता रहा चाहा कि जो मशीन है तो छोटे बीज बार भी आजकल इंक्लाइंट प्लांटर आ गए हैं, जैसे सरसों या रागी या और कुछ होते तेकर भर भी वो जो इंक्लाइंट प्लांटर के बात कर रहा था ते में अलग अलग प्लेट आते, कंपनी हर आप मतलब बीज एक डब्बा में दे दो तो हम आपको प्लेट बना देंगे कहीं कथे, तो वो प्लांटर ला हम यदि खरीदबो ज्यादा फायदा हो सकी। बीज के गणना ला करे के उपाय ये है कि हमन 20 बार वाला घुमा के देख लेबो, तो जतक बीज हमार हर नाली में गिरत है तेल नाप के देखबो, तो एक एकड़ में सही ढंग से हमार बीजा जाते कि नहीं जाते तेहर पता चल जाते। धन्यवाद।
0: डॉक्टर आर के नायर से कृषि चर्चा अभी आप सुन रहे थे। विषय था धान की बुआई हेतु उन्नत कृषि यंत्र। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम रात 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा जयदीप घोष का सरोद पर बजाया राग परज बसंत। शास्त्रीय संगीत के ही कार्यक्रम में सुबह 10:00 सुनेंगे जयदीप घोष का सरोद पर बजाया राग भंखार। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला के तहत सुनिएगा कार्यक्रम गरीब कल्याण रात 9:25 पर। छत्तीसगढ़ के लोक सुर कार्यक्रम का भाग 23 सुनिएगा सुबह 8:30 पर। आलेख संपादन और प्रस्तुति होगी बीरभान साहू की और संयोजक होंगे पंकज मेश्राम।

सुबह 9 बजे कथायन में सुनिएगा कहानी गुजरा हुआ कल। कहानीकार होंगी चंद्रिका चौधरी। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 9:15 पर, सुबह 10:30 पर, दोपहर 1:05 पर, दोपहर 2 बजे, दोपहर 2:30 पर, शाम 7 बजे, रात 8:15 पर और रात 9:15 पर। सुरों का सफर, पुराने फिल्मी गीतों का ये फरमाइशी कार्यक्रम आपको सुनाएंगे रात 10 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे दोपहर 12 बजे और प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ शाम 5 बजे।

सुगम संगीत सुनिएगा सुबह 9:40 पर और रात 8:15 पर। कलाकार होंगी कुसुम बड़ौदकर। सुगम संगीत के ही कार्यक्रम में शाम 6:30 पर कलाकार होंगी पुष्पा हंस। फोन करव छत्तीसगढ़ी गीत सुनव कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 11:05 पर। प्रस्तुति होगी अनुभा अग्रवाल की। दोपहर 12:30 पर लोक रंजनी कार्यक्रम में सुनिएगा कुछ छत्तीसगढ़ी गीत। कलाकार होंगे परमानंद करियारे और साथी। दोपहर 1:30 पर बहने सुनेंगी कार्यक्रम बिंदिया, जिसमें आज की बात का विषय होगा माता पिता का सम्मान पहली जिम्मेदारी, क्रम आपकी चिट्ठी और क्रम एक ही फिल्म से।

शाम 5:10 पर युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी, जिसके मुख्य आकर्षण आज होंगे क्रम आजकल, वैश्विक अभिभावक दिवस और विश्व दुग्ध दिवस पर। साथ ही सुनेंगे क्रम सर्जना और क्रम इंद्रधनुष।

चौपाल कार्यक्रम आप सुनेंगे रोजाना की ही तरह शाम 7:21 पर, जिसमें आज की बात केंद्रित होगी ए महीना के कृषि कार्य पर। आज की सलाह में सुनिएगा औषधीय पौधों के विषय में जानकारी। सलाहकार होंगे सत्य प्रकाश विश्वकर्मा, सहायक प्राध्यापक वानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र दुर्ग।

0: कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिना यू मिन आंग ह्लाइंग इत्यनेन सह चर्चां करिष्यति। उभयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकानां सभ्यतानां च संबंधान इतोपि सुदृढीकरणाय वार्तालापः भविष्यति। वार्तालापावधौ म्यांमार भारतयोः मध्ये सुरक्षा संपर्कौ च समेत्य संपूर्णेषु विभिन्नेषु विषयेषु चर्चाः भविष्यन्ति। राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदः अजीत डोभालः गतरात्रौ दिल्ल्याम् अतिथिगणमान्यैः सह मेलनं विहितवान्। अवधेयं यत् म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः शनिवासरे भारतस्य पञ्चदिवसीय यात्रायां बिहारस्य गयानगरं सम्प्राप्तवान् आसीत्। म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतेः भारतस्य आधिकारिक यात्रायाः कारणात् उभयोः देशयोः मध्ये बहुपक्षीय सम्बन्धः इतोपि सुदृढः भविष्यति इत्यपेक्षास्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना प्रकृति संरक्षणे स्थानीय समाह्वानानां निराकरणे अन्य सामाजिक कार्येषु च तेषां प्रेरक उपक्रमाणाम् उपलब्धीनां च विषये अनेकेषां नागरिकाणाम् उत्कृष्ट योगदानाय प्रशंसा कृता। आकाशवाण्याः स्वकीये मासिक कार्यक्रमे मन की बात इत्यनेन कार्यक्रमेण राष्ट्रम् अभिसंबोधयन् श्रीमोदी झारखण्ड राज्यस्य रांचीनगरे आयोजिते राष्ट्रिय वरिष्ठ एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धायां उदयोन्मुख क्रीडकानाम् उत्कृष्ट प्रदर्शनस्य प्रशंसाम् अकरोत्। प्रवर्तमानायाः उष्णतरङ्गस्य स्थितिं प्रति चिन्तां प्रकटयन् प्रधानमन्त्रिणा जनान् अधिकृतान् उपदेशान् अनुसृत्य सुरक्षितं स्थातुं पूर्वसूचनानुसारं कार्यं च कर्तुम् उद्बुद्धवान्।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: पश्चिम बंगाल राज्यस्य मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अद्य स्वमंत्रिमंडलस्य विस्तारं करिष्यति। 35 नूतनाः मंत्रिणः मंत्रिमंडले समाविष्टाः भविष्यन्ति। शपथग्रहणं प्रातः 11 लोकभवने भविष्यति। नूतनेन समावेशेन शुभेंदु प्रशासने महत्वपूर्णरूपेण संवर्धनं भविष्यति, येन मई मासस्य 9 दिनांके पञ्चमन्त्रिभिः सह कार्यभारं स्वीकृतमासीत्। अनेन विस्तारेण राज्यमन्त्रिमण्डलस्य मन्त्रिणां कुलसंख्या 41 यावत् वर्धिता भविष्यति। निर्वाचनायोगेन 10 चतुर्विंशतिः राज्यसभासदस्यानां द्विवार्षिक निर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य घोषणा अद्य क्रियते। भूतपूर्वः प्रधानमन्त्री एचडी देवगौड़ा, केन्द्रीयमन्त्रिणौ जॉर्ज कुरियन तथा रवनीत सिंहश्च तेषु सदस्येषु अन्तर्भवन्ति। आन्ध्रप्रदेशे, गुजराते तथा कर्णाटके प्रत्येकस्मिन् राज्ये 44 आसनानि सन्ति। राजस्थाने तथा मध्यप्रदेशे प्रत्येकस्मिन् राज्ये 3 आसनानि सन्ति। झारखण्डे 2 आसने स्थः, मणिपुरे, मेघालये, अरुणाचलप्रदेशे च, मिजोरमे च प्रत्येकस्मिन् राज्ये 1 आसनं रिक्तमस्ति। आयोगस्यानुसारं जून मासस्य 18 मतदानं भविष्यति। मतगणना अपि तस्मिन्नेव दिने भविष्यति। महाराष्ट्रस्य, तमिलनाडुराज्यस्य, ओडिशाराज्यस्य च प्रत्येकस्य 1 आसनस्य कृते राज्यसभायाः उपनिर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य अपि आयोगेन घोषणा क्रियते। एतद् निर्वाचनमपि अग्रिममासस्य 18 भविष्यति। 91-वर्षीया प्रख्यात गायिकायाः सुमनकल्याणपुरस्य मुम्बईनगरे स्वनिवासस्थाने मृत्युः अभवत्। 50-29 वर्षात् 70-29 वर्षं यावत् चलचित्रसङ्गीतस्य स्वर्णयुगे नैकासु भारतीयभाषासु कृतकार्याणां कृते एषा वयोवृद्धगायिका प्रसिद्धा आसीत्। अभी च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे अन्तिमस्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलं पञ्चस्तोभैः पराजित्य गतविजेतृदलेन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्यनेन अस्य वर्षस्य श्रृंखला अपि विजिता इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का ये अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उड़ीसा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। सुमन 1950 से 1970 के दशक के फिल्मी संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में मधुर गायकी के लिए लोकप्रिय रहीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनीत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंधन तेगचिनलिंग मठ में अहर्त सारिपुत्र और अहर्त महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोदसुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुक की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के मोगली वेंकटरामन ने पुरुषों के 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। ये इस वर्ष की प्रतियोगिता में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। रिले स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। भूमिका, ताहुरा, सेहनूर और नीरू की महिला टीम ने 4x400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय टीम ने 3:38.07 के समय के साथ चैंपियनशिप का रिकॉर्ड भी बनाया। काजल, भावना, आरती और निपम ने 4x100 मीटर में 45.05 के समय के साथ रजत पदक जीता। पीयूष राज, सैयद सबीर, रंजीत कुमार और मोहम्मद अशफाक की पुरुष टीम ने 4x400 मीटर में कांस्य पदक हासिल किया। ये चैंपियनशिप विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइंग इवेंट है। विश्व चैंपियनशिप 5 से 9 अगस्त तक अमरीका के ओरेगन में यूजीन में आयोजित होगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीता। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली ने नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। अब सुनते हैं प्रातः सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर।

नमस्कार, सुप्रभात। मैं हरजीत हाजिर हूँ आज के नमस्कार रायपुर कार्यक्रम का ये ताजा तरीन अंक लेकर। श्रोताओं, वैसे तो घड़ी की सुइयों का चलते रहना, दिन और रात का होना, कैलेंडर के पन्नों का बदलना कोई अप्रत्याशित या असामान्य घटना नहीं है। ये परिवर्तन तो प्रकृति का बुनियादी नियम है। पर साथियों, मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता ये पल भला किसी के लिए ठहरे है? किसी पल में हमारी मौजूदगी ना भी हो तो भी वो पल गुजर ही जाता है, जैसे मुट्ठी से रेत फिसल जाती है। जो लोग अतीत में जीते हैं उन्हें इस बात का पता नहीं होता, और जो लोग भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं उन्हें भी इस बात का एहसास नहीं होता, क्योंकि अतीत एक बीते हुए सपने के समान है और भविष्य एक कल्पना मात्र। हमें नहीं भूलना चाहिए कि सुखी वर्तमान से ही भविष्य स्वर्णिम बनाया जा सकता है। तो जरूरी है कि जिंदगी में हम वर्तमान में जिएं, आज के इस पल को जिएं।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
2: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
3: श्रोताओं, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आज का विचार। महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस का विचार आज हमने लिया है। वे कहते हैं, जीवन में प्रगति का आशय यह है कि शंका संदेह उठते रहें और उनके समाधान के प्रयास का क्रम चलता रहे। सच ही है साथियों, समस्या चाहे कैसी भी हो, उसका डटकर मुकाबला करें और डर कर दुखी होकर भागने की बजाय हंसते हुए उसका समाधान ढूंढें। क्योंकि रात चाहे कितनी भी गहरी हो, वो सुबह को रोक नहीं पाती है

श्रोताओं, इन दिनों मौसम गर्मी का है तो लाजमी है कि गर्मी पड़ेगी ही, लेकिन चिंता की बात यह है कि पिछले कुछ सालों में ये गर्मी, ये तपिश बेइंतहा बढ़ती जा रही है, यानी हम झेल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के खतरों को। बढ़ती गर्मी के कारण से हम सब परिचित हैं, लेकिन बावजूद इसके बढ़ते औद्योगिकरण पर भी लगाम लगाने को हम तैयार नहीं हैं। अब जरूरत है अपने पर्यावरण के प्रति सचेत होने की, जंगलों को बचाने की और तेजी के साथ नए जंगलों को दोबारा लगाने की। जरूरत ये भी है कि कंक्रीट के जंगलों में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, प्रदूषण को रोका जाए ताकि सलामत रहे हमारी दुनिया, हम लोग, परिंदे, जानवर और पेड़ पौधे। फिलहाल इन संकल्पों के साथ गर्मी से बचाव की सबसे बड़ी आवश्यकता बड़े बुजुर्गों और बच्चों पर एहतियात की है। उनका ख्याल रखें, घर से बाहर निकलते वक्त हवा के गर्म थपेड़ों से बचने के लिए चेहरे और सिर को ढककर रखें, खाली पेट न रहे, भरपूर पानी पिए, पैदल चलते वक्त साए के लिए छतरी का इस्तेमाल करें और हाँ, पशु पक्षियों के लिए पानी और चारे की उपलब्धता बनाए रखें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से परहेज करें और पिए नींबू पानी, गन्ने का रस, छाछ, घर में तैयार फलों का जूस और लजीज नारियल पानी।

श्रोताओं, आज 1 जून को हम मनाते हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स यानी वैश्विक अभिभावक दिवस। ये दिवस माता पिता और अभिभावकों के प्रेम, त्याग, समर्पण और बच्चों के सर्वांगीण विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान देने के लिए समर्पित है। माता पिता हमारे जीवन के प्रथम शिक्षक होते हैं। वे हमें संस्कार, शिक्षा और जीवन की सही दिशा प्रदान करते हैं। उनके मार्गदर्शन और सहयोग से ही हम अपने सपनों को साकार कर पाते हैं। ये दिवस हमें अपने अभिभावकों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और प्रेम व्यक्त करने की प्रेरणा देता है।

श्रोताओं, आज जन्मदिन है भारत की महान और दिग्गज अभिनेत्री नरगिस का। 1 जून 1929 को इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। नरगिस भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम दौर की सबसे प्रभावशाली अभिनेत्रियों में गिनी जाती है। उन्होंने बहुत कम उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। जल्दी ही वे अपनी सहज, सरल और उम्दा अभिनय शैली के कारण दर्शकों की पसंदीदा बन गईं। नरगिस ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें बरसात, आवारा, श्री 420 और विशेष रूप से मदर इंडिया शामिल है। मदर इंडिया में उनके द्वारा निभाया गया राधा का चरित्र भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमर माना जाता है। ये फिल्म ऑस्कर के लिए भी नामांकित हुई थी। मदर इंडिया फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। फिल्म रात और दिन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 1958 में उन्हें देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। नरगिस दत्त केवल एक सफल अभिनेत्री ही नहीं थी, बल्कि एक संवेदनशील समाजसेवी भी थी। इनकी जयंती पर हम आज उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

श्रोताओं, आज यानी 1 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड मिल्क डे अर्थात विश्व दुग्ध दिवस। ये दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2001 में खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य लोगों को दूध और दुग्ध उत्पादों के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूक करना और डेयरी उद्योग के आर्थिक और सामाजिक योगदान को रेखांकित करना है। दूध कैल्शियम, प्रोटीन और कई आवश्यक पोषक तत्वों का महत्वपूर्ण स्रोत है। ये बच्चे, युवाओं और बुजुर्गों सभी के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है और भारत विश्व के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देशों में से एक है। दूध उत्पादन न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाता है बल्कि लाखों परिवारों की आजीविका का आधार भी है। विश्व दुग्ध दिवस हमें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और दूध उत्पादकों के योगदान का सम्मान करने का संदेश देता है।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आँखी के जम्मो प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चर ले सब लग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
3: श्रोताओं, मौसम बदलने वाला है, वर्षा ऋतु का आगमन होने वाला है, तो ऐसे में हम जल संवर्धन का संकल्प लें, क्योंकि जल ही जीवन है और इसको बचाना आज हमारी सबसे बड़ी जरूरत। इसके लिए हर घर में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग की एक इकाई होनी चाहिए। पृथ्वी पर चलने वाले जल चक्र के कारण वर्षा ऋतु से हमें जल प्राप्त होता है। मनुष्य, जीव, पेड़ पौधे, सभी को जल की जरूरत होती है। जल के बिना जीवन संभव ही नहीं है। दुख की बात तो ये है कि सामान्यतः मनुष्य जल को जानता तो है, किंतु समझता नहीं है। हालात और अधिक बिगड़ जाएं, इससे पहले हमें जागना होगा। प्रश्न ये है कि गिरते हुए जल स्तर को किस प्रकार से रोका जाए। इस समस्या का एक ही समाधान है कि कृत्रिम रूप से भूजल का संवर्धन किया जाए। शहरी क्षेत्रों में क्षतीय जल संवर्धन या रूफ वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा साथ ही हमें जल के दुरुपयोग को रोकना होगा। पानी व्यर्थ ना बहाएं, वर्षा जल का भी उचित संवर्धन करें। अब भी वक्त है, प्राकृतिक उपादानों को बाहें फैलाकर अपना लें, हरियाली को संजो लें और जीवन को बचा लें।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, रखें अपना और अपनों का ख्याल। सकारात्मक विचारों के साथ जीवन में आगे बढ़ें, खुद सुरक्षित रहें, अपनों को सुरक्षित रखें। इसी कामना के साथ अनुमति दें हरजीत कौर को। नमस्कार।

0: नमस्कार, रायपुर कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं। समाचार अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
5: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
6: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों किसानों महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
7: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
8: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
7: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
9: मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
7: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
10: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल है। सुमन कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को IPL क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। कागिसोर अबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में 5वां FTA, पश्चिम एशिया संकट के बीच 2 गुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार। जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों के लिए राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार IPL चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराकर IPL खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

चरक भिक्खवे चारिक, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय अदथाय हिताय सुखाय देव मनुस्सान। भगवान बुद्ध की इस अमर वाणी के साथ आकाशवाणी रायपुर ग्रंथालय में संग्रहित लोक सांस्कृतिक धरोहरों पर केंद्रित कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोक सुर के इस अंक में आप सभी सुधीजनों का हम अभिवादन करते हैं। नमस्कार। श्रोताओं, आज के अंक को हमने सजाया है छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक गाथा पंडवानी से, और साथ ही सुनेंगे बस्तर का भद्रा नाट गीत। लेकिन इससे पहले आकाशवाणी से जुड़े कुछ तथ्यों पर विचार करते हैं। आकाशवाणी के प्रभाव का यशोगान करते हुए जनसंचार विशेषज्ञ डॉक्टर विल्वर श्रम लिखते हैं कि प्रभावी जनसंचार माध्यम देश के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अतएव मुक्त और समुचित सूचना उपलब्ध कराना मात्र ही जनसंचार माध्यमों का अंतिम ध्येय नहीं है, बल्कि इच्छित सामाजिक परिवर्तन अंतिम लक्ष्य है। वास्तव में यही विचारों की ताकत है। श्रोता साथियों, भारतीय उपमहाद्वीप का बेहद लोकप्रिय रेडियो चैनल है विविध भारती। इसका सुरुचिपूर्ण प्रसारण हमें समय के उस पार ले जाता है जहां स्मृतियां फिर से जी उठती हैं। आकाशवाणी की यात्रा में एक रोमांचक पड़ाव तब आया जब 3 अक्टूबर सन 1957 सुबह 10:13 पर शॉर्टवेव 19 और 25 मीटर बैंड पर आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम विविध भारती की किलकारियां गूंजने लगी। ये विविध भारती है, आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम। इस उद्घोषणा से पहले राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियों ने शुभकामना के फूल बरसाए थे। मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारी आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती।

संस्कृत भारती की परिकल्पना को सन 1957 में साकार करने वाली हस्तियों में तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री डॉक्टर बीवी केसकर, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में तत्कालीन सचिव श्री पीएम लाठ और आकाशवाणी के तत्कालीन महानिदेशक श्री जगदीश चंद्र माथुर रहे। विविध भारती का शुरुआती स्वरूप ऑल इंडिया वैरायटी प्रोग्राम अर्थात अखिल भारतीय विविध रंगी कार्यक्रमों का था। इस सेवा को विविध भारती नाम दिया कला एवं साहित्य मनीषी पंडित नरेंद्र शर्मा ने। विविध भारती की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस विषय में विविध भारती के चीफ प्रोड्यूसर रहे पंडित नरेंद्र शर्मा जी कहते थे, हमारे इतने बड़े संस्थान में जिसको कि आकाशवाणी कहा जाता था, अनेक ऐसे कार्यक्रम थे जो कि ज्यादातर निष्णांत बुद्धिजीवी श्रोताओं के लिए थे। अधिक संख्या में अखिल भारतीय वो श्रोता हैं जिसे हम और किसी बहुत अच्छे शब्द के अभाव में कहेंगे सामान्य श्रोता, अंग्रेजी में कहें तो ले लिसनर। सामान्य श्रोताओं की जो आवश्यकताएं थीं, उनमें विविधता भी होनी चाहिए और भारतीयता भी। इन दो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विविध भारती उपयुक्त सिद्ध हुआ और इस प्रकार प्रसारण आरंभ हुआ। श्रोताओं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विविध भारती के मुंबई केंद्र से पहली उद्घोषणा की शील वर्मा ने। विविध भारती पर पहला प्रसार गीत मन्ना डे के स्वर में प्रसारित हुआ, नाच रे मयूरा। रचयिता थी पंडित नरेंद्र शर्मा और संगीतकार अनिल विश्वास।

सुप्रसिद्ध कार्यक्रम हवा महल का प्रसारण 20 अक्टूबर सन 1957 से आरंभ हुआ। प्रथम प्रसारित हवा महल के लिए पंडित नरेंद्र शर्मा ने विशेष संगीत नाटिका तैयार की थी महाराज, और तब से अपने विविध कार्यक्रमों वंदनवार, लोक संगीत, गीतों भरी कहानी, उदयगान, इंद्रधनुष, राग रंग, मंजूषा, फौजी भाइयों का विशेष जयमाला जैसे कार्यक्रमों से आज भी देश की धड़कन बनी हुई है आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम विविध भारती।

और आइए अब आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के सुरीले संगीत संसार में, जहां गूंजते हैं छत्तीसगढ़ के लोक सुर।

समय का पहिया कभी किसी के लिए रुका नहीं, आते हैं चले जाते हैं, पर मनुष्य जीवन की कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो कथा की शक्ल में शेष रह जाती हैं। पंडवानी महाभारत की ऐसी ही कथा का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है, जो आम छत्तीसगढ़ी लोगों की सहज सरल जीवन शैली से, उनके भोले भाले हृदय की धड़कनों से जुड़कर संगीत के अविराम स्रोत सा बहता रहता है। नाचा कर्मा ददरिया सुआ बांस गीत चंदैनी पंथी कौरा जमारा जैसे अनेक लोक विधाएं छत्तीसगढ़ की लोक सांस्कृतिक बगिया के महकते हुए फूल हैं। उनमें सर्वोपरि सुगंधित पुष्प का नाम है पंडवानी।

पंडवानी, छत्तीसगढ़ अंचल के मनोरंजन का पारंपरिक साधन ही नहीं, श्रद्धा भक्ति शौर्य और पराक्रम के प्रति ललक की मोहक अभिव्यक्ति भी है।

करे हस। अब मैं तो ला आदेश देता हूँ, मैं तो ला छुट्टी देवत हूँ तैसा।

वह समय बड़ा दुखी हो के माता सत्वती घायल हो गए और भीष्म लकथेर भैया अब तय शादी नहीं करत है तो एक ठमोर कहना मान के व्यास नारायण ला जल्द से जल्द बुला के ये घर में ले आ। भीष्म पितामह चंचल चार घोड़ा सजाई।

पंडवानी स्वांग और संगीत का ऐसा मनोरम संगम है जहां महाभारत के अमर पात्रों की शौर्य गाथा हिलोरी लेती है। महर्षि व्यास द्वारा वर्णित और भगवान गणेश द्वारा अंकित महाभारत केवल युद्ध कथा ही नहीं अपितु समस्त मानवीय मूल्यों, आवेगों, मनोभावों और सबसे ऊपर मनुष्य की आदिम वृत्तियों और कामनाओं का सूक्ष्म चित्रण है। पंडवानी वस्तुतः महाभारत की शाश्वत कथा का छत्तीसगढ़ी संस्करण है। छत्तीसगढ़ी बोली में कितना माधुर्य और विस्तार है। जीवन के सूक्ष्म और गूढ़तम भावों को अभिव्यक्त करने की कितनी अपार क्षमता है ये पंडवानी को प्रत्यक्ष देखकर सुनकर ही समझा जा सकता है। पंडवानी की प्रस्तुति के लिए किसी विशेष पर्व त्योहार या अवसर की अनिवार्यता नहीं है। एक रात से लेकर कई रातों तक लगातार चलने वाली पंडवानी बैठकर भी गाई जाती है और खड़े होकर भी तथा घुटनों का सहारा लेकर भी। ये एक ऐसा एकल अभिनय है जिसमें अंग संचालन, भावाभिव्यक्ति, स्वरों की तीव्र आरोह अवरोह के साथ साथ संगीत की मधुर स्वर लहरियां श्रोताओं को सम्मोहन पाश में बांधी रखती हैं। तंबूरा पंडवानी का अभिन्न संगी और सहचर है। इसकी मंचीय प्रस्तुति में साथ बैठे हुंकारू देने वाले रागी की भूमिका कथा को लयात्मकता, गतिशीलता देने और रोचकता को बराबर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

0: चाचो भाई बहनों सौ भाई कोहरा जुआ के खेल खेली और सारी धन संपत्ति हारे के बाद में पांचों भाई पांडव रहा 12 साल वनवास 1 साल अज्ञात वनवास भेज दी
1: हाँ जी।
0: संग में द्रौपदी और पांचों भाई पांडव सहित
1: अच्छा?
0: कहाँ चली कामयक बन के जंगल में
1: हाँ जी।
0: पांचों ये पांडव है कैसे

0: भाई पांडव ला
1: अच्छा
0: एक ठन झाड़ के नीचे में बैठा दी।
1: हाँ जी
0: अपन पत्नी द्रौपदी के साथ में पांचों भाई पांडव बैठे रहे।
1: हाँ जी
0: उही बीच में
1: अच्छा।
0: उही जंगल में एक अच्छा। कामी नाम के राक्षस रहे।
1: अच्छा
0: वो कामी नाम के राक्षस
1: अच्छा
0: कथे कैसे का कथे मनखैन मनखैन बोला सुगा नावा थे भाई।
1: हाँ जी
0: अवश्य कोई जंगल में आए है भाई।
1: हाँ जी
0: ऐसे कई के पर रूप ला राजा के भेष बना के।
1: अच्छा
0: और चलिए इस कहा जहाँ पांचों भाई पांडव बैठे रहा है।
1: अच्छा
0: ये दे रहे

छत्तीसगढ़ी बंडवानी में गायन की दो शाखाएं प्रचलित हैं, कपालिक और वेदमती शैली। इन दोनों शैलियों में सबसे ज्यादा प्रचलित शैली है कपालिक, जो शास्त्रीय कथा को लोक रंग के नए परिधान देकर पूरे आत्मविश्वास के साथ हमारे सामने लाती है। इस शाखा के गायकों ने समयानुकूल लोक रुचि के वाद्य यंत्रों का समावेश कर इसे रुचिकर बनाया है और गायकी की नई आक्रामक शैली का आविष्कार किया है। पंडवानी की ये आकर्षक शैली गायन के साथ आंशिक नृत्य नाटक का भी आनंद देने में पूर्णतः सक्षम है। इस विधा में संगीत, भावाभिनय और कथा व्याख्या तीनों का अनुपातिक सम्मिश्रित सौंदर्य सचमुच सम्मोहन पाश में बांध लेता है श्रोताओं को। इस शैली की सबसे प्रख्यात कलाकार हैं विदुषी पद्म विभूषण तीजनबाई। पंडवानी की दूसरी शैली है वेदमती, जिसका अर्थ है शास्त्र पर आधारित कथा शैली, अर्थात महाभारत कथा पर आधारित शैली। छत्तीसगढ़ के पंडवानी लोक कलाकारों ने इसे छत्तीसगढ़ की सीमा से आगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में स्थापित किया है। इन प्रमुख कलाकारों में पंडवानी के पितामह स्वर्गीय झाड़ू रामजी देवांगन, पूना रामजी निषाद, पद्म विभूषण विदुषी तीजनबाई, ऋतु वर्मा, विदुषी उषाबाई बार्ले, शांतिबाई चेलक आदि

0: हाँ।
1: मैं अभिमन्यु के शादी करना हाँ। चाहता हूँ। राजा विराट अपन कन्या ला सुपुर्द करे
0: हाँ भाई।
1: अरे कृपा सिंधु यदुनाथ तुम पांडव केरी प्रणाम। अरे सिरधर

0: अर्जुन के पत्रिका पढ़ करके भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अर्जुन लिखे रे से जय मधुसूदन कुंज बिहारी, जय जय जय गोवर्धन धारी, भगत है तो नरतल तुम धरे हो, नाना चरित्र यवनी बीच करे हो, अभिमन्यु के ब्याह हम कीन्हा, आए सादर यो दर्श मही दीन्हा। वो लिख करके पत्रिका भेजी।
1: हाँ भाई,
0: अभिमन्यु लायो

0: घर तुझका दैत्य बन में रहा मुलाकात होगी।
1: हाँ।
0: जननी सहित महतारी सुभद्रा के साथ
1: हाँ।
0: पहुंच जाते हैं पांडव के पास।
1: हाँ।
0: उकर कुल में जैसना शादी लिखेरी।

0: धृष्टद्युम्न,
1: हाँ,
0: शिखंडी,
1: हाँ,
0: राजा विराट,
1: हाँ,
0: उत्तरा कुमार,
1: हाँ,
0: और शंख,
1: हाँ,
0: और उपरोहित जौन रही से विराट के,
1: हाँ,
0: ये सब शादी के बाद में बैठे
1: हैं।
0: सब विचार कर इन पांडव मन अपन कर्तव्य ला पूरा कर डरे हैं।
1: है।
0: अब राजा दुर्योधन के कर्तव्य होते आधा राज पांडव कह दीना। अब राजा दुर्योधन आधा राज देना चाहिए।
1: हाँ भाई,
0: कहने लगे कैसे किया जाए।
1: है।
0: तो पांडव मन
1: हाँ।
0: राजा द्रुपद के स्तुति करी
1: और
0: किंड के महाराज में भेज दे के लाई।
1: हाँ।
0: अरे

और आइए अब चलते हैं बस्तर के मनमोहक लोक भावन वादियों में, जहां गूंजती है हल्बी, गोंडी, भतरी जैसे बोलियों में लोक स्वर लहरियां। बस्तर के भतरी भाग में प्रचलित लोक नाट्य यानी भतरा नाट्य उड़िया नाट एक गीतात्मक लोक नाट्य है। पौराणिक आख्यानों पर आधारित इस विधा में पात्र गा गा कर और नाच नाच कर संवाद प्रस्तुत करते हैं। आइए सुनते हैं ये भतरा नाट।

और इसी के साथ इस अंक का सफर यहीं तक। अगले अंक में किसी अन्य विधा के साथ पुनः उपस्थित होंगी। वाचन प्रीति यादव का, आलेख संपादन और प्रस्तुति बीरभान साहू की, संयोजक पंकज मेश्राम। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।

0: छत्तीसगढ़ के लोक सुर का भाग 23 अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। कथायन में आइए अब सुनते हैं कहानी गुजरा हुआ कल। कहानीकार है चंद्रिका चौधरी।
1: वक्त की धारा हमेशा आगे नहीं बहती, कभी यह थक हार कर पीछे भी लौटने लगती है अपनी किसी कीमती चीज की तलाश में, जैसे उसके आंचल से फिसलकर वह गिर गई हो और अब बहुत दूर निकल आने के बाद आंचल का हल्कापन उसे याद दिला रहा हो और वह पीछे चल पड़ी हो उसे फिर से बीन कर अपने आंचल में रख लेने के लिए। उसने महीनों तक किस्म किस्म के दुखों, लम्हों और स्मृतियों को बाहर खड़ा कर दरवाजा उड़काए रखा था। कभी कभी एकांत में उड़के दरवाजे के बाहर वह झांक लिया करती थी, मगर कुछ दिन हुए उन छटपटाती स्मृतियों ने दरवाजा खटखटाने की कोशिश बार बार की है। उसकी डबडबाई आंखों में आंसुओं के साथ साथ

कई पुराने दृश्य भी बार बार उभर आते। वह खुद से बुड़बुड़ाई, इस तरह तो उसका पूरा दिन चला जाएगा। उसने सिर झटक दिया, आज बहुत से काम निपटाने हैं उसे। बाहर तेज धूप खिली है, वह कई दिनों से शयन कक्ष के गद्दों को धूप दिखाना चाहती है। वह कमरे में चली आई, छत ले जाने के लिए गद्दा लपेटने लगी। गद्दा के नीचे सिरहाने की ओर लगभग एक हाथ की दूरी पर 8-10 काजू, किशमिश और छुहारे पड़े मिल गए। उन्हें हथेली में लेते ही उसकी आंखें सजल हो गईं। कमरे का मटमैला उजास उसकी उदासी बढ़ा रहा था। वह बैठक में चली आई, खुली खिड़की के पास रखी कुर्सी पर पसर गई। पुरानी यादों का एक बवंडर स्मृति को फिर झकझोरने लगा। मेहमान कक्ष में सोए पति की तेज खांसी से पूरा घर हांफने लगता था। बुखार उतरने का नाम नहीं, जिह्वा अपना स्वाद खो चुकी थी और नाक भी सूंघना बंद करके केवल सांसें ले रही थी। बड़ी बेटी आभा को उसने ऊपर वाले कमरे में रखा था, उसे बुखार कम था, बीमारी के लक्षण भी कम थे, इसलिए उसके लिए नाश्ता खाना ऊपर के कक्ष में पहुंचा देती। 7 साल की प्रिया भी पिता और बड़ी बहन आभा के साथ कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। उसका शरीर आभा की तरह हृष्ट पुष्ट नहीं था, तेज बुखार और खांसी ने उसे और कमजोर कर दिया था। माँ के बिना कभी रही नहीं थी, इसलिए सारा दिन उसका पल्लू पकड़े घूमती रहती। रोज शाम बहनोई कोरोना टेस्ट का किट लेकर आते, उसका टेस्ट होता पर परिणाम नेगेटिव आता। थर्मामीटर और ऑक्सीमीटर जीवन के किसी जरूरी अंग की तरह बदस्तूर साथ रहते। दिन में कई बार वह सभी की नब्ज और शरीर का तापमान देखती। पूरे घर में केवल वही स्वस्थ थी। ऐसे में यदि वह भी पॉजिटिव हो जाएगी तब परिवार का क्या होगा, सोच सोच कर मन भारी हो जाता। शयन कक्ष में रात भर प्रिया को अपने पैरों की तरफ मुंह करवाकर खुद से सटाकर सुलाती। प्रिया के सोने के बाद भी अनिश्चित सी खामोशी के झिलझिले में बैठी रहती। तेज सांसों की धीमी आवाज से कांप उठती। कभी मेहमान कक्ष में सोए पति के नाक के पास हथेली फेरती, कभी ऊपर सोई आभा को देखने सीढ़ियां चढ़ती और कभी प्रिया की आती जाती सांसों पर पहरा लगाए बैठी रहती। माँ सो जाओ ना, प्रिया आंखें खुलते ही कहती। पहले तुम आंखें बंद करो, वह माथा थपकने लगती। कब से बैठी हो? बस अभी जागी हूं, तुम सो? दीदी सो गई? हाँ। और पापा? उसकी आवाज किसी उम्रदराज व्यक्ति की तरह गंभीर हो जाती। सो जाओ प्रिया, वे भी सो रहे हैं। पर प्रिया के सो जाने के बाद भी वह कहां सो पाती थी, आंखों आंखों में ही सारी रात गुजर जाती। सबके साथ होते हुए भी दूर रहना उसे बहुत खलता, पर मजाल है आंसुओं का कि उसकी चाह के बिना आंखों में दिख भी जाएं। उसकी बहती आंखों और थरथराते होठों को देखने वाली केवल वे निर्दयी काली रातें होती जो दिन के उजालों को बड़ी जल्दी अपने आंचल से ढांप लेती थी। दिन में दूसरों के मुंह से सुना मौत जैसा पुराना शब्द रात में रेंगते हुए बेहद करीब पहुंच इतना पारदर्शी सा जान पड़ता मानो उस शब्द की खूंटी पर उनके समूचे जीवन का नक्शा टंगा हो, और वह सारी रात उस नक्शे पर उंगली रखती कि कहीं उंगली हटते ही नक्शा अपनी जगह से खिसक न जाए। अंधेरे में जो शब्द उसे अपनी खौफ जदा तरंगों में बहाकर बहुत दूर तक ले जाते, दुख देते, दिन के उजालों में वही खोखले से लगते और वह निर्बलता त्याग कर फिर से सबल बन जाती। राशन, सब्जी, फल और दवाइयां दूसरी कॉलोनी में रह रहे जीजाजी और कभी कभार पड़ोसी ला देते। घर के बाहर ही मुख्य दरवाजे के पास सारा सामान छोड़कर वे चले जाते। कभी कभी बच्चियां उनसे मिलने सूखे मुखड़ों पर मुस्कान लिए दौड़ती पर वह उन्हें रोक देती। एक शाम गेट पर दवाई रखते हुए पड़ोस के पटेल जी ने बताया था कि 3 घर के बाद जो शुक्ला जी का मकान है वहां से आज फिर एक लाश उठाई गई है। वह शून्य में ताकती रही जैसे कुछ सुना ही न हो। बिना कुछ जवाब दिए भीतर चली गई। उहापोह और कशमकश ने उसे कैलेंडर के ठीक सामने खड़ा कर दिया था। उसमें मार्च का महीना खुला हुआ था। रात बीतने के बाद वह हर दिन उस दिनांक पर लाल स्याही से कट का निशान लगा देती। कट के लाल चिन्ह उसकी आंखों में डर भर देते। वह अपनी काली अंधेरी रातों को एक एक कर काट रही है या अपने जीवित दिनों को? वह खुद के सवालों का कोई तसल्ली वाला उत्तर नहीं खोज पाती थी। कैलेंडर तो 12 महीने अपने पन्नों के साथ जीवित रहता है, पर क्या वे भी इन पन्नों के साथ साथ जीवित रह सकेंगे? जब कभी वह दवाई की टोकनी निकालती, प्रिया कराहती हुई रसोई में चली आती।
कभी पानी का गिलास भरकर, कभी चम्मच और कभी खाने की कोई चीज उठाकर ले आती। चीजों को न छूने और अलग थलग रहने की हिदायत जब से उसे दी गई थी, वह जानबूझकर सारी चीजों को छूती, मानो कह रही हो कि वह अछूत नहीं है। घर में उसकी छुअन का भी अपना वजूद है। माँ, यह क्या है? साबुदाना। और यह? वहां तुम्हारे काम का कुछ नहीं है प्रिया, जाकर बिस्तर पर लेटो। वह झिड़की लगाती। माँ, मैं बिस्किट खाऊंगी। वह बिस्किट का डिब्बा उठा लेती। रुक, मैं देती हूं। नहीं, मैं निकाल लूंगी। रुक जा, मैं ढक्कन खोल दूं। नहीं, मुझे आता है खोलना। तुम हर चीज को इस तरह क्यों छूती रहती हो बेटी? मैं क्यों नहीं छू सकती? मुझे पापा के साथ बाहर घूमने जाना है, आपकी गोद में सोना है। उस दिन वह सिसकने लगी थी और उसने गुस्से में उसके हाथ से बिस्किट का डिब्बा छीनकर सैनिटाइज करके रसोई में वापस रख दिया था। कुछ काजू, किशमिश और छुहारे लाकर उसके हाथ में रखते हुए वह बोली थी, इन सबको खाओगी तभी मैं तुम्हें गोद में लूंगी, नहीं तो अलग रहना पड़ेगा, समझ गई? खाओ इन्हें। और वह अपने आंसुओं को छिपाने तेजी से बाथरूम में घुस गई थी। कुछ समय बाद खुद को नियंत्रित करके जब बाहर निकली, तब तक प्रिया का हाथ खाली था। वह शांत होकर बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर उसे देख रही थी। उसे लगा था वह सब खा चुकी है और उसने उसे बाहों में भर लिया था। और उसी शाम वह भी कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। कई दिनों के बाद वह पूरे परिवार के साथ शयन कक्ष में सोई थी। अपनी दोनों बेटियों को दोनों बाहों में लिए पति के समीप पूरी नींद सोई थी। बहुत खुश थी वह। बेसबब यहां कुछ नहीं होता। कोई भी हमें दुखी होने के लिए विवश नहीं कर सकता। दर्द को टाला तो नहीं जा सकता, पर दुख केवल एक विकल्प ही तो है। कल तक कोरोना निगेटिव होना उसकी खुशी का सबब था, तो आज पॉजिटिव होना। खुशी के मानदंड हमेशा एक से नहीं रहते। अगली सुबह पति की कराह सुनकर उसकी नींद खुल गई। कुछ समय तक पति के पीले मुख और उठते गिरते सीने को ताकती रही। लगा इतने कठोर दिनों को पार करके भी शायद उसके मन की ताकत छोटी है। दोनों बेटियों को खुद से परे खिसका कर वह पलंग के सिरहाने जा खड़ी हुई। उसने अपना बायां हाथ पति के समीप सोई प्रिया के गालों पर रखा और दाहिना पति के माथे पर। गाल पानी की तरह ठंडा था और माथा तवे की तरह गर्म। उसे लगा उसने अपना एक हाथ मन की हिम्मत पर रखा है और दूसरा घबराहट की कांपती दीवार पर। पिछली रात ही लौंग और पिपली को तवे पर सेंक कर उसका चूर्ण बनाया था उसने। चूर्ण को डिबिया में डाल शहद मिलाकर पति के सिरहाने रख दी थी। उसने डिबिया खोली, पूरी डिबिया खाली थी। तो क्या रात भर खांसी रोकने के लिए चूर्ण मुंह में रखते रहे थे ताकि उसकी नींद न खुले? कई दिनों बाद वह चैन से सोई थी, यह उनको पता था। उसके आंसू टप टप पति के गालों पर गिरने लगे। उन्होंने अपनी पलकें ऊपर उठाई, उसका बेबस चेहरा उन पर झुका हुआ था। दाहिना हाथ ऊपर उठाकर उन्होंने उसका गाल थपथपा दिया। आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है? उसने उंगलियां उनकी नाक के पास टिका दी। हाँ, थोड़ी सी, रात से ही। उन्होंने एक सांस भीतर इस तरह खींची जैसे कमरे की सारी हवा इस एक सांस में भर लेना चाहते हों। उसके पांव तेजी से टेबल की ओर बढ़ गए। कॉटन के कपड़े को छोटे छोटे कई टुकड़ों में काट कर उसने रखा हुआ था। एक डिब्बे में कपूर, लौंग और अजवाइन कूट कर रखी थी। जल्दी से एक पोटली बनाकर पति को सुंघाने लगी। बच्चियां भी उठकर पलंग पर बैठ कभी उसे तो कभी खांसते और करवट बदलते बेचैन पिता को देख रही थीं। चिंता की कोई परछाई नहीं होती, मगर लकीरें होती हैं। उनके माथे पर वे इस तरह खींच गई थीं जैसे कभी मिटेंगी ही नहीं। उन दिनों कोरोना की जिस धूल से पूरी दुनिया ढकी थी, मौत की आंधियों ने उस धूल के साथ कई परिवारों की खुशियों को भी अपने साथ उड़ा लिया था। बहनोई से पता चला कि आसपास के किसी भी शहर के अस्पताल में बेड खाली नहीं है। इन दिनों सांस ठीक से ना ले पाने की समस्या मरीजों में बहुत बढ़ गई है। यह सुनकर उसकी हिचकी बन गई। पर बहनोई की मदद से शहर से 40 किलोमीटर दूर के किसी बड़े अस्पताल में एक बेड मिल गया था, मगर मृत्यु के उस जलजले में गाड़ी कहां मिलती? अखबारों के पन्ने मौत की खबरों से लबरेज थे। टीवी पर मुर्दों के भयावह दृश्य और प्रभावित लोगों की कर्णकटु चित्कार दिल दहला देते। शमशान रोशन थे और गली, मोहल्ले, चौराहे, सड़कें, गांव, शहर, घर सब वीरान। जिंदगी की आखिरी मंजिल मौत ही होती है, मगर अब की मौत ने जिंदगी के रास्तों और पड़ावों को ही अपनी मंजिल बना ली थी। एक ऐसी महामारी
जिसने एक चलती फिरती दुनिया को घरों में बंद कर दिया। सभी अपने अपने कोनों में कैद,

0: एक दूसरे से मिलते नहीं, छूते नहीं, बतियाते नहीं। डर का एक झिझिरा सा कंपन जिसने बाहर के भयानक समय को भीतर के उजाड़ और अकेलेपन में शामिल कर लिया हो। जैसे सभी एक दूसरे से कटे हुए मगर एक दूसरे की पीड़ा में अपनी पीड़ा को लिथड़ाए हुए। जिंदगी की कद्र ने रुपए पैसों की बेकदरी जितनी बढ़ाई थी, बिलखती भूख और जीवन की जरूरी आवश्यकताएं उसकी उतनी ही कद्रदा बन गई थी। आखिरकार 7,000 में गाड़ी मिल गई जिसका काम मरीज को अस्पताल के गेट पर उतारना भर था। किसी तरह गिरीश हॉस्पिटल पहुंच गए। वे दिन युगों की तरह गुजरे थे। दिन रात जागती आंखें शून्य में ताकती रहती, उनिंदे पन के बोझ से लदी आंखें जब कभी थककर झपकी लेने लगती और बाहर किसी एक गाड़ी की या हल्की बातचीत की आवाज आने लगती तो वह चौंक कर इस तरह खड़ी हो जाती जैसे किसी अनचाही आशंका ने सच का रूप धर लिया हो। छठवें दिन अचानक घर के बाहर गाड़ी रुकी। वह दौड़कर गेट पर आ गई। गिरीश बेहद कमजोर हो गए थे मगर मुस्कुराते हुए गाड़ी से उतरे। ड्राइविंग सीट पर उसका भाई बैठा था। पूरी दुनिया में चल रहे मौत के तांडव से डरे हुए लोगों को और अधिक डराने वाले तब के दिन और आज में कितना फर्क है। अस्थायी सुख के वर्तमान में बैठकर दुखों का स्थिर अतीत देखना कितना रोमांचक है। अपनी और अपनों की बीती परछाइयों की कल्पना से देह सिहरने लगती है। एक अजीब सी हमदर्दी और विषाद साथ साथ सिर उठाने लगते हैं। वह सोच में डूबी एकटक अपनी खुली हथेली पर पड़े उन मेवों को देखने लगी। कहां खोई हो खुशी? गिरीश ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। कब से पुकार रहा हूं? कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई थी। अपनी भींची मुट्ठी खोल, वह देखने लगी। गिरीश चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। खुशी के शांत निर्विकार चेहरे पर डबडबाई आंखें खुली हथेली पर झुकी थी। उसे सहसा लगा वह बहुत दूर खड़ी है, उनकी मौजूदा दुनिया से बाहर, गुजर चुके समय के आगोश में खोई हुई। यादें ही तो हमारा आईना होती हैं, उसी के सहारे हम अपने बीते जीवन की तस्वीरें देख पाते हैं। तस्वीरें खुशियों वाली हों तो हमारा आज का चेहरा भी मुस्कुरा उठता है, और अगर गमगीन हो तो। वह बहुत कुछ कहना चाहती थी मगर अपनी ओर देखते गिरीश का फिक्रमंद चेहरा देखकर बीच में ही रुक गई। जो यादें जिंदगी से गुजर चुकी उन्हें गुजर जाने दो, गिरीश की गंभीर आवाज ने जैसे उन्हें बीते समय में एक साथ खड़ा कर दिया। दोनों अपने अपने मौन के दायरे में सिमट गए। आवाज कहे गए शब्दों जितने ही भाव खोलती है मगर मौन के भाव अथाह होते हैं। कभी कभी गुजरा वक्त हमारी उंगली थामने की कोशिश में बार बार लौटता है गिरीश, हर बार हम उंगली झटक तो नहीं सकते। वह कहना चाहती थी मगर चुप के साथ मुस्कुरा दी जैसे गुजरे वक्त को आज की खुशियों के लिए धन्यवाद देना चाहती हो मगर सही शब्द नहीं ढूंढ पा रही हो। कुछ दृश्य आंखों के सामने होते हैं, मूंदने पर हट जाते हैं। कुछ आंखों के भीतर रहते हैं, मूंदने पर अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। स्मृतियों की मूंदी आंखों के भीतर गिरीश का मुरझाया हुआ बीमार चेहरा था, अब आंखें खुली हुई हैं, सामने उनका मुस्कुराता हुआ शांत चेहरा है। वह खिड़की के पास चली आई। उसने भींची मुट्ठी खुली खिड़की के बाहर ले जाकर खोल दी जैसे मुट्ठी के मेवों के साथ गुजरे दिनों की छायाएं भी गिरा रही हो।
1: कथायन कार्यक्रम के तहत अभी आप सुन रहे थे कहानी गुजरा हुआ कल। कहानीकार थी चंद्रिका चौधरी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 9:15 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत।

श्रोताओं, नरगिस दत्त के जन्मदिन पर उनको याद करते हुए चित्रपट संगीत में हम आपको सुनवा रहे हैं उन पर फिल्माए कुछ गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म दीदार से। स्वर है शमशाद बेगम का, बोल लिखे हैं शकील बदायूनी ने और संगीत है नौशाद का।

0: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में। अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
4: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
5: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
3: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
6: गीत मेरे होठों को गया कोई।
3: कभी कोई किस्सा याद आता है।
7: यादे।
3: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
8: मुझे कुछ कहना है,
9: मुझे भी कुछ कहना है।
3: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर। सुनिए।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिस

0: में उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: मदर इंडिया फिल्म का गीत अब सुनते हैं लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर और मीना मंगेशकर के स्वर में। बोल लिखे हैं शकील बदायूनी ने और धुन बनाई है नौशाद ने।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्री 420। लीजिए सुनते इस फिल्म का गीत मुकेश और लता मंगेशकर के स्वर में। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: हम
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें

घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक घर द्वार बारी बखरी के गोट स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में लीजिए अब सुनते हैं शैलेंद्र का लिखा गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की। फिल्म का नाम है आवारा।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

लता मंगेशकर के स्वर में अभी आपने सुना बरसात फिल्म का गीत। हसरत जयपुरी के लिखे बोलों को संगीत से सवारा था शंकर जयकिशन ने। इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अब सुनते हैं सुगम संगीत। कलाकार हैं कुसुम बड़ौदकर। पहले इनसे सुनते हैं ब्रह्मानंद का लिखा ये भजन।

स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेष

0: विशेषज्ञों की सलाह सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। कलाकार हैं कुसुम बड़ौदकर। आइए इनसे सुनते हैं ये गजल। शायर हैं आशिक तानिश।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 हुए हैं। अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत आज हो रहा है मतदान। प्रदेश में प्राकृतिक खेती और मृदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज से खेत बचाओ अभियान शुरू हो रहा है। और हिमाचल प्रदेश के चांबा जिले में हुए सड़क हादसे में भिलाई के 4 लोगों समेत 8 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उप निर्वाचन के लिए आज मतदान चल रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 71 पदों के लिए 96 मतदान केंद्रों पर 31,928 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच के कुल 151 पदों के लिए 274 मतदान केंद्रों पर करीब 1,02,800 मतदाता वोट डालेंगे। नगरीय निकायों में मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराया जा रहा है, जबकि पंचायत चुनाव में मतदान सुबह 7

0: बजे से दोपहर 3 बजे तक मतपेटी के माध्यम से हो रहा है। पंचायत चुनावों की मतगणना मतदान के बाद संबंधित केंद्रों पर ही की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने मतदाताओं से शत प्रतिशत मतदान करने की अपील की है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती और मृदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज से खेत बचाओ अभियान शुरू हो रहा है। कृषि मंत्रालय भारत सरकार के इस अभियान का आयोजन 30 जून तक किया जाएगा। अभियान के तहत किसानों को प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक और मृदा संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा। ग्राम पंचायत, विकासखंड और जिला स्तर पर कृषक संगोष्ठी, कृषि चौपाल और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कृषि वैज्ञानिक किसानों को रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव तथा प्राकृतिक खेती के लाभों की जानकारी देंगे। अभियान के दौरान किसानों को अपनी कृषि भूमि के एक हिस्से में प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। साथ ही उर्वरकों की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के चांबा जिले में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में भिलाई के चंद्राकर परिवार समेत 8 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा साच पास मार्ग पर हुआ, जहां पर्यटकों से भरी एक कार करीब 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। मृतकों में भिलाई मूल के एक दंपति और उनके दो बच्चे भी शामिल हैं। यह परिवार बेंगलुरु में रह रहा था। जानकारी के अनुसार दो परिवार डलहौजी से साच पास घूमने गए थे। वाहन के वापस नहीं लौटने पर जीपीएस के माध्यम से उसका पता लगाया गया। पुलिस और प्रशासन ने राहत अभियान चलाकर सभी शवों को बाहर निकाला। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल बेमेतरा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना सामाजिक समरसता, सादगी और सकारात्मक मूल्यों को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम बन रही है। इस अवसर पर बेमेतरा के विधायक दीपेश साहू भी सामूहिक विवाह समारोह में वैवाहिक बंधन में बंधे। उनकी बारात पारंपरिक बैलगाड़ी में निकाली गई, जो समारोह का मुख्य आकर्षण रही। इस बैलगाड़ी के सारथी उप मुख्यमंत्री अरुण साव बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहते हुए सादगीपूर्ण विवाह करना और बैलगाड़ी में बारात निकालना समाज के लिए प्रेरणादायी संदेश है। उन्होंने कहा कि यह हमारी लोक परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक मूल्यों के प्रति सम्मान का प्रतीक है तथा नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जुड़े रहने की सीख देता है। और पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान प्रदेश के अनेक हिस्सों में गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। इस दौरान तेज हवाएं चल सकती हैं और कहीं कहीं आकाशीय बिजली भी गिरने की चेतावनी दी गई है। इसके चलते तापमान में करीब 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव का कल समापन हो गया। समापन समारोह में सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि गांव में अमराई यानी आम के बगीचे लगाने की परंपरा को फिर से जीवित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं में आम का विशेष महत्व है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत आज हो रहा है मतदान। प्रदेश में प्राकृतिक खेती और मृदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज से खेत बचाओ अभियान शुरू हो रहा है। और हिमाचल प्रदेश के चांबा जिले में हुए सड़क हादसे में भिलाई के 4 लोगों समेत 8 लोगों की मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अब सुनते हैं जयदीप घोष का सरोद पर बजाया राग भंखार। आलाप के बाद विलंबित रचना 3 ताल में निबद्ध है।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जयदीप घोष का सरोद पर बजाया राग भंकार। तबले पर संगत कर रहे थे सुरेश भट्ट। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

90 साल की आवाज। आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आई मिलन की बेला, लीजिए सुनते इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के स्वर में। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर। कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादें
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए
8: कहिए कहिए

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है। आकाश।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म राजा रानी से। आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है राहुल देव बर्मन का।

एस डी बर्मन के संगीत निर्देशन में आइए अब सुनते हैं मजरूह सुल्तान पीर द्वारा लिखा ये गीत। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है ज्वेल थीफ।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दिन के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमा के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का ये अभियान 30 जून तक चलेगा। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह लोकभवन में आयोजित हो रहा है। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स आज नई दिल्ली में भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के दूसरे संवाद की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार बैठक में रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत बनाने, सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने, रक्षा उद्योग में साझेदारी, सह विकास और सह उत्पादन के अवसरों पर चर्चा होगी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस महीने की 18 तारीख को मतदान होगा। वोटों की गिनती भी उसी दिन होगी। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53.50 रुपए तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की ने जेईई एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री लामिछाने भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। उनका नई दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व सहित कई उच्च स्तरीय राजनीतिक और राजनयिक बैठकों में शामिल होने का कार्यक्रम है। अफ्रीकी संघ ने इबोला से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आपातकालीन निदान, उपचार और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। संघ की स्वास्थ्य एजेंसी अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि ये सामान युगांडा में पूर्वी क्षेत्रीय समन्वय केंद्र के माध्यम से भेजे गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दिन के 11:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम फोन करव छत्तीसगढ़ी गीत सुनव। फोन संवाद और प्रस्तुति है अनुभा अग्रवाल की।

0: फोन करो, छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ। एक कार्यक्रम के जम्मू श्रोता संगवारी मनला, आज के कार्यक्रम ले अनुभा अग्रवाल के मयाले भरे राम राम जय जोहार तसंगी हो। आवो शुरू करथन ये कार्यक्रम ला और देखथन हमर कौन संगवारी के फोन हमला पहली मिले है। फोन करो, छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ।
1: मैं टीकम राम साहू बोला था मैडम, बिनौरी फिंगेश्वर से।
0: टीकम राम साहू जी, आपके हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। कहाँ हाल चाल है भैया?
1: सब बढ़िया है, गर्मी अभी बहुत बढ़े है मैडम। अभी
0: गर्मी तो सब तरफ बहुत ज्यादा है और अगोरा है कि कब मौसम हो थोड़ा सा शांत हो। नहीं भाई,
1: आज थोड़ा सा बद रहा मौसम, ऐसे जूर लगा हल्का, मतलब तापमान कमी।
0: तो आप अपन गाँव तरफ का काम बूता से जुड़े हो भैया?
1: अब मैं तो टेलर काम करता हूँ मैडम। अच्छा। दुकान खोले हूँ गाँव में, बिनौरी में।
0: हाँ हाँ, तो सिलाई में आप मन सब टाइप के कपड़ा ला सिल थो?
1: जी मैडम, आते पैंट शर्ट सूट।
0: अच्छा, सिलाई करे के आप मन कहाँ से शिक्षा ले हो भैया, प्रशिक्षण कहाँ से ले हो आप मन?
1: हाँ, इसने कोई दूसरा जगह जाके सिलाई सीखे हो दो चार दिन, अपन आप में ज्ञान है बढ़त की काम करते करत
0: आपन अभ्यस्त हो गए हो। नहीं काम करत रही थो टेलरिंग के और रेडियो आकाशवाणी रायपुर ला भी सुनत रही थो भैया?
1: वो हमर मन के बहुत है, वो दिनचर्या के साथी हो।
0: रेडियो तो सबे जन के साथी हरे है नहीं?
1: काम चला थे पर रेडियो सुनत है।
0: हाँ, सब प्रकार के ज्ञान शिक्षा सूचना मनोरंजन आप ला मिलत रही थे। नहीं
1: साथ में बैठे ला थे मत खुश हो जाते मैडम, बढ़िया। हाँ। पुराना कथा सुने मिलते इसी के।
0: हाँ हाँ हाँ, यही तो खासियत है रेडियो के।
1: हाँ, बहुत अच्छा है।
0: हाँ, तो आज आपके पहली फोन लगे है भैया, तो बताओ अपन पसंद ला।
1: बहुत दिन हो गए पुराना गीत मतलब सुने नहीं मिला था मैडम, पंचराम बिरजा के।
0: कौन सा गीत भैया?
1: कैसा रेल बनाया बनाने वाला।
0: हम आपके पसंद में वो गीतला जरूर सुनवाबो। आप मन फोन करे हो, धन्यवाद।
1: धन्यवाद मैडम।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: हेलो
2: हेलो,
1: फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ।
2: राम राम दीदी।
1: राम राम, कौन कहाँ ले बात करत थे?
2: मैं लोरी सांस बोल रहा हूँ दीदी, बड़कुराम साहू।
1: कार्यक्रम माँ हम आपके स्वागत करत हैं भैया।
2: बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।
1: और कहाँ कर थो भैया आप मन?
2: मैं जैस गीत बना थो दीदी, गाना
1: जैस गीत बना थो। अरे वाह, तब तो एकदम कलाकार हर हो आप मन। और दुर्गा पक्ष में तो आप मन बहुत बिजी व्यस्त रहा थो।
2: हाँ दीदी, हाँ हाँ
1: हाँ। तो कैसे टाइप के जस गीत ला गाथो भी भैया आप मन?
2: हाँ मैं जस गीत बनाओ स्वयं गाथो जी।
1: हाँ तो थोड़ा सी गा के बताओ हमला।
2: यहाँ बना दीदी अपन खपरी कला, मुरगांव है ना।
1: हाँ
2: मुरगांव खपरी कला है, वही गाँव देरी के थी बनाए होगा ना।
1: हाँ
2: सतचंडी ओ मैया खपरी कला के, हाँ सतचंडी ओ मैया खपरी कला के, हाँ जग बगई चंबी राजे ओ मैया, जग बगई चंबी राजे ओ मैया, पाके ओ शीतल छैया, सतचंडी ओ मैया खपरी कला के। हाँ मुखरा,
1: बहुत सुंदर गाए हो भैया, आपकी आवाज में तो बहुत मिठास है। और बहुत अच्छा दुर्गा जी के देवी जी के गीत ला प्रस्तुत करे हो आप मन। तो आपके पूरा टीम है, मंडली है का भैया?
2: हाँ हाँ दीदी, हाँ हाँ वही वही।
1: तो आप मन गांव गांव जाके जस गीत के वो प्रस्तुति दे थो?
2: हाँ हाँ, सेवा बजा दीदी, गांव को नहीं मना रहते ना।
1: हाँ हाँ,
2: तो जाकर सेवा बजा करते अपन संगी साथी मन सन।
1: बहुत बढ़िया बात है भैया। और एकर अलावा और कुछ काम कर थो भैया?
2: खेती किसानी है मोर।
1: खेती किसानी भी कर थो? तो अभी तो थोड़ा से सुस्ताए के दिन हरे, गर्मी बहुत है।
2: बहुत गर्मी दीदी, घाम तो निकले मन नहीं चल
1: मन नहीं हले। बिल्कुल बिल्कुल,
2: मैं तो सब संगी साथी कथा हूँ और छत्तीसगढ़ के पूरे छत्तीसगढ़ वासी मल्ला पानी बचाव कम कर रखा हूँ।
1: हाँ तो पानी के बचाव के का उद्यम कर थो आप मन भैया आपके गाँव तरफ?
2: हाँ दीदी, हाँ दीदी, पानी बहुत बचाव कर दीदी, नहीं बहावत मन
1: पानी है तभी जिनगानी है नहीं भाई। हाँ तो बताऊ अपन फरमाइश ला कौन गीत ला सुनू?
2: मोला मोती राम के स्वर में दीदी, कल्पत छेद गोहरावत है तोला, कल्पत छेद गोहरावत है तोला, आगे असार समझा दे रे बादल।
1: आप मन फोन करे हो भैया, आपसे बात करके आपके गीत ला सुन के हमला बड़ा निक लागी से। धन्यवाद
2: धन्यवाद दीदी, धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो,
0: फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ।
1: हाँ, जय राम दीदी।
0: जय राम।
1: मैं बोलला कावाओ राम कुमार जायसवाल जुन्ना पारा लोरमी।
0: का हाल चाल है भैया?
1: भाई गे नवटप्पा चला थे। हाँ। गर्मी बिकट हो गए थे दीदी। जो हमारा जो जूना पारा में 44-45 दीदी या डिग्री चला थे दीदी।
0: सब तरफ वही हाल है भैया, गर्मी बहुत ज्यादा पड़त।
1: अब का है दीदी, या पेड़ पौधा लगत नहीं है, कटाई चलत है।
0: गर्मी से बचना हाँ। जरूरी है, अपन सेहत के ध्यान रखना भी जरूरी है।
1: सही बात दीदी, सही बात।
0: तो आज आपके फोन लगे है भैया, बताऊँ अपन पसंद ला
1: गोरेलाल बर्मन के सुना कुछ गर्मी के दिन में।
0: गोरेलाल बर्मन के कोई भी गीत ला सुना दन।
1: हाँ हाँ, जिन्हा गर्मी से या संबंधित रहे दीदी।
0: हम आपके पसंद में गीत ला जरूर सुनवाबो, आप मन फोन करे हो। धन्यवाद।
1: हाँ, धन्यवाद दीदी। जय श्री राम।

0: हेलो,
1: हेलो
0: फोन कराओ, छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ।
1: जी, राम राम मैडम।
0: राम राम।
1: मैं सिवनी खुद रेंगा खार कबीर धाम वाले मनसा राम पटेल बोला।
0: मनसा राम पटेल जी के हम अपन कार्यक्रम में स्वागत करत हन। कैसे हो भैया, का हाल चाल है?
1: बढ़िया हन, गर्मी बहुत ज्यादा पड़त है हमारे से अभी।
0: गर्मी तो पूरा जगह बहुत ज्यादा पड़त है भैया, नौतपा भी चलत है। तो का काम बूता करथो आप मन?
1: मैं हाँ, थोड़ा बहुत खेती है, मजदूरी वगैरह करता हूँ।
0: अच्छा, तो अभी तो खेती में कुछ काम ज्यादा हो ही नहीं आपके?
1: नहीं, अभी कुछ नहीं है।
0: हाँ, तो घर में अपन टाइम पास करत रही थो, रेडियो रेडियो सुनत रही थो?
1: हाँ, बस म्यूजिक बल्ब लगे है घर में, रेडियो है,
0: हाँ
1: ब्लूटूथ बाहर से बारी बारी में काम करता हूँ, तो वो मैं मोबाइल ऐप से चला के सुन लेता हूँ।
0: हाँ मोबाइल ऐप की सुविधा बहुत अच्छा है, जहाँ जाहू रेडियो आपके संग चाहिए। तो आज भी आपके फोन लग गए हैं भैया, तो बताहू कौन कलाकार के गीत ला सुनू?
1: कविता वासनिक के स्वर में है एक ठो गीत, पता ले जा रहे गाड़ी वाला।

0: हेलो
1: हेलो। हाँ दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: मैं नाजिया गंडेले मूलचंद पटेल बोलत।
0: तो मूलचंद पटेल जी के हम अपन कार्यक्रम में स्वागत करत हन।
1: हाँ जी धन्यवाद दीदी।
0: का हाल चाल है, कैसे हो?
1: सब बढ़िया दीदी। बढ़िया हवा ना अभी रोजगार गारंटी के काम चलत है, गोदी माटी चलत है रोहित जाथा ना।
0: तो उमा का काम रही थे भैया आपके?
1: अब दीदी पंचायत सरपंच मन के थे कि भैया आप मेट के काम करते हो, इसी कथन मेट के काम करता हूँ मैं।
0: अभी वही काम में लगे हुए हो आपमन?
1: हाँ गोदी काम में।
0: रेडियो के तो आपमन बहुत जुन्ना श्रोता हरो।
1: हाँ जी। मैं हर कार्यक्रम में ईमेल के माध्यम से मैसेज भेजत जाता हूँ, ईमेल आईडी भेजता हूँ हर कार्यक्रम में आकाशवाणी रायपुर के।
0: तो कौन से कार्यक्रम ज्यादा पसंद करते हो यहाँ के?
1: अब दीदी का है फोन करा छत्तीसगढ़ी जी सुनो एक कार्यक्रम में आने सभी राज्य के जम्मो श्रोता संगवारी मन फोन में बातचीत करत रहते तो उखर माध्यम ले उखर मन के गोट बात सुनेल मिलते, जानकारी मिलते, हम अच्छा लगते थे। फोन करा छत्तीसगढ़ी गीत सुनो ये कार्यक्रम मोला बहुत अच्छा लगा।
0: और ये कार्यक्रम में आज आपके भी फोन लग गए है, तो बताहु कौन
1: हाँ
0: से गीत ला सुनना पसंद करहू?
1: जी सुना देते दीदी। तुकाराम निर्मलकर एवं साथी का आवाज में मोला कर्मा नाचे के साथ मैं आरू झूमर के मांगर बजा दे।
0: हम आपके पसंद मा गीत ला जरूर सुनवाबो।

0: हेलो,
1: फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो।
0: फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो माँ, स्वागत करत हन। हमार कौन श्रोता से बात हुआ थे?
1: दी जय जोहार, मैं गांव नारधी पोस्ट भिलाई 3 जिला दुर्ग ले बोलत हूँ, भागवत प्रसाद सिन्हा।
0: भागवत प्रसाद सिन्हा जी के कार्यक्रम में स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, धन्यवाद।
0: अच्छा, तो आज आपके फोन लग गए है, बहुत खुशी के बात है। बताओ का हाल चाल है और कैसे कौन भूताले जुड़े हो आप मन?
1: मैं एक बहुत खुश हूँ दीदी की आप मन के तारीफ ये करता हूँ की हमन बोल रहे थे दीदी की एक गीत सुनाओ करके, लेकिन वो बीच में आप मन लगाते तकलीफ उठाए पड़ती कि ये कैसे ढूंढ हो वो कैसे ढूंढ हो, लेकिन हमला कहा दीदी सुने में आसान लगते बोले में आसान लगती ये गीत सुनाओ करके, लेकिन तकलीफ आप लोग अटका हो तो ही अगर हम ये कर सकत हैं दीदी, कहाँ खोजत हो कैसे करत हो ये बोला ये लगते दीदी हमारे सोच लगते भले बोल देते आसान लगते हम एक गीत सुना तो वो गीत सुना दो।
0: नहीं तो आप श्रोता मन के तो ये कामे है भैया, और हमार काम ये है कि आपके पसंद ला फरमाइश ला पूरा करना है। नहीं भाई, आप मन अच्छा सोचे हो भैया, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दुकानदारी करता हूँ दीदी, दुकानदारी बैठे था रेडियो सुना थी, मैं बहुत पुराना श्रोता हूँ दीदी।
0: हाँ, आप मन तो बहुत जुन्ना श्रोता है वो मन है ना।
1: हाँ दीदी, हाँ दीदी, हाँ
0: हाँ। आज भी आपके फोन लग गए है भैया, तो बताओ अपन पसंद ला।
1: आज मोर पसंद के गीत है दीदी कुलेश्वर ताम्रकार और ममता चंद्राकर के आवाज में है। मोर राहुल बेलहारी बाजार।
0: तो बहुत अच्छा गाना गात हो, एकदम सुर ताल में एकदम सधे आवाज है आपके, तो भाई बहुत सुंदर लगी आपके आवाज में गाना ला सुन के ना, बहुत अच्छा लगी समला।
1: धन्यवाद दीदी।
0: हाँ, तो हम आपके पसंद माँ गीत ला जरूर सुनवा आप मन फोन करे हो भैया, धन्यवाद। इसने जुड़े रहा हो आकाशवाणी रायपुर के संग में।

0: हेलो,
1: राम राम दीदी।
0: राम राम, नाम बताहू।
1: भाठा पारा दतरंगी ले हीरू राम साहू ब्लड निमिष रोते दीदी।
0: हीरू राम साहू जी के हम स्वागत करत हन अपन कार्यक्रम में।
1: बहुत दिन से लगाया दीदी, पहली बार लगा 2026 में दीदी।
0: ये तो बहुत खुशी के बात है भैया, आज आपके फोन लग गए है। कैसे लगत है आप ला?
1: मुलाद बहुत खुशी हुआ बहनी, पूरा बार बिहार घर की निपट गई, फिर मोर फोन ही लग गई बहनी। हाँ लगी साहब, बहुत दिन दीदी।
0: हाँ तो का हाल चाल है भैया?
1: अब हाल चाल तो सब ठीक है दीदी, बहुत गरीब पड़त है, नौटप्पा घाम बहुत पड़त बहनी।
0: और का काम पुता ले जुड़े हो आप मन भाटा पर दतरेंगी में?
1: अब हमारी दीदी थोड़ा से का है, रोजगार गारंटी वाला सरकार प्रधानमंत्री वाला काम चला दीदी, का है सबके कायवास आते हैं और गोदी उदी खुले दीदी।
0: अच्छा तो वही काम में लगे हो आप मन?
1: हाँ दीदी हाँ।
0: और आज आपके फोन लग गए है भैया, आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम ला सुनत रही थो कि नहीं?
1: मैं है दीदी सुबह 6 बजे से लेकर रात तक 11 बजे से सुनता हूँ बहनी, सब कार्यक्रम बहनी, कोई कार्यक्रम मन मरे नहीं बात।
0: तो कौन से कार्यक्रम ला ज्यादा पसंद करते हो?
1: अब दीदी का है जो सुर सिंगार है, आप मन गीत है, अब ये फोन करो गीत सुना, फोनिंग फरमाइश ऐसे सब लोग सुनता दीदी मैं नियमित रूप से दीदी।
0: अच्छा बहुत अच्छा बात है भैया, जुड़े रहा इसने आकाशवाणी रायपुर के संग में। तो मोबाइल में सुनते आप मन की रेडियो है आपके पास?
1: हमारे में दूसरे रेडियो है दीदी, फिर मोबाइल वाला सुनता बहनी, बाहर जैसा मोबाइल सुनता दीदी।
0: तो बताओ अपन पसंद ला कौन गीत ला सुनना पसंद करूँ आज?
1: अब दीदी का है तो हमार दीदी हमारे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक कलाकार है मंत्र दीदी है।
0: आप मन फोन करे हो, धन्यवाद
1: धन्यवाद।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: बिंदिया, शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए। प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया। मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया। डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।
2: हेलो
3: जी, नमस्ते मैम।
2: नमस्ते,
3: प्रवीण कुमार साहू मैडम, ग्राम चटौर दुमी कलर।
2: फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो माँ, हम अपन श्रोता के स्वागत करत हन।
3: जी धन्यवाद मैम।
2: का हाल है भैया?
3: सब बने बने मैडम। हमारे कोती अभी का है, गर्मी बढ़त है और संगे संग पानी के जो है संरक्षण करना बहुत जरूरी मैम।
2: बहुत जरूरी है पानी के बचत करना, तो का उदिम अपनाथो आपन अपन गाँव में?
3: सबसे पहले तो मैडम जो पानी के जो टोटे थे ना, उसमें जो बूंद बूंद जो गिरते थे ओला, कहीं पर भी दिखता मैडम, कहीं पर भी जाता मैं, सबसे पहले बंद करता मैं। घर रहा है
2: बहुत अच्छा बात है भैया।
3: और का है दूसरा भी मतलब संदेह था कि एक बूंद से भी बहुत पानी जो है बर्बाद हो जाता है, ओला संरक्षण करे बार हमारे नवा पीढ़ी बहुत जरूरी है मैम।
2: बहुत जरूरी है। और का करते हो भैया आप मनो तरफ?
3: अभी मैं संविदा पढ़ाता मैडम, अभी अतिथि के रूप में। जी मैडम, कॉलेज में अतिथि बच्चा के रूप में।
2: बहुत अच्छा बात है भैया।
3: जी मैडम जी।
2: हाँ, और आकाशवाणी रायपुर से भी जुड़े हो तो कौन कौन से कार्यक्रम ला पसंद करते हो सुने बार?
3: आकाशवाणी से मैं सन 2004 से जुड़े हैं मैडम, जो श्रोता पत्र पर जो आधारित आपके पत्र, जो युवाणी है और किसान वाणी है, और जितना भी मतलब कहे जाते महिला विभाग के भी बहुत सारे जो कार्यक्रम आते हैं, सब जो है रुकनापूर्वक थे मैडम।
2: अच्छा, और आज भी आपके फोन लग गए हैं भैया, तो बताओ अपन पसंद ला।
3: तो मोर पसंद है मैडम पवन चंद्राकर जी के एक गाय गीत है मैडम, आज बिगुन होके ते गाले जा जवैया वाला। और दूसरी पसंद है मैडम ढोलराम मरकाम जी के है जतन करे वाला।
2: हम आपके पसंद में गीत ला जरूर सुनवाबो, आप मन फोन करे हो। धन्यवाद
3: जी। जी धन्यवाद मैम।

ए रिहिस आज के कार्यक्रम के आखिरी फरमाइश औ अब होवत हे हमर जाए के बेरा। फिर जाए के पहली आप मन ला बता दन आज के कार्यक्रम में गीत ला जोड़े रहिन बीर भान साहू। त अब देवो अपन संगवारी अनुभा अग्रवाल ला बिदा औ स्वीकारो मोर माया ले भरे राम राम।

फोन करव छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ। ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। फोन संवाद और प्रस्तुति थी अनुभा अग्रवाल की। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:55 होने को हैं, अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत आज हो रहा है मतदान। प्रदेश में प्राकृतिक खेती और मृदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज से खेत बचाओ अभियान शुरू हो रहा है। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान प्रदेश के अनेक हिस्सों में गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उप निर्वाचन के लिए आज मतदान चल रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 71 पदों के लिए 96 मतदान केंद्रों पर 31,928 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच के कुल 151 पदों के लिए 274 मतदान केंद्रों पर करीब 1,02,800 मतदाता वोट डालेंगे। नगरीय निकायों में मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराया जा रहा है, जबकि पंचायत चुनाव में मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतपेटी के माध्यम से हो रहा है। पंचायत चुनावों की मतगणना मतदान के बाद संबंधित केंद्रों पर ही की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने मतदाताओं से 100% मतदान करने की अपील की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 30 जून तक चलेगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और उचित उपयोग बढ़ाना, मौसम संबंधी चुनौतियों के बीच किसानों को समय पर सलाह देना तथा पंचायत स्तर पर जनभागीदारी सुनिश्चित करना है। श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अभियान में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। कृषि मंत्री ने इस अभियान को जनभागीदारी के माध्यम से एक व्यापक जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव का कल समापन हो गया। समापन समारोह में सांसद ब्रिज

0: मोहन अग्रवाल ने कहा कि गांव में अमराई यानी आम के बगीचे लगाने की परंपरा को फिर से जीवित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं में आम का विशेष महत्व है। महोत्सव में देश भर के 400 से अधिक किसानों ने आम की 250 किस्मों के लगभग 2000 प्रादर्श प्रदर्शित किए। इस दौरान आम की विभिन्न श्रेणियों की प्रदर्शनी और प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने धमतरी जिले में पुलिस की पाठशाला का लोकार्पण किया। पुलिस की पाठशाला में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़ी किताबें निशुल्क उपलब्ध कराई गई हैं। यह लाइब्रेरी उन गरीब और मेधावी विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन संसाधनों और पुस्तकों के अभाव में नहीं कर पाते। लोकार्पण अवसर पर पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने कहा कि यह पाठशाला शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में अगले 5 दिनों तक तेज हवा चलने के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। हालांकि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने में होने वाली देरी के कारण जून के पहले पखवाड़े में हीट वेव चल सकती है। आने वाली नमी बस्तर में भारी गर्मी को रोकेगी मगर मध्य और उत्तरी इलाके पहले पखवाड़े में गर्मी की चपेट में आ सकते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की रफ्तार कम हो रही है जिसकी वजह से इसके छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावित तारीख आगे सकती हुई नजर आ रही है। कांकेर जिले की पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 32,60,000 रुपए से ज्यादा कीमत की चोरी का सामान और वाहन बरामद किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत आज हो रहा है मतदान। प्रदेश में प्राकृतिक खेती और मृदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज से खेत बचाओ अभियान शुरू हो रहा है। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान प्रदेश के अनेक हिस्सों में गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 12 बजे प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। साथ ही साथ नए महीने जून की आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: मौसम चाहे जैसा हो, मन में उम्मीद की धूप हमेशा खिली रहनी चाहिए। बहुत खूबसूरत विचार है, आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद।
3: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कोटकुटिया नायक, पद्मलोचन मोहंती, अभिराम साहू, सत्यजीत नायक और साई प्रसाद नायक जी का।
2: रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा।
3: और ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा जी ने लिखा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं जी? आशा करते हैं आप सकुशल होंगे। आज बहुत दिनों बाद आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र भेज रहे हैं। काम की कुछ व्यस्तताओं के कारण आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन हम लोग नियमित रूप से आपका उमंग कार्यक्रम सुन रहे थे। उमंग कार्यक्रम में इन दिनों राग रस बरसे कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। धन्यवाद इस कार्यक्रम को उमंग कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आपने संगीत प्रेमियों की खुशी को दोगुना बढ़ा दिया है। बहुत

0: बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जेल रोड कानपुर से फातिमा वली बेलदार, सरफुद्दीन वली बेलदार, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम बेलदार जी का।
0: खेरागढ़ राजलालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे।
1: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्डखे, नंदा बोर्डखे, हनुमान बोर्डखे और उत्तम जामदाड़े जी।
0: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए।
1: और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ है?
0: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका का शीत मरुस्थल।
1: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में सकुरा कहते हैं।
1: और अब हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है?
0: ट्यूलिप फूल मूल रूप से कजाकिस्तान का है। यहाँ से ये तुर्की पहुँचा और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया।
1: और फिर हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, रजनीगंधा फूल रात में ही अधिक खुशबू क्यों देता है?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। प्रकृति ने रजनीगंधा फूलों को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए बनाया है। रात को इस फूल के अंदर का सुगंधित तेल बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण रात्रि बेला के कीट पतंगे इस फूल की ओर आकृष्ट होते हैं।
1: हमारा अंतिम प्रश्न था, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
0: इसका उत्तर है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था?
1: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आज का हमारा पहला कार्यक्रम है श्रोता संवाद। चर्चा का विषय है समावेशी शिक्षा।
1: ये कार्यक्रम उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण है, जिसे हम CIET NCERT और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की जाने वाली डिजिटल व अन्य पहलों के बारे में जानकारी देते हैं। आज की चर्चा के विषय विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। श्रोता संवाद।
0: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने हमारा विशेष मासिक रेडियो संस्करण श्रोता संवाद प्रसारित होता है, जिसमें हम जानकारी देते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और CIET NCERT द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही विभिन्न पहलों पर। इस क्रम में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। आप CIET के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्ष हैं। तो प्रोफेसर कौशिक, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
2: धन्यवाद।
0: हमारे श्रोता ये जानने के लिए हमेशा बहुत उत्सुक रहते हैं कि श्रोता संवाद में हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा। तो आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं?
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो अक्सर आपको और मुझको छूता तो है, हम देखते तो हैं
0: जी,
2: लेकिन कहीं ना कहीं हम झिझक जाते हैं इस पर बातचीत करने में
0: जी।
2: आज हम बातचीत करेंगे समावेशी कक्षाओं की, समावेशी शिक्षा की।
0: क्या बात है। तो मेरा पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से ये है कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? क्या इसे हम समता मूलक शिक्षा भी कह सकते हैं?
2: इसको हम समता मूलक शिक्षा तो शायद नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी को सम दृष्टि से देखना
0: जी,
2: तभी तो वो समावेशी शिक्षा है, सबको साथ लेकर के चलना। लेकिन जहां हम बात करते हैं समता मूलक, मतलब हर एक की विशिष्टता को, हर एक की आवश्यकता को पहचान देना, हर एक की आवश्यकता को समझना और उसके अनुरूप उसकी पूर्ति करना
0: जी।
2: अब ये विद्यालयों में, हमारे कक्षा कक्ष में कैसे हो सकती है, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं
0: जी।
2: आप ये समझिए कि समावेशी कक्षा के या समावेशी शिक्षा के प्रावधानों में आता है कि सबको समान तरह की पुस्तकें देना, सबको समान तरह का खाना देना मिड डे मील के अंतर्गत, या सबको समान तरह की आप यूनिफॉर्म देते हैं, ठीक है
0: जी।
2: अब अगर कोई विद्यार्थी मेरी कक्षा में ऐसा है जो देख नहीं सकता या जिसको देखने में दिक्कत है, तो क्या होगा? लेकिन मैं तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत काम कर रही हूँ, तो मुझे तो उसको मुद्रित या प्रकाशित या छपी हुई किताबें ही देनी है
0: जी।
2: लेकिन वो

0: विद्यार्थी जो नहीं देख पा रहा उसका क्या, उसके लिए तो वो किताबें किसी काम की नहीं है। यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ मुझे समतामूलक शिक्षा के सिद्धांतों का पालन करते हुए मैं उनके लिए ऐसी किताबें दूं जो या तो वो सुन लें, यानी ध्वनि के रूप में हो किताबें, रिकॉर्डेड हो
1: जी,
0: या मैं उन्हें ऐसी किताबें दूं जो ब्रेल में हो, जिनको वो छू करके पढ़ सकें, या एक तीसरा स्वरूप हो सकता है कि मैं उन्हें डेजी में भी किताबें दूं, जो भी ध्वनि आधारित किताबें होती
1: जी।
0: समतामूलक शिक्षा में हम क्या करते हैं, हम प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम तब उसको पूर्ति करते हैं। और समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं, सबको सम दृष्टि, एक समान दृष्टि से देखते हैं। यानी अगर हम एक को अगर हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं तो पूरी कक्षा को हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो वहां व्यक्तिगत आवश्यकताओं का उतना ज्यादा ध्यान हम नहीं दे पाते हैं।
1: जी, आपने बहुत ही विस्तार से हमें बताया कि समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा में क्या अंतर है। आप थोड़ी सी बात करते हैं इसके इतिहास की। प्रोफेसर भारती, हमें अब ये बताएं कि भारत में समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई।
0: सबसे पहला जिक्र विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा का आता है हमारे कोठारी कमीशन में, जो 1964 का जो शिक्षा आयोग है, जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं
1: जी।
0: इस कमीशन में बातचीत तो की गई थी कि हमें दिव्यांगजन विकलांगजनों को हमें शिक्षा देनी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी
1: जी।
0: क्या इन्हें सामान्य विद्यालयों में, मुख्य धारा विद्यालयों में बिठा करके पढ़ाना है, या इनके लिए अलग से कुछ हमें एक विद्यालय खोलने होंगे। लेकिन हाँ, जिक्र जरूर किया गया था। तो शुरुआत हमने किया कि ठीक है, इनके लिए हम कुछ अलग से विद्यालय बनाते हैं, वहां हम इनको पढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये विद्यार्थी भी अंततः हिस्सा तो हमारे ही समाज का बनेंगे। तो एक पहल छोटी सी ये की गई कि इन विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों से निकाल करके कुछ समय के लिए मुख्य धारा विद्यालयों में लाया गया, ताकि दोनों तरह के विद्यालयों के बच्चे आपस में बातचीत कर सकें और घुल मिल सकें और एक दूसरे को अजूबा न समझें। विशेष विद्यालयों में पाठ्यचर्या भी विशेष थी, शिक्षक भी विशेष थे और बच्चे भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले थे। तो जब ये हम मुख्य धारा में इनको कुछ समय के लिए लेके आए, तो ये हमारा एक प्रयोग कुछ आंशिक रूप से सफल हुआ
1: जी।
0: उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, कुछ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को हमने विद्यालय से पूर्व उनकी पूर्ति करने की कोशिश की और फिर उन्हें मुख्य धारा विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं से समावेश करना उनका शुरू किया। इसमें भी कुछ सफलताएं मिली, कुछ विफलताएं मिली, लेकिन सफलताओं से सीख करके आगे बढ़े और आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम कहते हैं कि हर बच्चे को मुख्य धारा विद्यालय में दाखिला दे। इसीलिए हम जीरो रिजेक्शन पॉलिसी अपनाते हैं कि एडमिशन में हमें सभी को दाखिला देना ही है। इसीलिए आज हमारा हर एक विद्यालय समावेशी विद्यालय है।
1: जी प्रोफेसर भारती, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में पढ़ाने की बात की है। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा के पूरे परिदृश्य को बदल दिया है।
0: बिल्कुल।
1: आज हम विशेष रूप से आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा के मौलिक सिद्धांत क्या क्या हैं।
0: हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारे शिक्षा के परिदृश्य को बहुत अच्छी तरह से परिवर्तित किया
1: जी।
0: ठीक है, इसने मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत परिवर्तन किए ही हैं, साथ ही साथ जो समावेशी शिक्षा की हमारी परिकल्पना है
1: जी,
0: उसमें भी बहुत बदलाव किए हैं। जैसे अभी तक हम समझते थे कि समावेशी शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजन या विकलांग शिक्षार्थियों से जुड़ी हुई है या उन विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है जो अलाभान्वित वर्गों या क्षेत्रों से आते हैं
1: जी।
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारी इस अवधारणा को और व्यापक और विस्तृत स्वरूप दिया है
1: जी।
0: इसने सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूहों की पहचान की है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो इसमें 5 उपसमूह आते हैं
1: जी।
0: सबसे पहला उपसमूह इसमें लिंग के आधार पर है, जिसमें हम जेंडर आधारित आवश्यकताओं को पहचानते हैं और उनकी पूर्ति विद्यालयों में कैसे की जाए इस पर सोच विचार करते हैं
1: जी।
0: दूसरा जो हमारा उपसमूह है वो ऐसा उपसमूह है जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों से आता है या वहां से संबंधित रखता है। विषम भौगोलिक परिस्थितियां जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से आता है, मरुभूमि से आता है, ऐसी जगहों से आता है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है। विद्यार्थियों को अपने विद्यालयों तक पहुंचने में अतिरिक्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है
1: जी।
0: तो वहां पर विद्यालय कैसे सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, ये हमारा दूसरा उपसमूह है
1: जी।
0: तीसरा उपसमूह हमारा सांस्कृतिक परिवेश को लेकर के है
1: जी।
0: सांस्कृतिक परिवेश कैसे, इसमें हमारे ऐसे उपसमूह में लोग आते हैं जो जनजातीय क्षेत्रों से हैं, आदिवासी क्षेत्रों से हैं या अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित हैं
1: जी।
0: इन उपसमूहों के छात्रों को भी विशेष आवश्यकताएं हैं, उनकी पाठ्यचर्या से संबंधित, उनके दिनों दिन की आवश्यकताओं और रहन सहन से संबंधित, जिनका पाठ्यचर्या से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, तो इन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक चौथा उपसमूह है जो है हमारा
1: जी।
0: आर्थिक रूप से कमजोर समूह हमें दोनों ही जगहों पे मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलता है और शहरी क्षेत्रों में भी मिलता है, तो इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है
1: जी।
0: पांचवा उपसमूह इसमें आता है जो है विकलांगताओं का या विशेष आवश्यकताओं का, जिनको हम पहले से भी पहचानते हैं
1: जी।
0: इसमें NEP 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकलांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से अपना समर्थन देती है और इस 2016 के अधिनियम में 21 तरह की विकलांगताओं या दिव्यांगताओं को पहचाना जाता है। तो हम इन पूरी 21 तरह की दिव्यांगताओं के सकारात्मक शैक्षिक समावेशन पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में
1: जी।
0: इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
1: जी।
0: पहली बार एक सरकारी दस्तावेज में भारतीय सांकेतिक भाषा को भाषा का एक औपचारिक दर्जा दिया गया और ये भी कहा गया कि जो भी हमारे शिक्षण अधिगम सामग्री है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राजकीय स्तर पर हो, दोनों ही स्तरों पर यह सामग्री सांकेतिक भाषा में भी उपलब्ध कराई जाए। तो ये बहुत दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमारी दृष्टि को बहुत व्यापक किया है
1: जी। आपने अभी सांकेतिक भाषा की बात की तो हमारे श्रोता जरूर ये जानना चाहेंगे कि सांकेतिक भाषा क्या है और समावेशी शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है।
0: सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा जहां आप बोल करके नहीं बातचीत करते हैं
1: जी।
0: एक ऐसी भाषा जहां आप देख करके हाव भावों से संकेतों से पहचानते
1: जी।
0: हैं। जैसे आपको प्यास लगी है लेकिन आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत शोर शराबा हो रहा है, आप चाहे जितना मर्जी चिल्ला करके बोले क्या होगा, कोई आपकी बात नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर आपने पानी पीने का इशारा किया
1: जी
0: तो जो देख रहा है वो समझ जाएगा ना कि भाई आपको पानी पीना है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन ये तो बात हुई एक विशेष स्थिति की
1: जी।
0: आप सोचिए आपके हमारे बीच में ऐसे लोग भी तो हैं जिनको सुनाई कम देता है
1: जी,
0: या जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता और ये स्थिति शायद उनकी जन्म से है
1: जी।
0: अच्छा अब ये लोग क्या करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि सुनाई नहीं देता तो वो बात नहीं करना चाहते, अपने विचार नहीं रखना चाहते, उनको समझ नहीं आ रहा है, तो उनके लिए जो भाषा है वो है संकेतों की भाषा
1: जी।
0: अब ये संकेत हर जगह के अलग हो सकते हैं। भारत में अगर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
1: जी।
0: अगर आप अमेरिका में जाकर के कुछ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो अमेरिकन सांकेतिक भाषा हो जाती है
1: जी।
0: दोनों भाषाओं में अंतर है और ये अंतर उस तरीके से है जिस तरीके से आप अपने हाथों का, अपनी उंगलियों का या अपने हाव भावों का इस्तेमाल करते हैं। तो हर देश की अपनी एक सांकेतिक भाषा है और आपको यहाँ ये जानकर आश्चर्य होगा, जैसे संज्ञा शब्द होते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में, मौखिक भाषा में, बिल्कुल उसी तरह से उदाहरण के लिए लेते हैं गणपति का संकेत
1: जी।
0: गणपति का संकेत मंगलवार को दर्शाता है महाराष्ट्र में
1: जी,
0: ठीक है, लेकिन मंगलवार को दर्शाएगा हनुमान जी की गदा का संकेत कहां, उत्तरी भारत में।
1: बिल्कुल।
0: तो ये संकेत भी हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग आते हैं
1: जी।
0: तो इसीलिए भारतीय सांकेतिक भाषा की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी उतनी ही विविधता है जितनी की किसी और मौखिक भाषा में है
1: जी। ये तो हुई हमारी सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी और समावेशी शिक्षा के बारे में जानकारी। तो अब हमारे श्रोता विशेष रूप से ये जानना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी यानी CIET NCERT द्वारा क्या क्या पहलें की गई हैं
0: जी। देखो सांकेतिक भाषा में भी हम बहुत काम कर रहे हैं, जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिगम सामग्री बनेगी, तो हमारे

0: जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हम सांकेतिक भाषा के वीडियोज में हम परिवर्तित कर रहे हैं
1: जी।
0: लेकिन इन वीडियोज में ऑडियो भी है
1: जी,
0: और इन वीडियोज में सांकेतिक भाषा तो है ही है, साथ के साथ आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज भी है
1: जी,
0: ताकि कोई भी छात्र चाहे उसे सांकेतिक भाषा आती हो या नहीं आती हो अपने साथी के साथ बैठ करके वो वीडियो देख सके। इसके अलावा CIT NCERT सभी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप भी बना रही है जो बहुत सरलता से CIT की वेबसाइट पर उपलब्ध है
1: जी।
0: इसके अलावा समावेशी कक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर रोज दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक हमारा एक विशेष लाइव सत्र हर DTH चैनल पर प्रसारित होता है। इस लाइव सत्र में हम क्या करते हैं, इस लाइव सत्र में हम एक कक्षा, एक विषय, एक पाठ्य पुस्तक और एक पाठ लेकर के हम विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, इस पाठ की सहायता से आप ये बताइए कि आप कैसे इस पाठ को समावेशी कक्षाओं में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए
1: जी
0: आप पढ़ा सकते हैं। और जब आप आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो समावेशी कक्षा है लेकिन सिद्धांत आपको समतामूलक अपनाना है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को आपको ध्यान में रखना है। तो एक हमारी ये जाती है सीरीज
1: जी।
0: इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने विद्यालयों को किस तरह से अवरोध मुक्त बना सकते हैं
1: जी,
0: उसके लिए हमारे पास है प्रिया सुगम्यता योद्धा। अब ये प्रिया सुगम्यता योद्धा क्या है, ये एक छोटी सी कॉमिक बुक है जो बहुत सरलता से समझाती है कि सुगम्यता का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप सीढ़ियां हटा करके रैंप बना लें
1: जी,
0: सुगम्यता का मतलब यह भी है कि आपकी जो कक्षा है उसका दरवाजा थोड़ा सा बड़ा हो
1: जी,
0: आपका जो सभागार है उसके मंच तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के साथ रैंप हो, व्हीलचेयर आसानी से पहुंच जाए
1: जी,
0: आपके विद्यालय में कौन सी कक्षा कहाँ है, कौन सी प्रयोगशाला कहाँ है उसका एक मानचित्र भी कहीं उपलब्ध हो
1: जी,
0: आपकी विद्यालय में टेक्टाइल पाथ हो। टेक्टाइल पाथ क्या, आपने मेट्रो में सफर तो किया ही होगा
1: जी जी,
0: जब आप मेट्रो स्टेशन पर होते हैं तो आपने देखा होगा वो पीली टाइलें,
1: बिल्कुल
0: पीली टाइलें कैसी हैं, उनकी विशेषता यह है कि आप अपने जूते पहने हुए भी उनको महसूस कर सकते हैं
1: जी,
0: उनके उभारों को महसूस
1: बिल्कुल
0: कर सकते हैं, मतलब वो स्पर्शनीय टाइल हैं
1: जी।
0: ये स्पर्शनीय टाइल बताती है कि कहाँ रास्ता है, कहाँ इकट्ठा होना है हमें
1: जी।
0: तो उस तरह की टाइलें हमारे विद्यालयों की संरचना को भी बहुत सुगम्य बनाती हैं
1: जी।
0: इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल हमारी CIT NCERT की है, वो है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में पहचानी गई सभी 21 तरह की दिव्यांगताओं को विद्यालयी स्तर पर पहचानने के लिए एक जांच सूची बनाना जिसको हम कहते हैं प्रशस्त। प्रशस्त हिंदुस्तान की पहली स्टैटिस्टिकली स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत जांच सूची है जो 21 तरह की सभी दिव्यांगताओं को शिक्षकों, विशेष शिक्षकों की मदद से पहचानती है, और इसके लिए शिक्षकों का दिव्यांगताओं के बारे में विशेषज्ञ होना भी जरूरी नहीं है
1: जी।
0: तो ये भी एक हमारी पहल है
1: जी। प्रोफेसर भारती, अभी आपने ये जानकारी दी कि NCERT की बुक्स ऑडियो बुक्स के रूप में उपलब्ध हैं, तो ये किताबें हमें कहाँ से मिल सकती हैं?
0: ये किताबें आपको बहुत सरलता से CIET के वेब पेज से मिल सकती हैं। आप CIET के वेब पेज पे जाइए, वहां पे ऑडियो बुक्स लिखिए तो आपको वो मिल जाएंगी
1: जी।
0: और एक और सरल उपाय है
1: जी,
0: आजकल तो गूगल हम सबकी मदद के लिए है ही है, गूगल पर जाइए लिखिए ऑडियो बुक्स CIET NCERT, आपको सीधा वहां उसी पेज पे ले जाएगा और आप वहां से ले सकते हैं
1: जी।
0: एक चीज और भी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किताबों के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा तो ये बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध हैं, और CIT वेब पेज के साथ साथ आपको ये दीक्षा पर भी आराम से मिल सकती हैं
1: जी।
0: और यह किताबें आपको NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी। तो सरलता से आप हमारी ऑडियो बुक्स को CIT की वेबसाइट से, NCERT ऑफिशियल यूट्यूब से और साथ ही साथ दीक्षा से बिल्कुल निशुल्क बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं
1: जी। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में आदिवासी समूहों और समाज की

0: अन्य पिछड़े समूहों को भी शामिल करने की दिशा में एनसीईआरटी की क्या पहल है?
1: बिल्कुल, आदिवासी जाति या अन्य पिछड़े समूहों को शिक्षा से जोड़ने के लिए एनसीईआरटी की पहलों में सबसे मुख्य जो है वो यह है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं
0: जी,
1: अगर आप ध्यान से देखें तो वो पाठ्य पुस्तकें पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं
0: जी।
1: उनकी कहानियां, उनके पाठों की विषय वस्तु जनजाति समूहों, हमारे आदिवासी समूहों और अन्य पिछड़े वर्गों के परिवेश को भी दर्शाती हैं
0: जी,
1: जिससे ये पाठ्य पुस्तकें हर बच्चे को अपनी सी लगती हैं, उससे उनमें कोई अलगाव की भावना विकसित नहीं होती
0: जी।
1: तो सबसे बड़ी बात तो यही है। और जब आप पाठ्य पुस्तकों से जुड़ते हैं तो फिर आप अपने विद्यालयों से भी जुड़ते हैं
0: जी।
1: ये पहल हमारी यहाँ से शुरू होती है लेकिन अंत यहाँ पर नहीं है
0: जी। बिल्कुल, तो अब आज का अंतिम प्रश्न, ये भी प्रश्न मेरा दिव्यांगों से ही जुड़ा हुआ है। मेरा प्रश्न है, दिव्यांगों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं?
1: दिव्यांगों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जैसा हमने बीच में भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने तो बहुत सारे प्रावधानों की बात की है। उसके दो प्रावधानों पर हमने चर्चा की कि सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूह कौन से हैं, उसमें कौन से बच्चे आते हैं और भारतीय सांकेतिक भाषा की। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि प्रत्येक बच्चे की भागीदारी और उसको अपनापन या जुड़ाव महसूस हो, इस पर बहुत ज्यादा काम करना जरूरी है। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी कहती है कि व्यक्तिगत सहयोग और समर्थन दिया जाए प्रत्येक बच्चों को, तभी हम समतामूलक शिक्षा की बात करते हैं समावेशी कक्षाओं या शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। तीसरी चीज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि आपको तकनीक और सहायक उपकरणों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ यह भी है बहुत सरल से शब्दों में कि आप दीक्षा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, आप ध्वनि पुस्तकों का इस्तेमाल कीजिए, साथ ही साथ अगर कोई बच्चा आकर के शिक्षक को कहता है कि जी मुझे आज की कक्षा रिकॉर्ड करनी है क्योंकि मैं सही से लिख नहीं पाता हूँ या समझ नहीं पाता हूँ या ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता हूँ, तो शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह भी समावेशी कक्षा प्रणाली का ही एक भाग है और सहायक उपकरणों का प्रयोग है। एक और चीज भी है, इसी कड़ी में जुड़ता है शिक्षकों का संवेदीकरण और उनकी तैयारी
0: जी।
1: मतलब शिक्षकों को आपको सेंसिटाइज करना भी जरूरी है विशेष आवश्यकताओं के प्रति, ताकि वो अपनी कक्षाओं को समतामूलक और समावेशी कक्षाओं में परिवर्तित कर सके
0: जी।
1: यह काम लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय नहीं कर पाएगा, इस काम के लिए आपको परिवार और समुदाय का सहयोग भी लेना होगा
0: जी।
1: जब परिवार और समुदाय शिक्षा व्यवस्था प्रणाली से जुड़ते हैं तभी तो विद्यार्थियों का समग्र विकास हो पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हम एक साथ शुरू कर रहे हैं
0: जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भारती इस उपयोगी जानकारी के लिए। इस आशा के साथ कि देश की शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा का भविष्य दिन प्रतिदिन उज्ज्वल होता जाएगा, हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप हमारे श्रोताओं को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगी?
1: मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहिए, ये आपके और हमारे आसपास ही हैं। कई बार हम इन्हें देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें इस कार्यक्रम पर आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।

0: तो हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए मुझे यानी अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत हैं लोक रंजनी। कलाकार हैं परमानंद करियारे और साथी। पहले सुनिए परमानंद करियारे और साथियों के स्वर में ये लोकगीत।

0: भैया
1: अब अपन नारीला घेलवा झुलाए।
0: अच्छा भैया
1: औ दाई लंग धान कुटावे जी ए मोला समझ नहीं आवाते।
0: सही बात है भैया।

परमानंद करियारे और साथियों की आवाज में अभी आपने सुना ये लोकगीत। कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए परमानंद करियारे और साथियों की आवाजों में ये लोकगीत।

0: लोक रंजनी अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थे परमानंद करियारे और साथी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1 बजने को है, हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित किए जाएंगे। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 सीट और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण प्रदान किए गए हैं। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यावसायिक LPG सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53 रुपए 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। बॉम्बे एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक दोपहर तक 84 अंक गिरकर 74,692 पर और निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,516 पर आ गया। बिजली, पूंजीगत वस्तुएं, उपयोगिता और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के शेयरों में भी भारी गिरावट देखी गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत कार्यक्रम में। पहले सुनिए शान फिल्म का गीत। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत आरडी बर्मन का है।

समीर का लिखा और अनु मल्लिक के संगीत से सजा गीत अभी आपने सुना कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वर में। फिल्म का नाम था आन। कार्यक्रम में अब सुनिए दामिनी फिल्म का गीत कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में। समीर की रचना है, नदीम श्रवण का संगीत है।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा गीत मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना है और फिल्म का नाम है परवरिश।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:25 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण।

आइए पहले आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में बता दें। आज रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम गरीब कल्याण आप सुनेंगे आज रात 9:25 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

अब से कुछ ही देर में यानी दोपहर 1:30 पर होगा महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया। इसमें आज की बात का विषय होगा माता पिता का सम्मान पहली जिम्मेदारी, क्रम आपकी चिट्ठी, एक ही फिल्म से और टिप्स, अनाज का भंडारण और स्कूली बच्चों का होमवर्क कैसे तैयार करें।

प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट शाम 5 बजे, युवाओं का कार्यक्रम युववाणी शाम 5:10 पर। इसमें आज कल का विषय होगा वैश्विक अभिभावक दिवस और विश्व दुग्ध दिवस, साथ ही होगा क्रम सर्जना और इंद्रधनुष।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज रात 6:30 पर कलाकार होंगे पुष्पा हंस। इसी कार्यक्रम में रात 8:15 पर कलाकार होंगे कुसुम बड़ौदकर। चौपाल शाम 7:21 पर, इसमें आज की बात में होगा ये महीना के कृषि कार्य। आज की सलाह में सुनिएगा औषधीय पौधे की खेती विषय पर वानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र साकरा दुर्ग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर सत्यप्रकाश विश्वकर्मा से जानकारी।

पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम सुरों का सफर रात 10 बजे, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा जयदीप घोष का सरोद पर बजाया राग परज बसंत। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2 बजे हैं, क्षमा कीजिएगा, 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया।

मुश्किल राहों में भी सफर बिल्कुल आसान सा लगता है। ये कुछ और नहीं, बस मेरे माँ पिता की दुआओं का असर लगता है। बिंदिया कार्यक्रम सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को रीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज ग्लोबल पेरेंट्स डे है। यह हर वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। यह दुनिया भर के सभी माता पिता को उनके बच्चों के प्रति निस्वार्थ प्रेम, आजीवन बलिदान और समर्पण के लिए सम्मानित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। आप सभी को इस पर्व की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। इसका उद्देश्य माता पिता का बच्चों के पालन पोषण में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना करना और पारिवारिक जीवन के महत्व को उजागर करना है। बहनों, विश्व माता पिता दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह एक अवसर है अपने माता पिता के प्रति सम्मान, प्रेम और आभार व्यक्त करने का। माँ जो बिना थके हर दिन हमारे लिए जीती है, और पिता जो अपनी परेशानियों को छुपाकर हमारे सपनों को पूरा करने में लगे रहते हैं। समय के साथ हम सब बड़े हो गए, अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए, लेकिन सच तो यह है कि माता पिता कभी अपने बच्चों से दूर नहीं हो पाते। उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद हर पल हमारे साथ होता है। आज की तेज भागती इस दुनिया में उन्हें महंगे उपहार नहीं चाहिए, बस थोड़ा समय, थोड़ी बातचीत और थोड़ा अपनापन चाहिए। विश्व माता पिता दिवस हमें याद दिलाता है कि माता पिता हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत हैं। उनका सम्मान करना, उनकी भावनाओं को समझना, उनके साथ समय बिताना, यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। तो आइए आज हम संकल्प लें, हम अपने माता पिता को केवल एक दिन नहीं बल्कि हर दिन प्यार और सम्मान देंगे। हंसती हुई माँ और मुस्कुराते हुए पिता से सुंदर भला इस दुनिया में क्या हो सकता है।

लता मंगेशकर की आवाज में राजा और रंक फिल्म का गीत अभी आपने सुना। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और बहनों, अब बारी है आपके पत्रों और ईमेल पर आधारित कार्यक्रम आपकी चिट्ठी की। तो पहला ईमेल हम लेते हैं परसाटोला अंबागढ़ चौकी से ओम प्रकाश मसिया जी का। उन्होंने इस संदेश में प्रीतम कौर जी के 24 मई को प्रसारित बिंदिया कार्यक्रम की तारीफ की है। लिखते हैं, इस कार्यक्रम में गर्मी से बचाव के उपाय बताए गए, पानी ज्यादा पिए और मौसमी फलों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें, उपयोगी लगी। साथ ही मोनिका बागरेजा की वार्ता समाज में बदलती महिलाओं की भूमिका, इस विषय पर बहुत पसंद आई। आगे लिखते हैं, आजकल हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। बिल्कुल ओम प्रकाश जी, हम आपकी बातों से सहमत हैं। महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आपने अपना संदेश हमें दिया, हमें बहुत खुशी है और प्रीतम जी तक आपकी ये बात पहुंच रही है और हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और अगला ईमेल ओम प्रकाश मसिया जी का ही है। इन्होंने 25 मई को प्रसारित नेहा त्रिवेदी जी के कार्यक्रम की तारीफ की है। आज की बात में नेहा जी ने घर परिवार का ख्याल रखते हुए स्वावलंबी बने जानकारी दी, जो उन्हें बहुत पसंद आई। साथ ही काव्य गोष्ठी का प्रसारण भी उन्हें रोचक लगा। कवित्री सीमा पांडे जी और कवित्री विजया ठाकुर जी की कविताएं सारगर्भित लगें। कार्यक्रम के सफल प्रस्तुति के लिए नेहा जी को उन्होंने बधाइयां प्रेषित की हैं। तो ओम प्रकाश जी, आपका दिल से आभार। और नेहा जी तक आपका ये संदेश और बधाई संदेश कहेंगे हम, ये पहुंच रहा है और नेहा जी को हम भी बधाइयां देते हैं। और हमें इस बात की खुशी है कि आप इतनी दिलचस्पी रखते हैं हमारे कार्यक्रम में और हमें लगातार अपनी भावना

व्यक्त करते हैं। इसी क्रम में अगला पत्र कुछ शिकायतों भरा मेरे पास है और ये शिकायत लिख भेजी हैं रेहाना बेगम, रुखसाना बेगम और अर्शी परवीन ने। लिखती हैं, हमारी एक शिकायत है और वो ये है कि हम आपके अनुरोध कार्यक्रम में पिछले 2 माह से पत्र दे रहे हैं मगर दोनों बार हमारे पत्र कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। क्या आप इस कार्यक्रम में सिर्फ ईमेल वाले पत्र ही शामिल करते हैं जबकि हम फरमाइशी पोस्टकार्ड में ही करते हैं? हम उम्मीद करते हैं कि जून माह के कार्यक्रम में हमारे पत्र आप जरूर शामिल करेंगे और हमारी फरमाइश भी पूरी करेंगे। जी बिल्कुल रेहाना बेगम जी, रुखसाना बेगम जी, अर्शी परवीन जी, आपकी शिकायत जायज़ है और ऐसा तो कोई नियम नहीं है कि ईमेल को ही हम शामिल करें। हम पोस्टकार्ड के पत्रों का भी उतना ही सम्मान करते हैं। आप हमें पत्र लिखें, हम बिल्कुल शामिल करेंगे। देखिए, हमने आपके पत्रों को शामिल किया है इस कार्यक्रम में और हो सकता है किसी कारणवश आपके पत्र शामिल नहीं हो पाए हों तो हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं। देखिए रेहाना जी, आकाशवाणी और हमारे श्रोता हम सभी एक ही परिवार हैं। गिले शिकवे शिकायत तो बनती हैं और आप हमें खत लिखते रहिएगा। और इसी क्रम में अगला पत्र है फिर से रेहाना बेगम, रुखसाना जी, अर्शी परवीन का ही हमने लिया है। लिखती हैं, 4 मई 2026 को प्रसारित बिंदिया कार्यक्रम हमने सुना जिसमें महिलाओं के नेतृत्व के बारे में दी गई जानकारियाँ महत्वपूर्ण, प्रेरणादायक और उपयोगी लगी। एक ही फिल्म इस क्रम में आराधना फिल्म के गीतों को सुनकर मन भाव विभोर हो गया। आगे लिखा है, आपकी चिट्ठी आई क्रम में कार्यक्रम से संबंधित बहनों के विचार सुनने को मिले। आगे लिखा है, सोमवार 4 मई 2026 की बिंदिया कार्यक्रम के प्रेरणादायक, शिक्षाप्रद एवं मनोरंजन से भरपूर प्रस्तुति के लिए दीपशिखा शर्मा एवं बिंदिया अनुभाग को हार्दिक बधाई हम देते हैं। तो आपका पत्र हमें मिला और देखिए हमने आपके पत्रों को शामिल किया है रेहाना जी, और दीपशिखा जी तक आपका ये संदेश मिल रहा है, उन्हें बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से भी। और इसी तरह आप आगे पत्र लिखेंगी और हम बिल्कुल आपके पत्रों को शामिल करेंगे। और अगला ईमेल है ओम प्रकाश जी का ही है, उन्होंने 28 मई के बिंदिया प्रोग्राम के लिए कुछ बातें लिखी हैं। आज की बात में महिला सशक्तिकरण और आत्मविश्वास कैसे बनाए रखें, इस पर अच्छी जानकारियां मिली जो रीता जी द्वारा दी गई। इसी कार्यक्रम में दीप्ति श्रीवास्तव की हास्य वार्ता पसंद आई। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजन पर आधारित हास्य वार्ता अच्छी लगी। साथ ही रीता जी द्वारा मनोरंजक फिल्मी गीत सुनने को मिले। कार्यक्रम की सफल प्रस्तुति के लिए उन्हें हम बधाइयां प्रेषित करते हैं। तो ओम प्रकाश जी, आपका पत्र मेरे हाथों में है, उसकी एक एक पंक्ति को मैंने बहुत दिल से पढ़ा और समझा। बहुत शुक्रिया, दिल से आभार कि आपको हमारा ये कार्यक्रम, मेरे द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा। आप इतनी बारीकियों से हमारे कार्यक्रम सुनते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। तो इसी तरह श्रोता, सभी श्रोताओं से मैं अनुरोध करती हूँ कि अपनी चिट्ठियाँ लिखते रहें और ईमेल पर अपने विचारों को साझा जरूर करें। हमारा पता है, आपकी चिट्ठी आई द्वारा बिंदिया अनुविभाग, पोस्ट बॉक्स नंबर 97, आकाशवाणी रायपुर छत्तीसगढ़, 492001। हमारा ईमेल आईडी है, स्मॉल लेटर में है, raiapkichitthi11@gmail.com। और अब समय है फिल्म संगीत का। बहनों, आज इसमें हम आपको एक ही फिल्म इस क्रम में आशिकी फिल्म के गीत सुनवा रहे हैं। डायरेक्टर महेश भट्ट की ये फिल्म लो बजट की होने के बाद भी सन 1990 की सबसे बड़ी हिट फिल्म बन गई। तो लौटते हैं 1990 के उस दौर में जब हर दिल ने एक ही गीत गुनगुनाया, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फिल्म आशिकी की, राहुल राय, अनु अग्रवाल और उस संगीत की जिसने उन दिनों पूरी जनरेशन को दीवाना बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्यार भरा सफर। कहानी शुरू होती है राहुल से, एक बिंदास किरदार जिसके पास ना घर है ना परिवार, जिंदगी उसके लिए एक खुला आसमान है। किस्मत उसे मिलवा देती है हॉस्टल में रहने वाली सपनों से भरी लड़की अनु से। पहली मुलाकात एक अजनबी सा एहसास, इसी एहसास को
खूबसूरत बना दिया कुमार सानू और अनुराधा पुनवाल ने कुछ इस तरह।

दोस्ती प्यार में बदलने लगती है। राहुल को अनु में अपना घर दिखने लगता है, वही अनु को राहुल में अपनी हिफाजत। मगर प्यार की राह आसान नहीं होती। हॉस्टल की वार्डन और समाज उनके बीच दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। प्यार पर मुसीबत का साया, अनु को हॉस्टल से निकाल दिया जाता है। राहुल उसके लिए छोटी सी दुनिया बसाता है। पैसे नहीं है मगर प्यार है बेशुमार।

कहानी में आता है एक नया मोड़। अनु को मॉडलिंग का मौका मिलता है, शोहरत उसके कदम चूमती है, पर इस ग्लैमर में उसका प्यार कहीं खो ना जाए। राहुल को डर सताने लगता है, रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं। तभी दिल से ये गीत बज उठता है।

पर सच्चा प्यार कब हारने वाला? सारी गलत फहमियां दूर होती हैं। राहुल और अनु समझ जाते हैं कि आशिकी का मतलब सिर्फ पाना ही नहीं, निभाना भी होता है।

तो बहनों, यही थी आशिकी, एक एहसास, एक जुनून, एक विश्वास। इस फिल्म के गीत समीर ने लिखे थे, संगीत नदीम श्रवण का था, आवाजें दी थी कुमार सानू और अनुराधा पुंडवाल ने। इस गीत के साथ ही आपकी मित्र रीता।

महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2 बजे हैं, आइए सुने चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में पहले सुनिए केके की आवाज में भूल भुलैया फिल्म का गीत। सईद कादरी की रचना है, संगीत प्रीतम का है।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: हंगामा फिल्म का गीत सुनिए बाबुल सुप्रियो की आवाज में। समीर की रचना है, नदीम श्रवण का संगीत है।

0: Akashvani at 90.
1: चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में आप सुनिए कुमार की रचना। संगीत प्रीतम का है, जोनिता गांधी के स्वर हैं और फिल्म का नाम है ढिशुम।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:15 होने को हैं। दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। मई महीने में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज। अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए। और हांगकांग में एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
2: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
3: ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल है। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेताएं, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काशफी नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
1: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों उद्योगों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर जीएसटी का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय जीएसटी का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य जीएसटी का 45,143 करोड़ और एकीकृत जीएसटी का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। जीएसटी रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
4: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान 1 महीने तक चलेगा।
5: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
6: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
5: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
7: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची बाजपेयी।
1: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपए की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113 रुपए 50 पैसे होगी। मुंबई में 43 रुपए 50 पैसे की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067 रुपए 50 पैसे होगी। कोलकाता में 53 रुपए 50 पैसे की वृद्धि के साथ व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255 रुपए 50 पैसे होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रुपए की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 रुपए होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
8: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
9: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
1: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमा के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है।

0: हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत कार्यक्रम में पहले सुनिए फिल्म तेजाब का गीत। अमित कुमार की आवाज है, जावेद अख्तर की रचना है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए प्यारे का तो फरमाए।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है। कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
4: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
6: सुनिए।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़त हो, फिर पढ़ के भुला जत हो।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी ना बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: ता काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग मा माटी के गीत, हमार गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर तय बैठबे ना, तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तह मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़थो फिर पढ़ के भुला जाथो।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी न बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: ता काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग मा माटी के गीत, हमारे गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बरते बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा है संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तह मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।

सुमन कल्याणपुर, कमलेश अवस्थी और अनवर की आवाज़ में अभी आपने सुना नसीब फिल्म का गीत। आनंद बख्शी की रचना थी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए साथी फिल्म का गीत। मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें हैं, मजरूह सुल्तानपुरी की रचना है और संगीत नौशाद का है।

कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए राजकुमार फिल्म का गीत। सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी की रचना है और संगीत शंकर जयकिशन का है।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारी इस सभा के प्रसारण अब समाप्त होते हैं। सांध्यकालीन सभा के स्थानीय प्रसारणों के साथ शाम 5 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
2: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल RN रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित किए जाएंगे। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय GST का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य GST का 45,143 करोड़ और एकीकृत GST का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। GST रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और ये आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि उसने सप्ताहांत में दक्षिणी ईरान में रडार और कमान तथा नियंत्रण स्थलों पर आत्मरक्षा के लिए हमले किए। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक LPG सिलेंडर की कीमत में देश

नमस्ते, आज है पहली जून, खुश है जमाना, आज पहली तारीख है। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है फरमाशी गीतों का कार्यक्रम आपके मन पसंद मन भावन ऑन मंडे को। जी हाँ, आपके साथ है हम रूमी मलिक। आशाएं ऐसी हों जो मंजिल तक ले जाएं, मंजिल ऐसी हो जो जीवन जीना सिखा दे, जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करे, और संबंध ऐसे हों जो याद करने को मजबूर कर दें। हाँ जी, तो याद किया कि नहीं किया आपने हमको? चलिए, हमने तो आपको याद किया और ढेर सारे आपके संदेश भी आ गए हैं। शुरू करते हैं कार्यक्रम इस खूबसूरत गीत के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका।

0: जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता श्रीवास्तव एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पे मैं अपनी तरफ से बहुत सारा ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ आकाशवाणी को, क्योंकि आकाशवाणी का एक बहुत बड़ा रोल है मेरी जिंदगी में। स्पेशली ड्यूरिंग माई यूथ डेज मैं युववाणी में अपनी कलम से लिखी हुई कुछ कविताएं पढ़ने जाती थी और वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा था जिसने मुझे बोलने का अवसर दिया और मैं अपने दिल की बात पूरी बोल पाती थी। बहुत लोग मुझे सुनते थे और मुझे बहुत सारी तारीफें भी मिलती थी और तारीफ के साथ मुझे जो छोटा सा अमाउंट मिलता था, मैं 90s की बात कर रही हूँ, वो बहुत कीमती होता था। मुझे जो वहां से सम्मान मिला वो भी बहुत ही दिल को छू लेने वाला था। बहुत बहुत शुभकामनाएं आकाशवाणी को।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम मन भावन और ढेर सारे हमारे साथ मोहम्मद यूनुस खत्री साहब। देखो मैंने आपका गीत मोहब्बत बड़े काम की चीज है सबसे पहले बजा दिया है ना, तो इनकी भी फरमाइश थी। और मजे की बात यह है त्रिशूल फिल्म से मैंने भी एक गीत निकाल के रखा था, फिर मुझे लगा अपनी पसंद को मैं होम कर देती हूँ आपकी पसंद के वास्ते। खुश होना खत्री साहब। हाँ जी, उत्तम सिंह जंगेल, जय धर्मेंद्र छीपा, गुरमीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ में अल्तमश खत्री, सरफुद्दीन अंसारी, जगन्नाथ पटेल, सुदर्शन शाह, मुकेश गोस्वामी, भाई मूसा शेख, अनंत वाडे, जय सुखविंदर सिंह जोड़ा, फारूक अली खान, गगनदीप थांदी, हरजिंदर शिंडा, अच्छा हरजिंदर शिंडा भी हैं और एक हरजिंदर सिंह भाटिया भी हैं, प्रकाश बोरगांवकर, विजय सुरलकर, सरिता अभिजीत गवघंकर, कमलकांत गुप्ता, एच आर पांड्या और आगे देखें दिग्दर्शन कौर जी भी जुट गई हैं हमारे साथ में और सतीश अनेजा जी क्या लिख रहे हैं, वेलकम टू द प्रोग्राम, आई अप्रिशिएट योर प्रेजेंटेशन विच एनहांसेस द प्रोग्राम, क्या बात है बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर अशोक कुमार, मास्टर अशोक कुमार सुनना चाहते हैं फिल्म सत्ते पे सत्ता का गीत, मौसम मस्ताना ला ला ला ला, अच्छा है ना, ठंडे ठंडे गीत सुन के ठंडे ठंडे फील करो, साथ में ORS का घोल रखते हो ना, है ना। देखो कल प्रधानमंत्री जी ने भी बोला मन की बात में सत्तू पियो, आम का पन्ना पियो, नींबू पानी पियो, नहीं तो वो तरबूज और खरबूजे खाओ, सचमुच में नौतपा था है ना, पता है ना नौतपा, तो आज आज आखिरी दिन है भाई नौतपा का, नौ दिन जब सूर्य जाता है रोहिणी नक्षत्र में, साल के सबसे ज्यादा तपते हुए दिन होते हैं, कहते हैं नौतपा जितना तपेगा वर्षा उतनी अच्छी होगी। चलो जी तप लिए हम तप भी हो गया, जप भी हो गया, गप भी हो गई, अब हो जाए गीत।

जी हाँ, बहुत मस्ताना ही मौसम है। और अगली पेशकश विजय सुरालकर मोताला महाराष्ट्र से लिख रहे हैं रत्नमाला जी के साथ में, और कुमकुम कुमकुम कह रहे हैं कुमकुम एक गुड़िया है। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि सुमन कल्याणपुरी जी की याद में एक गीत सुनवा दीजिए, और बड़ा ही प्यारा गीत है, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे। अरे वाह, क्या याद दिलाइए, चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एफएम गोल्ड पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य श्रोताओं को आकाशवाणी की समृद्ध विरासत, सांस्कृतिक योगदान और ऐतिहासिक यात्रा से जोड़ना है। इस कार्यक्रम में हम आकाशवाणी से जुड़े विभिन्न संवर्गों के व्यक्तित्व से बात कर उनके संस्मरण, अनुभव, यादें अपने श्रोताओं से बांटते हैं। और इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं आकाशवाणी के पूर्व महानिदेशक लीलाधर मंडलोई जी, जिन्होंने आकाशवाणी की कार्यप्रणाली, विकास और बदलते दौर को बहुत नजदीक से देखा, समझा और दिशा दी। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। सर, इस 8 जून को आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आप आकाशवाणी के इस 90 वर्षों की यात्रा को किस दृष्टि से देखते हैं?
1: आकाशवाणी का जो 9 दशक का सफर है
0: जी,
1: उस सफर को निश्चित रूप से मैं, चूंकि आकाशवाणी में काम कर चुका हूं, तो मैं ही नहीं, जितने भी हमारे रेडियो को सुनने वाले लोग रहे हैं, उनके बीच इस लंबे सफर में पहली चीज जिसको सबसे पहले रेखांकित किया जाना चाहिए वो ये है कि आकाशवाणी में एक ऐसी शक्ति थी कि वो दूर दराज के ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं भी हैं उनसे जुड़ सके। और जुड़ना इस अर्थ में हुआ कि हम उनकी भावनाओं, उनके विचारों, उनकी जरूरतों और उनकी सोच के हिसाब से अपने कार्यक्रमों का निर्माण करते थे
0: जी।
1: चाहे वो खेती किसानी का कार्यक्रम हो, चाहे महिलाओं के कार्यक्रम हो, चाहे बच्चों के कार्यक्रम हो। पहले आउटडोर रिकॉर्डिंग्स बहुत होती थी
0: जी,
1: और आउटडोर रिकॉर्डिंग्स में जो हमारी टीम जाया करती थी वो एक तरह से पुल का काम करती थी श्रोताओं के बीच में और आकाशवाणी के बीच में,
0: वो डायरेक्ट जोड़ती थी
1: जी। तो वो जो फीडबैक वो लेकर आते थे तो उसके हिसाब से हम अपने कार्यक्रमों की भाषा, उसके विषय और जो सामयिक जरूरत होती थी
0: जी,
1: चाहे वो खेती बाड़ी की हो, चाहे पढ़ाई लिखाई की हो, चाहे मनोरंजन की हो, चाहे ऋतु हो, चाहे पर्व हो, तो उसके हिसाब से हम अपने कार्यक्रमों का निर्माण करते थे। और मुझे लगता है कि इस पद्धति से जो हमने प्रोग्रामिंग शुरू की थी उसकी वजह से एक विश्वसनीयता श्रोताओं में बनी, और वो जो विश्वसनीयता थी उसी ने 90 साल तक हमें एक तरह से उनके साथ रखा और वो हमारे साथ रहे। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा फैक्टर है
0: जी
1: कि हम इस देश को जोड़ सके।
0: आपका बहुत लंबी यात्रा रही है आकाशवाणी में, तो पहला आपने आकाशवाणी को जब सुना होगा या रेडियो को सुना होगा वो कौन सा समय था,

0: आए, गुजरात से आए, मध्य प्रदेश तो था ही, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, तो वो एक समन्वित संस्कृति थी और उसके साथ साथ वो एक आदिवासियों का वहाँ बड़ा समाज था। तो ये तो हुआ बैकग्राउंड। तो खदान में जो मजदूर काम करते थे वो अपने मनोरंजन के साधनों के लिए स्थानीय गाना बजाना करते थे। और उस समय हमारे गांव में सिर्फ एक जगह, एक रामप्रसाद नाम के मजदूर थे
1: जी,
0: उनके पास रेडियो था मर्फी का।
1: ये सर किस समय की बात है?
0: ये बात है 1960 के आसपास। तो मैं उस समय स्कूल में ही हुआ करता था, तो उनके यहाँ वो मर्फी का रेडियो हुआ करता था। उनकी शादी नहीं हुई थी तो वो हमेशा रेडियो के साथ ही रहते थे। जब घर से भी निकलते थे तो साइकिल में वो रेडियो टंगा होता था, तो जहाँ वो रुकते थे, जहाँ वो बैठते थे, तो वहाँ भीड़ लग जाती थी। तो हम भी उसी में से एक थे। तो हमारी स्कूल लाइफ में हमने वो तमाम रेडियो के कार्यक्रम सुने जो वो सुनते सुना करते थे। तो उनके सुनने में एक तो विविध भारती की सेवाएं उनको बहुत प्रिय थी, वो समाचार सुना करते थे। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स के कुछ कार्यक्रम होते थे वो सुनते थे। और चूंकि हमारा जो इलाका था, उस इलाके में वो सतपुड़ा की रेंज है, तो मौसम मौसम बदला करते थे, तो मौसम के समाचार जानने के लिए हमारे दूसरे कार्यक्रम भी सुना करते थे
1: जी।
0: तो उनको बहुत ज्ञान था, वो एक तरह से इंसाइक्लोपीडिया थे। तो सबसे पहले उन्हीं ने हमको दीक्षित करना शुरू किया और हमने बॉलीवुड को अच्छे से जाना। और इसके अलावा जो हमारी जो देश की जो सरकारें थी, जो राजनीति थी
1: जी,
0: जो प्रमुख लोग थे, उनके बारे में भी इसलिए जाना कि जब ऐसे कोई प्रसारण होते थे, जैसे पंडित नेहरू के हुए या गांधी के हुए, दूसरे लोगों के हुए, तो वो कहते थे कि सुनो आवाजें, सुनो आवाजें, सुनो। तो वो सारी आवाजें हमारे चेतना में घर कर गई। तो हमारा मन तभी से बना कि अगर हुआ तो हम कभी ना कभी रेडियो की नौकरी करेंगे। तो ये तो बचपन का वो किस्सा था
1: जी।
0: और उसके बाद हमने भोपाल में रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन भोपाल में पढ़ाई की। वो शिमला हिल्स पर है हमारा कॉलेज और रास्ते में आकाशवाणी पड़ता है, तो हम बड़े हसरत के साथ आकाशवाणी को देखा करते थे और कल्चरल एक्टिविटीज में भाग लिया करते थे। तो हमने एक अनसंड ऑर्केस्ट्रा बनाने का,
1: अच्छा,
0: हमारे यहाँ एक हारमोनियम भर था और डेनिस नाम का हमारा एक साथी था, वो हारमोनियम बजाता था, तो वो एक धुन बनाता था। और उसके बाद परकसन इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, तो कभी टेबल, कभी मेज, कभी थाली
1: जी बजाते थे,
0: इससे करके हमने वो ऑर्केस्ट्रा बनाया था। किसी तरह से उस ऑर्केस्ट्रा की खबर रेडियो को पता चल गई।
1: अच्छा,
0: तो रेडियो से लोग आए, उन्होंने वो ऑर्केस्ट्रा सुना और कहा कि हम इसको युवाणी कार्यक्रम में
1: प्रसारित करेंगे जी जी।
0: तो इस तरह से कॉलेज में हमारा रेडियो से एक संपर्क हुआ और फिर उस युवाणी के कार्यक्रमों में कभी कभार जाने भी लगे। और स्कूल ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम हुआ करते थे, तो जो लैंग्वेज लेसन तैयार होते थे उसमें विद्यार्थियों की जरूरत पड़ती थी
1: जी।
0: एक क्लासरूम स्टूडियो में क्रिएट किया जाता था जिसमें बच्चे हैं, टीचर है, और स्कूल का एक माहौल बनाया जाता था और पार्ट रिकॉर्ड किए जाते थे, तो उसमें भी हम लोग जाते थे। तो ये एक संबंध था जो रेडियो से बना।
1: सर ये कार्यक्रम FM गोल्ड पर जा रहा है, तो इस कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं को आपकी पसंद के गाने भी सुनवाएंगे। कोई गीत आप बताइए जो आपको बहुत पसंद है।
0: मुझे लगता है कि इस समय जब गीतों की बात होगी तो उसकी संख्या तो बहुत सारी है, लेकिन जब हम लोगों ने रेडियो ज्वाइन किया था और जब हम बच्चे थे तो उस समय हम लोगों को एक ही गाना बहुत अच्छा लगता था और हम लोग प्रभात फेरी में उसको गाया करते थे, मालिक तेरे बंदे।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के पूर्व महानिदेशक लीलाधर मंडलोई जी को। सर, बचपन से आपने सुना, उसके बाद आप युवानी कार्यक्रम में आपने भाग लिया और उसके बाद आकाशवाणी में आप आए और इतने महत्वपूर्ण पद तक रहे, तो जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी ने देश की संस्कृति, भाषा और संगीत को घर घर तक पहुँचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की भावना से ये आगे बढ़ रहा है, इस योगदान को आप किस रूप में देखते हैं?
1: देखिए, जैसा आपने कहा, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय
0: जी,
1: या आकाशवाणी की लोक सेवा का जो स्वरूप रहा है, तो देखिए, एक लंबे समय तक तो जो आकाशवाणी थी वो कमर्शियल तो हुई नहीं थी। तो सबसे बड़ी चीज ये थी कि हर काम करने वाले लोग थे, चाहे वो अनाउंसर रहे हों, चाहे प्रोड्यूसर रहे हो, चाहे कार्यक्रम निर्माण करने वाले कार्यक्रम अधिकारी रहे हो, उस समय उनके लिए एक ही चीज थी और सारा माहौल भी इस तरह से बनाया गया था कि लोग प्रोग्राम के बारे में सोचते थे, अच्छे प्रोग्राम कैसे बनाना है, अपने श्रोताओं तक कैसे पहुंचना है, अपने टॉकर्स तक कैसे पहुंचना है। तो उस समय जैसे हम बाद में जाके हमने सुना कि टेलीविजन में इन सारी चीजों के लिए रैकी होती थी, तो ये रैकी तो हमारी वो भी रिकॉर्डिंग में हम
0: पहले ही होती थी जी जी,
1: वहीं से हमको कलाकार मिलते थे, चाहे वो लोक संगीत के कलाकार हों, चाहे सुगम संगीत के कलाकार हों, चाहे लोक कथा वाले हों, लोक कविता वाले हों, कविता वाले हों। तो इस तरह से एक जो टैलेंट हंट था, तो वो हम लोग फील्ड में उस जमाने में किया करते थे और वहां से हमारे पास जो टैलेंट था वो आया करता था। और दो तरह की चीजें होती थी, अप्रूव्ड वॉइसेस और नॉन अप्रूव्ड वॉइसेस। तो जब हम आउटसाइड आउटडोर रिकॉर्डिंग थे और हमको कोई बहुत अच्छी आवाज मिली
0: जी,
1: तो हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया, उसका कोई ऑडिशन नहीं हुआ। एक रास्ता उसके लिए खुल गया कि वो अगर अच्छा टैलेंटेड आदमी है या कलाकार है तो रिकॉर्ड कर सकता है, वो खेती बाड़ी के लिए रिकॉर्ड कर सकता है, युवाणी के लिए रिकॉर्ड कर सकता है, बच्चों के कार्यक्रम के लिए रिकॉर्ड कर सकता है। तो इस तरह से तब हुआ करता था। और जो लोक संगीत के जो आर्टिस्ट थे, जब हम लोग गांव में जाते थे तो वो अप्रूव्ड आर्टिस्ट तो होते नहीं थे, लेकिन गायक बहुत अच्छे होते थे
0: जी।
1: तो उनको हम आउटडोर में रिकॉर्ड कर लेते थे और उनको सुनाते थे। तो उससे जब हमने आउटडोर की रिकॉर्डिंग्स में और स्टूडियो की रिकॉर्डिंग्स में लोगों को रिकॉर्ड करके, और उस जमाने में तो सुबह 6 बजे से लेके पहले 11 बजे रात तक का ट्रांसमिशन होता था, फिर 12 बजे तक का हुआ, तो इस पूरे चक्र में जब लोग खुद की आवाज सुनते थे तो वो प्रसन्न भी होते थे और उनका भरोसा ऑल इंडिया रेडियो के लिए बनता था। तो एक बड़ा विश्वास का नेटवर्क ऑल इंडिया रेडियो ने अपने प्रोग्रामिंग से बनाया था।
0: सर, आपने आकाशवाणी में लंबे समय तक अपनी सेवा दी और कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे, तो इस दौरान बहुत सारी चुनौतियां भी आपके रास्ते में आई होंगी और बहुत सा आपको अप्रिसिएशन मिला है, बहुत सारा आपने काम किया है, इसको आप किस रूप में बताएंगे?
1: देखिए, क्या है कि हम लोगों की जो पीढ़ी थी वो पीढ़ी ऐसी थी कि जो कार्यक्रम कर रहे हैं तो आपको प्रशंसा करने वाले लोग तो मिलेंगे, लेकिन उस समय एक तरह की प्रतियोगिता इस तरह की थी कि जिसमें कार्यक्रम अच्छा हुआ उसकी तारीफ से कोई बात नहीं होती थी। अंदर जो आपके प्रोफेशनल एक स्टैंडर्ड थे कि इनकी आवाज कैसी है, आवाज की डेप्थ कैसी है, उसका थ्रो कैसा है, मतलब ये कनेक्ट करते भी हैं कि नहीं करते हैं। तो हम लोगों के जमाने में वॉइस कल्चर से लेके हम लोग बहुत सारे स्तरों पर ट्रेंड हुआ करते थे, कुछ अपने स्तर पर करते थे, कुछ हमारे स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हम लोगों को उस समय ट्रेन किया जाता था। तो हम लोग अपनी आवाज को लेकर और आवाज के साथ कौन कितना पढ़ता लिखता था, किसके पास लिखने की कितनी कुवत है
0: जी,
1: कौन फीचर लिख सकता है, कौन अनाउंसमेंट लिख सकता है, कौन ड्रामा लिख सकता है, ये सारे हम लोगों को इम्तिहान देने पड़ते थे। तो जब आप एक लंबे समय के अनुभव से गुजरते हैं तब आपको ये सलाहियत आती है कि आप रेडियो के लिए अच्छा लिख सकते हैं, क्योंकि रेडियो के लिए लिखना और अखबार के लिए लिखना दोनों में फर्क है
0: जी।
1: यहाँ बोले हुए शब्दों की महिमा है, तो जब तक बोले हुए शब्द नहीं होंगे और ऐसे शब्द जो आपके सुनने वालों को अपील ना करें, तो वो बोले हुए शब्दों को हम लोग जहाँ जाते थे वहां से ग्रहण करते थे, अबेरते थे, भाई बुंदेली में ये शब्द बोला जाता है, बघेली में ये बोला जाता है, मालवी में ये बोला जाता है, तो हमने अपने भाषा का भी बहुत परिष्कार किया। और जब वो चीज एक स्तर पर आ गई, तब हमारे बनाए नाटक हो, चाहे फीचर हो, चाहे प्रोग्राम हो, वो लोग पसंद करते थे, तो उस प्रशंसा में खाली प्रशंसा ये नहीं होती थी कि आपका फलाना कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। तब ये देखा जाता था कि जो सुनने वाले बहुत सारे श्रोता संघ हुआ करते थे, अभी भी कुछ है,
0: अभी भी है जी,
1: तो वो श्रोता संघ हर अनाउंसर के बारे में, हर प्रस्तुतकर्ता के बारे में वो बाकायदा एक फीडबैक रिपोर्ट देता था कि इनकी आवाज ऐसी है, प्रोग्राम में इन्होंने ऐसा गलत किया, ये सोर्स ठीक नहीं था, वो नहीं था। तो उस समय चेक एंड बैलेंस बहुत थे
0: जी,
1: और रोज मीटिंग कार्यक्रम की उसमें बाकायदा बहस होती थी, और कई बार तो पूरा दिन निकल जाता था।
0: सर, बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, क्यों ना आपकी पसंद का कोई गीत सुनते हैं।
1: एक और गाना मेरी पसंद का है, जिंदगी का सफर।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के पूर्व महानिदेशक लीलाधर मंडलोई जी को। सर, बात को आगे बढ़ाते हैं और सर, बदलते दौर में जैसे सोशल मीडिया का भी टाइम है, तो इसमें भी आकाशवाणी में बहुत बदलाव आ रहे हैं, इसको आप कैसे ले रहे हैं?
1: देखिए, क्या है कि आपको समय के हिसाब से तो बदलना पड़ेगा। समय के हिसाब से अगर आप नहीं बदलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यूट्यूब का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, या ब्लॉग का कर रहे हैं, या इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं
0: जी,
1: तो वो सिर्फ सूचना परक ना हो, ये कार्यक्रम इस समय आएगा। मतलब आपका कार्यक्रम क्या है उसके बारे में जब तक आप कुछ नहीं बताएंगे तो लोग क्यों क्यों करेंगे। तो एक तो जो प्रमोशन है, प्रमोशन के बारे में मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। और दूसरा क्या है कि फॉलो अप नहीं है, जो भी आप कहना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, उस पर जब लोगों ने जो भी कुछ कहा हो या ना कहा हो, ना कहा हो तो विग्रस फॉलो अप होना चाहिए, और कुछ कहा है तो उसका भी फॉलो अप होना चाहिए। क्योंकि जो आपको कुछ कह रहा है वो आपका एक श्रोता है या आपका एक आप कंज्यूमर मान लीजिए, तो जब तक आप उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे तब तक आपका प्रोडक्ट कैसे बिकेगा। आप तो आप कमर्शियल भी हो गए, तो अगर आपको अपनी चीज बेचनी है तो वो बिकेगी तब ना, जब आप उसको उस तरह से प्रस्तुत करेंगे।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश के श्रोताओं, प्रसारण कर्मियों और आकाशवाणी परिवार के लिए आपका क्या संदेश है?
1: हम तो ये कहेंगे कि जिस मोहब्बत के साथ आप आकाशवाणी से 90 सालों से जुड़े रहे हैं और बदलते समय में भी आपने आकाशवाणी का साथ नहीं छोड़ा है, तो हम ये चाहेंगे कि आप चाहे हमारी प्रशंसा ना करें, हमें सुझाव दें, हमारी आलोचना करें, हमें बताएं कि हमको इस बदलते समय में आपकी जरूरतों के हिसाब से क्या करना है, शायद वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा।
0: चलते चलते आपकी पसंद का कोई गीत और बताइए सर।
1: गीता दत्त का गाना सुना दीजिए, ये वक्त ने किया क्या हंसी सितम, हम रहे न हम।

सर आपने अपने बहुमूल्य अनुभव और विचार हमारे श्रोताओं के साथ साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, अभी हम बात कर रहे थे आकाशवाणी के पूर्व महानिदेशक लीलाधर मंडलोई जी से, और अब इसी शुभकामना के साथ कि आकाशवाणी आने वाले समय में भी जन जन की आवाज बनी रहे, दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए चर्चा हुई। सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर भी चर्चा हुई। म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने बैठक की सह अध्यक्षता की। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और इसे और मजबूत करने के बारे में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा साझेदारी आने वाले वर्षों में लगातार प्रगति करेगी। श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं। श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के रामसिया गांव में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। एक महीने तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य कृषि भूमि की रक्षा करना और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। श्री चौहान ने कहा कि खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य मिट्टी और कृषि भूमि की रक्षा करना है। उन्होंने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग सीमित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर सृजित कर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। श्री मोदी ने कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित किए जाएंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक महिला की उन्नाव स्थित जिला विधि सेवा प्राधिकरण के 2018 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। वस्तु और सेवा कर का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। मौसम विभाग ने आज गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। कल तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
2: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
1: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
2: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

0: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I am Lucy Gabriel, and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with
1: National Investigation Agency has invited nominations for 10 posts of Superintendent of Police on deputation basis. The post carries pay matrix level 12, and selected officials may be posted anywhere in India depending on vacancies. Applications, along with RPARs, vigilance clearance, integrity certificate, and supporting documents, must reach NIA headquarters within 45 days from the release of this advertisement in the Employment News. Detailed eligibility criteria and the prescribed application format is available on the official website. Do look up www.nia.gov.in. Tata Memorial Center has invited online applications for various full-time positions at Homi Bhabha Cancer Hospital and Research Center. Vacancies include Medical Officer E in Nuclear Medicine and Radio Diagnosis, Medical Physicist, Scientific Officer C, Transfusion Medicine, Scientific Assistant Post in Nuclear Medicine, Biomedical Engineering, Physiotherapy and Radiation, Oncology, as well as Technician Post in Networking and Operation Theatre. The posts carry pay levels ranging from level 4 to level 12, and the age limits are between 30 to 45 years depending on the post. Candidates with qualifications such as MD, DNB, MSc, BSc, Diploma, Engineering, Physiotherapy, Radiotherapy Technology and related experience in health and oncology fields are eligible to apply. The last date for submission of online applications is 11th June 2026. Detailed eligibility criteria, experience requirements and application procedures is available on the official website. Do refer to www.tmc.gov.in. Ministry of Defence has invited applications for the post of a Principal System Analyst in the Directorate General of Information Systems, MISO, Integrated Headquarters of the Ministry of Defence, Army, on deputation, including short-term contract basis. The Group A gazetted post carries pay level 12 and is open to eligible officers from government departments, PSUs, universities and autonomous bodies with qualifications in computer science, IT and relevant experience in programming or information systems. The deputation tenure is 3 years, extendable by 1 year with a maximum age limit of 56 years. Applications with required documents must be submitted within 60 days from the release of this advertisement in the Employment News. Details and application format is available on the official website. Do refer to www.caomod.nic.in. The Population Research Centre under University of Kashmir has invited applications for the post of Associate Professor, one Unreserved Post, and Research Investigator, one SC Post. The centre functions under the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. Online application submissions last date is 12th June 2026, while hard copies may be submitted by 16th June 2026. For details, do refer to the website, that is at www.kashmiruniversity.net. I repeat, www.kashmiruniversity.net. The National Sugar Institute under the Department of Food and Public Distribution, Government of India, has invited applications for the post of a Senior Technical Assistant, Sugar Technology, on deputation basis. The post is Group B, non-gazetted, carrying pay matrix level 6 as per the 7 CPC. Eligible officers from central or state governments, PSUs, universities and autonomous bodies may apply within 60 days from the release of this advertisement in the Employment News. For details, do refer to the website, that is at www.nsi.gov.in. I repeat, the website is www.nsi.gov.in.
0: And now we have the employment news in Hindi.
2: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट वरिष्ठ तकनीकी सहायक शर्करा प्रौद्योगिकी के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। केवल उन्हीं उम्मीदवारों के आवेदनों पर विचार किया जाएगा जिन्हें चयन होने की स्थिति में तुरंत कार्य मुक्त किया जा सकता है। आवेदन उचित माध्यम से भेजे जाने चाहिए और उसके साथ ये दस्तावेज संलग्न होने चाहिए। बायोडाटा दो प्रतियों में, पिछले 5 वर्षों के ACR, नियुक्ता संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। पात्र उम्मीदवारों के आवेदन इस पते पर पहुंचने चाहिए। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कल्याणपुर कानपुर 208017। पद का विवरण पात्रता शर्तों आदि के लिए देखिए राष्ट्रीय शर्करा संस्थान की वेबसाइट nsi.gov.in। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन नीलगिरी तमिलनाडु इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। अवर श्रेणी लिपिक, सिविलियन मोटर ड्राइवर सामान्य ग्रेड, बहुकार्य कर्मचारी आशुलिपिक ग्रेड 2, पर्यवेक्षक नेटवर्किंग, नेटवर्क प्रशासक, हार्डवेयर प्रशासक, लाइनमैन, नाव निर्माता और तकनीकी परिचारक मुद्रण मशीन ऑपरेटर। कुल पदों की संख्या 78 है। आरक्षित पदों की जानकारी, योग्यता, वेतनमान और अन्य शर्तों के लिए देखिए डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज की वेबसाइट www.ids.nic.in। भारत सरकार का उपक्रम बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। उपप्रबंधक विपणन, सहायक प्रबंधक वाणिज्यिक, उपप्रबंधक सहायक प्रबंधक फीको प्रकार्यात्मक, मुख्य प्रचालन अधिकारी, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, अधिकारी प्रचालन, अधिकारी ट्रैवल, कनिष्ठ अधिकारी ट्रैवल यूनिट हेड, कनिष्ठ अधिकारी आयात प्रचालन, कनिष्ठ अधिकारी विद्युत और रखरखाव, अधिकारी उत्पादन, सहायक प्रबंधक बिक्री और विपणन, अधिकारी वाणिज्यिक, अधिकारी लेखा और वित्त, अधिकारी बिक्री और विपणन तथा कनिष्ठ अधिकारी लेखा और वित्त। इन सभी पदों के लिए एक एक रिक्तियां उपलब्ध हैं। केवल इन पदों को छोड़कर ये पद हैं अधिकारी वाणिज्यिक, अधिकारी लेखा एवं वित्त और अधिकारी बिक्री एवं विपणन, जिनके लिए पदों की संख्या 3 है। विस्तृत जानकारी, पात्रता मानदंड, आयु, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव, आयु में छूट तथा आवेदन प्रक्रिया की जानकारी के लिए देखिए बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड की वेबसाइट www.bamarlorry.com/careers/current openings। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
3: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट सायरा मुश्तबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
2: नमस्कार आकर्षिता, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। एंड यस, आकर्षिता हैज ऑलरेडी अपडेटेड यू टू व्हाट टू लुक फॉरवर्ड टू इन टुडेज शो। आज वे दस्तूर हम देश की परिक्रमा पे निकलेंगे एंड वील गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वेयर आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स आर स्टेशन विद सम इंटरेस्टिंग स्टोरीज, बिकॉज आकर्षिता सारी खबरें तो हम लोग अपने बुलेटिन में नहीं समेट पाते ऑफकोर्स, एंड देर आर स्टिल सो मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज दैट नीड टू shared with our very special listeners. So that's why we are here every day exactly at 4:30 to bring those stories to you.
1: और सायरा, आजकल के टाइम में जब नेगेटिव न्यूज इतनी ज्यादा हावी है तो हम कुछ पॉजिटिव खबरें भी लाते हैं अपने साथ। बहुत ढेर सारे जो हमारे राज्य हैं वहां से कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी होती ही है, तो कहीं ना कहीं आजकल की जो डिमांड है वो पॉजिटिव न्यूज भी है।
2: एब्सोल्युटली, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट थिंग दीज डेज दैट वी शुड लुक फॉर पॉजिटिविटी अराउंड, नॉट जस्ट यू नो इन डिफरेंट अदर प्लेसेस बट ऑल अराउंड अस। एंड आई थिंक दैट विल बी ओनली एबल टू मेबी सी इट आकर्षिता व्हेन वी हैव अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। कहते नहीं, अगर पानी का ग्लास कुछ लोग के लिए आधा भरा है दूसरों के लिए आधा खाली भी है, सो इट्स योर पर्सपेक्टिव दैट मैटर्स मोस्ट। सो बट नॉनदलेस वी मेक एन एफर्ट दैट वी ब्रिंग good, happy and positive stories in Parikrama. So why not start with the headlines first, Akarshita?
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की।
2: इंडिया ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट comes into force, gives Indian exporters duty-free market access in Oman to 98% of tariff lines.
1: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिपरिषद का विस्तार किया, 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ।
2: ग्रोस जीएसटी कलेक्शन राइजेस टू ओवर 1,94,000 करोड़ रुपीज इन मई।
1: पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज, अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए।
2: एंड इंडिया एंड्स इम्प्रेसिव कैंपेन एट एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स विद 19 मेडल्स इंक्लूडिंग 10 गोल्ड इन हांगकांग। And now we open our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Today we are going to talk about the PM Swanidhi scheme that has completed 6 years today. Well, we bring you stories that live not in headlines alone, but in the heartbeat of everyday life. Today we take you to the narrow lanes, the crowded markets and vibrant corners of India's cities and towns, where a quiet revolution has been unfolding for the past 6 years. A revolution powered by small carts, small loans and very big dreams. It is the story of PM Swanidhi scheme, which has now completed 6 years. Look around any busy Indian market. A fruit seller is arranging mangoes. A tea stall is steaming in the morning rush while a cobbler under a tree is carefully stitching a shoe. A vendor selling phone covers, bangles and other knickknacks. For decades, these small entrepreneurs formed the invisible backbone of urban India. But access to formal credit, well, that was often out of reach. That's where the story begins.
3: PM Swanidhi mein.
4: हमारे जो रेहड़ी वाले भाई बहन हैं, ठेला लगाने वाले हैं, उन्होंने इस दौरान बहुत कष्ट झेले हैं। अब हमारा कर्तव्य है उन्हें ताकतवर बनाने का।
5: कोरोना लॉकडाउन से प्रभावित रेहड़ी पटरी वालों के लिए है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, यानी पीएम स्वनिधि में 10,000 रूपए तक का बिना किसी सिक्योरिटी के लोन, समय से भुगतान पर 7% की दर से ब्याज सब्सिडी और अगली बार ज्यादा लोन भी पा सकते हैं।
6: इतना ही नहीं, डिजिटल लेन देन पर 1,200 रूपए तक का सालाना कैश बैक।

0: तीन अलग अलग चरणों में बिना किसी गारंटी के लोन मिलता है। एक बार में 15,000, फिर 25,000, उसके बाद 50,000। कोई भारी भरकम कागजी कार्रवाई नहीं, कोई प्रॉपर्टी की गारंटी नहीं, बस एक मौका। और कई लोगों के लिए तो ये उनका पहला औपचारिक लोन है। और सायरा, अगर हम बात करें तो जो रेहड़ी पटरी हैं या जिनके पास कोई ऐसा कुछ नहीं होता जो एज अ कोलेट्रल दे सके, उनके लिए ये बहुत मुश्किल होता है लोन लेना। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे बहुत छोटे जो है रेहड़ी पटरी ठेला लगाने वाले, उनके लिए बहुत ही सकारात्मक कदम है कि वो आत्मनिर्भर बन पाए। और कहीं ना कहीं ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक अहम कदम है।
1: Well, that's right, Akarshita. And if we talk about the scale, because Swanidhi isn't small in impact. Since its launch 6 years ago, over 1.12 crore loans have been disbursed. More than 75 lakh street vendors have benefited, and over 17,800 crore rupees have been provided as credit support. But numbers alone don't tell the full story. If you stand in a crowded bazaar where life begins before sunrise, here every vendor has a story, and many of them now share a common turning point, that is Swanidhi. Earlier, some of them borrowed money daily just to buy milk and even tea leaves. Interest was high and pressure was constant. Now, when they get a government loan, their shop feels stable. For some vendors, the biggest change is digital payment. I think that is a revolution that has come, especially with UPI, isn't it? And well, even small customers, they pay by UPI. No more worrying about change or cash shortages. UPI beep you hear in the small nook and lanes of busy markets. Well, that's become the new sound of India's street economy.
0: और सायरा, अगर बात करें इस योजना की उपलब्धियों की, तो 2020 में शुरू की गई इस योजना ने अब तक, जैसा कि आपने बताया, कि 75 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ पहुंचाया है, जिनमें 55 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। आज हम देखते हैं कहीं भी रेहड़ी पटरी वालों को, इनफैक्ट एक फुल्की तक खाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पे QR कोड लगा रहता है, स्कैनर लगा होता है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इस योजना के तहत डिजिटल जो एक कनेक्शन बढ़ा है वो भी काफी ज्यादा सराहनीय है। और इन लाभार्थियों ने 8.96 लाख करोड़ रुपए के डिजिटल लेन देन किए हैं। सिर्फ आप समझ सकते हैं कि आप एक जो शू जो आपका बनाता है वो, उसके पास स्कैनर है, एक सब्जी वाले के पास स्कैनर है। तो पहले जो होता था कि छुट्टा नहीं है भैया, अरे भैया डिस्काउंट दे दो, वो जो था वो खत्म हो गया कहीं ना कहीं। और लाभार्थियों को 800 करोड़ रुपए से अधिक के कैश बैक और ब्याज सब्सिडी भी दी गई है। समय पर चुकाने पर ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी भी दी गई है इन्हें। और सफल चुकान वालों को 30,000 रुपए तक का रुपए क्रेडिट कार्ड भी दिया जाता है। स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम के तहत परिवारों को अन्य कल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाता है, और वित्तीय डिजिटल साक्षरता और खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण भी उन्हें दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ ये एक योजना नहीं है जिसमें उन्हें ऋण दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं उन्हें समाज की मुख्य धारा से भी हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो गरीब होते हैं वो इनमें पिछड़े रह जाते हैं, इंटरनेट हो, फिर चाहे इक्विपमेंट्स की बात हो, चाहे मोबाइल फोन जो है चलाने की बात हो, तो कहीं ना कहीं वो भी इससे जुड़ रहे हैं मुख्य धारा से।
1: That's very right, Akarshita. And if we take a look what economists have to say, well, they say that the biggest impact of Swanidhi is not just financial, it is structural. It brings street vendors into the formal credit system for the first time at scale, reduces dependence on informal money lenders, and creates a bridge between small informal businesses and India's growing digital economy.
0: सरकार ने योजना की सफलता को देखते हुए इसे मार्च 2030 तक बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है, जो अनौपचारिक शहरी अर्थव्यवस्था को मुख्य धारा से जोड़ने में सफल रहा है। ये वित्तीय समावेशन का सबसे बेहतर उदाहरण है। ये सिर्फ पैसे ही नहीं देता बल्कि पहचान, क्रेडिट हिस्ट्री और लंबे समय के अवसर भी देता है। अब आप किसी भी शहर में घूमकर देखिए, आपको फर्क साफ नजर आएगा। जैसे कि हमने बात की थी कि सब्जियों की टोकरियों के पास लगे QR कोड, चाय के ठेले जो UPI पेमेंट स्वीकार कर रहे हैं, सड़कों पर चलने वाली रेहड़ियां जिनका कैश फ्लो अब ज्यादा आसान है और जो ज्यादा आत्मविश्वास के साथ अब आगे बढ़ रही हैं।
1: That's right. Perhaps the most important change, well, that is dignity. Yes, a sense that small businesses are no longer informal in spirit, even if they remain small in scale. They are recognized, supported, and empowered. The government has now extended the scheme until March 2030, as you have just mentioned, Akarshita, signaling that this is not

0: End but a continuation of a longer journey, a journey where India's street economy becomes stronger, more resilient and more connected.
1: PM Swanidhi Yojana sirf ek sarkari neet nahi hai, ye ek aisa badlav hai jo hum sab ke aaspaas ho raha hai. Hamare gali, mohallon, bazaaron mein PM Swanidhi ke labhaathiyon ka drudh sankalp aur unki udyamshilta desh ki arthvyavastha ko lagataar mazboot kar rahi hai. और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक विकास, सेवा, सुशासन और जन कल्याण की उपलब्धियों को समर्पित व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा.
2: अभियान के तहत 5 जून से 21 जून के बीच प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 10 किलोमीटर की प्रगति पथ यात्रा आयोजित की जाएगी. 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण और 8 जून से 14 जून तक जनसंपर्क अभियान, संवाद कार्यक्रम और पैदल मार्च आयोजित किए जाएंगे. 11 से 14 जून तक मीडिया संवाद कार्यक्रम होंगे. 14 से 16 जून के बीच जन कल्याण मेलों का आयोजन होगा. वहीं 16 और 17 जून को जिला स्तर पर विकसित भारत संकल्प सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे. 18 एवं 19 जून को केंद्र सरकार के 12 वर्षों की विकास यात्रा तथा विकसित भारत के संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए विशेष प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी. 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यह अभियान जनता से सीधे संवाद स्थापित करने, लाभार्थियों तक पहुंचने, उनकी अपेक्षाओं को समझने तथा विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को सख्त जन आंदोलन में परिवर्तित करने का प्रभावी माध्यम बनेगा. राघवेंद्र त्रिपाठी के साथ परिक्रमा के लिए आकाशवाणी गोरखपुर से प्रेमचंद्र गुप्ता.
1: और सायरा, जैसे जैसे पूरी दुनिया में जो पर्यावरण संकट है वो गहराता नजर आ रहा है, हम भारत में भी देख रहे हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में और पर्यावरण संकट को झेलने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं. और शायद इन्हीं प्रयासों से ग्रीन कॉरिडोर अभियान भी शुरू किया जा रहा है कई राज्यों में, जिनमें गोवा ने भी ऐसी ही एक पहल की शुरुआत की है. विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गोवा सरकार पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में एक नई पहल शुरू करने जा रही है. इसके तहत राज्य भर में व्यापक वृक्षारोपण और हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन कॉरिडोर अभियान शुरू किया जाएगा. ब्यौरा हमारे संवाददाता
3: से. हरित बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार 5 जून से ग्रीन कॉरिडोर अभियान शुरू करने जा रही है. 90 दिनों का यह अभियान राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे चलाया जाएगा और 5 सितंबर तक जारी रहेगा. अभियान के तहत सड़कों के किनारे बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाएगा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया है कि इस अवधि के दौरान करीब 10 लाख पौधे लगाए जाने की संभावना है. हर पौधा एक हरित भविष्य की ओर कदम है और इसी संकल्प के साथ गोवा एक स्वच्छ, हरित और संतुलित पर्यावरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है. परिक्रमा के लिए निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी.
0: And Akashita, we all know that Akashvani has celebrated 90 glorious years of its service to the nation. And everywhere, even in Delhi, in Akashvani, we had a walkathon. And even Akashvani Katak organized a vibrant walkathon that brought together listeners, employees, presenters, anchors and retired staff members as well in a spirited display of unity, wellness and community participation. Let's hear more from our correspondent.
4: The walkathon witnessed participation from more than 400 people, reflecting the enduring bond between Akashvani and its audience. The walkathon commenced from the Jawaharlal Nehru Indoor Stadium and passed through various parts of the city, spreading the message of fitness, togetherness and public awareness. Flagging off the walkathon as Chief Guest Justice Savitri Rothaw of the High Court of Odisha highlighted the growing importance of physical fitness in contemporary society. Recalling her lifelong association with Akashvani, she said that the programs broadcast by the public service broadcaster had played a significant role in shaping childhood.
5: It's a great privilege for me to be part of this program, 90 years of Akashvani. We have been hearing Akashvani early in the morning before going to school and hope we keep hearing Akashvani throughout our lives.
4: Justice Sivasankar Mishra and Commissioner of Cuttack Municipal Corporation Kirandip Kaur Sahota also attended the event.
6: The walkathon not only marked a milestone
4: milestone in Akashvani's illustrious journey, but also reinforced its commitment to public engagement, social awareness and nation building through meaningful community initiative. For Parikrama, this is Itishri Singh.
1: कूनों के जंगलों में चीतों के पंजों के निशान और गहरे होते जा रहे हैं। चीता परियोजना की ताजा खबर क्या है और ये कामयाबी कितनी बड़ी है, बता रहे हैं भोपाल से आकाशवाणी संवाददाता अभिनव गोयल।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी चीता परियोजना को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में एक और बड़ी कामयाबी मिली है। हाल ही में मादा चीता निर्वा और उसके तीन शावकों को बाड़े से निकालकर खुले जंगल में छोड़ा गया। इस नई बढ़त के साथ अब कूनो के खुले वन क्षेत्र में घूमने वाले चीतों की कुल संख्या 20 हो गई है। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक निर्वा के साथ छोड़े गए तीन शावकों में दो नर और एक मादा हैं। इनकी उम्र करीब 13 महीने है। इन सभी को श्योपुर जिले के पालपुर ईस्ट रेंज के आहेरा पर्यटन क्षेत्र में रिलीज किया गया है। चीता परियोजना के फील्ड डायरेक्टर ने बताया कि सभी चीते पूरी तरह स्वस्थ हैं और जंगल के माहौल में अच्छी तरह ढल रहे हैं। उन्होंने इसे परियोजना की बड़ी उपलब्धि बताया है। जंगल में छोड़े जाने के बाद इन चीतों की रेडियो टेलीमेट्री सिस्टम के जरिए 24 घंटे निगरानी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर कूनो नेशनल पार्क से इस परियोजना की शुरुआत की थी। उन्होंने खुद नाम्बिया से लाए गए पहले 8 चीतों को जंगल में छोड़ा था। पीएम नरेंद्र मोदी की इस पहल के बाद से कूनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। परिक्रमा के लिए अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: विख्यात गायिका पद्म भूषण से सम्मानित सुमन कल्याणपुर के पार्थिव देह का आज मुंबई में अंतिम संस्कार किया गया। उनका कल 89 वर्ष की आयु में मुंबई स्थित उनके निवास स्थान पर निधन हो गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। अधिक जानकारी के लिए चलते हैं हमारी मुंबई संवाददाता के पास।
7: सुमन कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी, जिसके कारण कई श्रोता उनके गीतों को लता मंगेशकर के गीत समझ बैठते थे। लेकिन संगीत अभ्यासक और गायिका डॉक्टर मृदुला दाढ़े जोशी का कहना है कि इस समानता के बावजूद सुमन कल्याणपुर की आवाज में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिनकी वजह से उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। सुनते हैं खुद मृदुला दाढ़े जोशी से।
8: सुमन जी की आवाज, उनकी गायकी, इन चीजों का विचार अगर हम किसी अन्य सुर के साथ, अन्य आवाज के साथ ना करें तो वो सुमन जी को सही मायने में श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि कई सारी बातें ऐसी है जो सुमन कल्याणपुर जी को अलग स्थापित करती हैं। खास तौर पर उनकी आवाज में जो एक वाइब्रेटो था, उनकी आवाज एक अलग किस्म से वाइब्रेट होती थी, कंपित होती थी, और ये सिर्फ और सिर्फ सुमन जी की आवाज में ही हम पाते हैं।

सिर्फ 6 साल की उम्र में नरगिस ने 1935 में आई फिल्म तलाश हक के अभिनय की शुरुआत की थी इसी फिल्म से, और 1940 और 50 के दशक में नरगिस ने कई फिल्मों में काम किया और 1957 में प्रदर्शित महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया नरगिस की सर्वाधिक चर्चित फिल्मों में से एक रही। इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भी नामित किया गया था। आइए सुनते हैं इसी फिल्म से ये

0: भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया।
1: Now we are remembering Ismail Darbar today, and of course we all know that he was a composer and singer as well. लेकिन उनकी सबसे ज़्यादा चर्चित composition रही फिल्म हम दिल दे चुके सनम की, and let's see if we have a song.

0: और सायरा अब समय हो चला है अपने श्रोताओं से हमें अनुमति लेने का, और तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और सायरा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं
2: मीडियम व्यू 305.81 मीटर अर्थात 981 किलो हर्ट्स और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: ಹಾಥಿ ಬನೆ ಗಜರಾಜ್
1: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोरपिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये गर्जंडी, सिंघरा, भरदा, पलहड़ा, धर्मपुर, गौरा, गणेशपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के रामानुजगंज और वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये चिनिया, महावीरगंज, शिवपुर, कनक पुर, टकिया, मेंढारी, भगवानपुर, नवापारा, इकनारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये सकालो, किशुनपुर, गंगरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, पड़ोली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, सायर, कुमडेवा, लक्ष्मणगढ़, उदरबसवार, केदमा, जगरनाथ, नाथपुर, ढोढ़ा गांव, कठबुड़ा, शिवनाथपुर, घासीडी, दातीढाप, गढ़गांव, बरडाण, चोरकी पानी, कंडराजा, पेंट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थल गांव, तपकरा में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, रानी कोम्बो, कुंजारा, लोटा पानी, मयूर चूंदी, बरटोली, खड़ामाचा, चट्टान पारा, महुआ डी, खुटसेरा, पतेबहाल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़ और कापू में हाथियों की कुल संख्या 124 है। ये आमगांव, पोटिया, ओंगना, चैनपुर, रुपुंगा, बोजिया, बनहर, औरानारा, बेहरा मार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के एतमानगर, जडगा और किंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये कुदवारी, सलिहा भाटा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरी कादर, फुलसर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये छर्रा टांगर, बंगूरसिया, जुनवानी, चिमटा पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये तालदादर, पकरीद, नवागांव, कोठारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारीपानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। पहले हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी आपको दे दें। आज रात 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन, इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम सुनिएगा गरीब कल्याण, प्रसारण समय 9:25। युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी शाम 5:10 पर, इसमें आजकल में चर्चा का विषय होगा वैश्विक अभिभावक दिवस और विश्व दुग्ध दिवस। इसके अलावा आप सुनेंगे क्रम सर्जना और इंद्रधनुष। शाम 6:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे पुष्पा हंस को और रात 8:15 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम की कलाकार होंगी कुसुम बड़ौदकर। किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल शाम 7:21 पर, इसमें आज की बात में ये महीना के कृषि कार्य, इस पर चर्चा। आज की सलाह में औषधि पौधों की खेती, इस विषय पर डॉक्टर सत्य प्रकाश विश्वकर्मा सहायक प्राध्यापक वानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र सांकरा दुर्ग की सलाह। इसके अलावा आज का प्रश्न और गीत संगीत। पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम सुरों का सफर आप सुनेंगी रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में जयदीप घोष का सरोद पर बजाया राग परज बसंत सुनिएगा। चित्रपट संगीत आप सुन सकते हैं शाम 7:00, रात 8:00 और 9:15 पर। ये थी श्रोताओं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब आपको कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

कल रात 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन, इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 9:25 पर सुनेंगे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम किसान कल्याण। 7:05 पर सुनिएगा सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर, प्रस्तुतकर्ता होंगे देवव्रत भगत। 8:30 पर छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां, इसमें आप सुनेंगे छत्तीसगढ़िया लोक जीवन मा बरखा ऋतु, इस विषय पर वार्ताकार होंगे डॉक्टर सिया राम साहू। डॉक्टर दीप शिखा पटेल की कहानी सुनिएगा फुलवा और डॉक्टर मीता अग्रवाल का कविता पाठ, संपादक और प्रस्तुतकर्ता होंगे महेंद्र साहू। 9:40 पर लोक संगीत के कार्यक्रम की कलाकार होंगी सुख्यारिन मानिकपुरी और साथी, और रात 8:15 पर भी आप सुन सकते हैं लोक संगीत के कार्यक्रम में सुख्यारिन मानिकपुरी और साथियों को। 10:00 सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर, दिन में 12:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT, शाम 5:00 सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम हमार हाथी हमार गोट, और शाम 6:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़िया। 11:05 पर समूह गान शिक्षा में कल आप सुनेंगे कन्नड़ भाषा में शिक्षा, रचनाकार होंगे BR गीता। इसके बाद आप सुनेंगे समूह स्वर में सुगम संगीत। 11:30 पर सदाबहार नगमे, दिन में 12:30 पर सुनिएगा आप मन के गीत, ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन कल दिन में 1:30 पर, इसमें आज के गोठ में चर्चा का विषय होगा लैका मन के बालपन मा संपोषित करो। कहानी सुनिएगा पार्वती, कहानीकार होंगी श्रीमती सुनैना साहू और सुनेंगे कामकाज की बातें। इसके अलावा सुनिएगा गीत संगीत, युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी कल शाम 5:10 पर, इसमें अपन गोठ में अपन संस्कृति में गर्व करो, क्रम सवाल जवाब और माटी के गीत। ये थे श्रोताओं हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, युवा साथियों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: माता और पिता जीवन की वो तीन सर्वोच्च स्तंभ है जिनका सम्मान और पूजन हर मनुष्य को विशेष रूप से करना चाहिए।
1: दुग्धम तु मधुरम स्निग्धम ओजो वर्धन उत्तमम श्रमघ्नम तर्पणम बल्यम सर्व प्राण भृतामहतम, यानी दूध स्वाद में मीठा, चिकना और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला होता है। ये थकान मिटाता है, हमें तृप्त करता है और बल देता है और सभी प्राणियों के लिए कल्याणकारी है।
0: इन्हीं सुंदर विचारों के साथ आज की युवाणी लेकर हाजिर है आपके दो रेडियो दोस्त, मैं प्रगति तांडी
1: और मैं साक्षी मिश्रा।
0: तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: दोस्तों सोचिए, जून की इस तपती दोपहरी में दूर किसी गांव के सुबह की पहली किरण फूट रही है और एक माँ अपने सोते हुए बच्चे को पुचकार कर रसोई में जाती है और पिता परिवार की खुशहाली की कामना करते हुए दिन की शुरुआत करते हैं। वहीं कहीं दूर कोई ग्वाला गौ माता की सेवा कर उनका अमृत रूपी दूध लेकर निकलता है। दोस्तों ये दोनों तस्वीरें हमारे जीवन की मजबूत नींव है।
0: बिल्कुल साक्षी। दोस्तों एक तरह से ये हमारी अस्तित्व की कहानी ही तो है। एक तरफ माता पिता का निस्वार्थ सुरक्षा कवच है और दूसरी तरफ वो अमृत तुल्य दूध है जो हमारे शरीर और बुद्धि को पोषण देता है।
1: और दोस्तों आज 1 जून को पूरी दुनिया दो महत्वपूर्ण उत्सव एक साथ मना रही है, विश्व दूध दिवस और वैश्विक अभिभावक दिवस, यानी एक तरफ जीवनदाता और दूसरी तरफ जीवन को सींचने वाला अमृत।
0: साथियों संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO ने साल 2001 में आज ही के दिन विश्व दुग्ध दिवस की शुरुआत की थी ताकि दुनिया दूध के पोषण मूल्य को समझे।
1: और गर्व की बात यह है दोस्तों कि आज भारत दुनिया का नंबर 1 दूध उत्पादक देश है। जी हाँ दोस्तों, वैश्विक दुग्ध उत्पादन में हमारी हिस्सेदारी लगभग 24-25% की है।
0: और साक्षी इसके पीछे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले डॉक्टर वर्गीस कुरियन और अमूल की श्वेत क्रांति है।
1: बिल्कुल।
0: जिसने छोटे किसानों और ग्रामीण महिलाओं को जोड़कर देश को आत्मनिर्भर बनाया और आज भी डेयरी सेक्टर हमारी ग्रामीण बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है।
1: बिल्कुल, लेकिन आज के दौर में शुद्ध दूध की पहचान जरूरी है, ये कैल्शियम और विटामिन का खजाना जो है। और दोस्तों इस गर्मी में तो दही, छाछ और लस्सी हमारे शरीर को ठंडक भी देते हैं।
0: आइए अब बात करते हैं आज के दूसरे पहलू यानी विश्व अभिभावक दिवस। दोस्तों माता पिता ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है। कहते हैं ईश्वर हर जगह खुद नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने माता पिता बनाए
1: और उन्हीं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उनके योगदान को याद करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UN जनरल असेंबली ने पहली बार 2012 में एक प्रस्ताव पारित करके 1 जून को विश्व अभिभावक दिवस के रूप में घोषित किया था।
0: और दोस्तों तभी से ये दिन विश्व स्तर पर माता पिता के सम्मान में मनाया जाता है।
1: दोस्तों हमारे माता पिता अपनी खुशियाँ भूलकर हमारे सपनों के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन आज की अंधी दौड़ में और डिजिटल युग के कारण लोग अपने बूढ़े माता पिता को समय ना दे पाते, उनका ध्यान नहीं रख पाते और नतीजा शहरों में बढ़ती वृद्धाश्रमों की संख्या। अब प्रगति सोचो, क्या ये हमारे संस्कारों पर एक बड़ा सवाल नहीं है?
0: बिल्कुल है साक्षी। दोस्तों अभिभावक दिवस मनाने की असली सार्थकता सोशल मीडिया पर फोटो डालने में नहीं बल्कि उनके चेहरों पर असली मुस्कान लाने में है। उन्हें आपसे महंगी गाड़ी, महंगे उपहार नहीं बल्कि आपसे समय, आपसे दो मीठे बोल और आदर चाहिए।
1: दोस्तों आज कुछ पल निकालकर उनके पास बैठिए, जो दूर हैं उन्हें फ़ोन करिए, आज के इस खास दिन पर उन्हें बताइए कि वे कितने खास हैं आपके लिए। वैसे प्रगति,
0: हाँ
1: अगर देखा जाए तो आज के ये दोनों ही आकर्षण यानी हमारे अभिभावक और दूध, इन दोनों का इंसान से बड़ा गहरा रिश्ता है ना।
0: बिल्कुल।
1: अब देखो ना, पोषण की शुरुआत ही माँ के पहले दूध से होती है, यानी एक तरफ हमारे जीवनदाता अभिभावक और दूसरी तरफ उस जीवन को सींचता पोषण का प्रतीक दूध।
0: बिल्कुल, जैसे गाय बिना भेदभाव के दूध देती है वैसे ही माता पिता भी बिना किसी स्वार्थ के अपना सर्वस्व हम पर निछावर कर देते हैं। दोस्तों हमें समझने की ज़रूरत है कि आज जो आदर हम अपनों को देंगे वही कल को बच्चे हमसे सीखेंगे।
1: इसलिए दोस्तों अपने माता पिता को कभी भी अकेलेपन का एहसास मत होने दीजिए, उनके साथ समय बिताइए, उनको प्यार और सम्मान दीजिए, क्योंकि उनकी खुशी ही हमारी सबसे बड़ी सफलता है।
0: बिल्कुल सही कहा साक्षी। और दोस्तों ये याद रखिए कि मिलावट से दूर रहिए और स्वस्थ जीवन के लिए शुद्ध दूध और डेयरी उत्पादों को अपनाइए। और साथ ही इस बात का खास ध्यान रखिए कि जब गाय बछड़ी को जन्म दे तो उसके बाद ग्वाले उतना ही दूध निकाले जिससे बछड़ी को दूध की कमी ना हो।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: साथियों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्रम, क्रम सर्जना की ओर, जिसमें आप सुनेंगे वर्षा साहू की स्वरचित कहानी पद्मा।
4: युववाणी सुनने वाले सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं वर्षा साहू आज आपके समक्ष स्वरचित कहानी पेश करने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है पद्मा। कभी कभी उनकी मीठी आवाज़ में कान्हा का झूला गीत सुनने को मिलता था। सारा गांव उन्हें बुआ कहकर पुकारता था। गांव की वो बुआ बिन बिहाए गांव में नहीं थी, बल्कि पूरे गांव के लिए नाकाम शादी और गलत फैसले का उदाहरण थी। बुआ एक संपन्न किसान की बेटी, एक समझदार सलीकामंद माता की लाडली और तीन भाइयों की अकेली बहन थी, जिसे भाइयों ने कभी अकेला नहीं होने दिया। वर्तमान में बुआ घर की सफाई, पड़ोस में रहने वाले मास्टर की पत्नी की सहायता और गांव की शादियों, त्योहार, मेले और बाजारों का इंतज़ार करके समय आने पर उनमें खुशी खुशी शामिल होकर अपना जीवन गुजारती हैं। भाई भाभियों, उनके बेटे बहुओं की चार बातें सुनकर भी बुआ ने अपना मन मैला नहीं किया, हमेशा अपनाया और आगे बढ़ी। बुआ बचपन से मानसिक रूप से दूसरी लड़कियों की तरह तेज नहीं थी। माता ने संपन्नता का परिचय दिया और अपनी बेटी को घर के कामों में व्यस्त किए बिना शिक्षा देना सही समझा। बुआ की माँ हिसाब किताब की पक्की, रखरखाव वाली अक्लमंद घरेलू स्त्री थी, पति की संपन्नता में सहयोगी थी। शिक्षा के साथ साथ बेटी को घर के कामों, रसोई घर की जिम्मेदारी में निपुण बनाना चाहती थी, लेकिन बुआ के मानसिक धीमेपन के कारण सिखा न सकी। बुआ रसोई के कामों में बिल्कुल शून्य थी, मगर साफ सफाई में सबसे आगे। चाहे वो सहन लिपकर चमकाना या घर पर झाड़ू से तिनका तिनका साफ कर देना हो, हर तरह की सफाई का जिम्मा बखूबी निभाती थी। अपनी जीभ के गुलाम और खाने पीने की शौकीन बुआ पसंद न आने वाले भोजन का दूसरा निवाला कतई अपनी जुबान से नहीं लगाती थी। कक्षा चौथी तक शिक्षा प्राप्त करके 14 वर्ष की आयु में विवाह का समय आया। परिवार ने बुआ की मानसिक मंदता को ध्यान में रखकर समय के अनुसार अत्यधिक दहेज का प्रबंध किया था। उस समय 1970 की दशक में एक ग्रामीण परिवार जो कुछ दहेज योग्य समझता था, सब कुछ दहेज में दिया जाना तय हुआ। बारी आई वर तलाशने की। बुआ के मामा जी के पड़ोस वाले घर में 20 वर्षीय युवक को सारी स्थिति सत्य बताकर विवाह प्रस्ताव दिया गया। वर और परिवार की सहमति से विवाह तय हुआ। सुंदरता में होने वाली वधु में जरा सी भी कमी नहीं थी। साज सज्जा, पहनावे का सलीका भी खूब जानती थी। जल्दी काम निपटा पाने में वो जरा असमर्थ थी। विवाह खुशी खुशी संपन्न हुआ। वधु के रूप और उपहारों ने वर और परिवार को कुछ दिन चुप रखा। दाम्पत्य जीवन भी अच्छा चलता रहा। ऐसा सर्वदा चलना संभव नहीं था। पति को अच्छा भोजन समय पर पका कर ना दे पाना सबसे पहले कलह का कारण बना, जिस पर परिवार ने ताने और यातनाएं देना प्रारंभ कर दिया। तरह तरह की पीड़ा पहुंचाई। एक संपन्न किसान की बेटी और खाते पीते परिवार की कुल वधु की हालत भिखारी नौसी कर दी। कम अक्ल होने का ताना पल पल सुनने को मिला और आदत हो गई। कुल वधु ने कुल दीपक तो जलाया, पर दूध मुहे को छोड़कर खेतों में फसल की रखवाली के लिए भेज दिया गया। पति स्वयं गर्मियों की दोपहर घर पर आराम करता था और बुआ मेड़ों में मंडराती, पशुओं से फसलों को और पशु रूपी लोगों से अपनी इज्जत बचाती थी। फसल पकने पर श्रमिकों संग फसल काटकर लाने का काम भी बुआ को ही मिला, जो कि केवल रात के बचे कुचे खाने के अधिकार के लिए करना पड़ता था। कठोर परिश्रम के बाद भी बुआ घर लौटती थी तो रसोई को समेटने, लिपने और बर्तन मांजने के

भूखे बालक को कलेजे से लगाकर खूब पिलकती थी, लेकिन पति के पाषाण हृदय पर चोट नहीं कर पाती थी। सारा दिन भूखे काम करने की वजह से बुआ की हालत दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। बुआ ने फिर भी सब्र का इम्तिहान दिया और सहती रही। एक रोज़ पति ने अपना क्रोध निकालने के लिए बुआ को बैल के साथ धान की मड़ाई के लिए एक ओर बांधा। ये यातनाएं उन्हें काम सिखाने के लिए नहीं, अपमानित करने के लिए दी जा रही हैं। वो कांच की टूटी वस्तु के समान बिखर गई और विवाह के इन 3 वर्षों में पहली बार अपने मायके लौट जाने का विचार करने लगी। हर विवाहित स्त्री के सामने यह समय अवश्य आता है जब रिश्तों, जिम्मेदारियों और ममता की डोर उसके पकड़ से छूटने लगती है और सब कुछ छोड़कर अपने इंसान होने का सबूत ढूंढने लगती है। किसी के हालात समझकर परिवार रोक लेता है। कुछ बच्चों के सर पर पिता के साए के लिए सब सह लेती हैं, पर कुछ स्त्रियों को परिस्थिति के दुश्मन के समान कोई आसरा नहीं मिलता। उनमें से एक थी बुआ, जिन्होंने अपनी तकलीफों के सामने घुटने टेकना बेहतर समझा। पति और ससुराल की नाइंसाफी से तंग आकर मायके छोड़ आने को कहा। उसी समय आधी रात उन लाल हरी चूड़ियों से सजी कलाई को खींचते हुए पति ने दरवाजे से बाहर कर दिया और कभी न लौटने को कहा, जैसे इसी ताक में हो। अपने आभूषण और दहेज की मांग रखने भर से स्त्री को लालची कहा जाता है। आंगन में खूंटे से बांध कर पीटा जाता है, पर समाज स्त्री को बराबर का अधिकार और इज्जतदार जीवन दे पाना महंगा समझता है। आंगन में जब मार खाकर बुआ अधमरी हो गई और अपने बच्चे को साथ ले जाने के लिए बढ़ी, तब एक माँ से उसका बालक भी छीन लिया गया और फिर एक बार गांव के बाहर छोड़ आई। बुआ को स्वयं पर घर से भाग जाने का कलंक लगने की आशंका हुई। वो सुबह होने का इंतज़ार करने लगी। सारी रात चौखट पर बैठकर गुजार दी। जब भोर हुई, मामा जी के घर जाकर मायके संदेश पहुंचाने को कहा और सभा बुलाने की याचना की। अगले दिन जब माता पिता और भाई बुआ के ससुराल पहुंचे, तो सारा हाल जानकर सबसे पहले अपने गलत फैसले को कोसने लगे। नाजों से पली बेटी और पोते की हालत पर स्वयं को दोषी समझने लगे और सभा बुलाई। लंबी चलने वाली बहस के बाद आदरणीय सभा ने निर्णय लिया कि बुआ को अपने दहेज और गहनों के साथ वापस भेज दिया जाना चाहिए। लेकिन वो तो माँ थी, पुत्र के अधिकार के लिए लड़ती रही। आखिरकार वही हुआ जो सदियों से नारी के साथ होता आया है, उसे उसका अधिकार नहीं मिला। सभा को परिवार की माली हालत खराब होने की वजह देकर चुप करा दिया गया और बुआ लौट आई खाली हाथ, भारी मन, कमज़ोर शरीर और सूनी गोद के साथ कड़वी यादें लेकर। इस बीच लोग और बुआ स्वयं भूल चुके थे उनकी सुरीली आवाज़, जो लोगों को भाव विभोर कर देती थी। अब उस आवाज़ में केवल दर्द था। यूं ही बेटे की याद में समय बीतता गया। कभी ना कभी बेटे से फिर मिलने की आस में वो जीवन गुजारने लगी। एक दिन पति की दूसरी शादी की खबर आई। स्वयं को पत्नी जानकर अब भी वो चूड़ियों और सिंदूर से सुहागन का श्रृंगार किया करती थी और इस कठोर सूचना के बाद भी करती रही, लेकिन पुत्र को सौतेली माँ मिलने और सौतेला व्यवहार पाने के ख्याल से वो सिहर उठती थी और प्रार्थना करती थी कि परमात्मा उस बालक का सहायक होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बालक की कमजोरी से मृत्यु हो गई। यह वो चोट थी जो बुआ के दिमाग के नसों को चीर गई। समय हर चोट भर देता है, अब उसे माँ का हृदय केवल याद कर सकता है और कोई नहीं। इसी तरह समय बीतता गया। माँ के आंचल में दुखियारी ने फिर से बसेरा बना लिया। भाइयों का परिवार बसने लगा। एक अच्छी उम्र जीने के बाद पिता की मृत्यु हो गई। तीनों भाइयों का परिवार अलग अलग रहने लगा। बुआ माँ और बड़े भाई के साथ रहती थी। कुछ वर्षों बाद पड़ोस में मास्टर जी का परिवार अपने नए घर में रहने आया। मास्टर की पत्नी को सहायता की आवश्यकता थी। स्कूल जाने के बाद वह अकेली भी हो जाया करती थी। समय के साथ बुआ का परिवार छूटता गया, आमदनी कम होने लगी। मास्टरनी के कहने पर बुआ की माँ ने बुआ से कहा, जाओ मास्टर की पत्नी की सहायता करो। मास्टरनी अच्छे व्यवहार की और अक्लमंद थी। उन्होंने अपनी आवश्यकता के अनुसार बुआ को सारे काम सिखाए। उनके साथ समय बिताने लगी। दोनों खूब बातें किया करते थे। कभी कभी मास्टरनी बुआ से गाना भी सुनती थी, उनके बारे में पूछती थी। काम धीरे धीरे करने पर चिढ़ भी जाती थी, पर धैर्य का साथ नहीं छोड़ा। बुआ की

0: 90 वर्षों की हो गई। वृद्ध शरीर कमजोर होता गया। वो एक दिन अपनी लाडली बेटी को छोड़कर चल बसी। इस साए का बुआ के सर से उठना उन्हें क्षीण करता गया, पर वो आज भी अपनी पसंद से सफाई करती हैं, पहले से ज़रा और धीरे धीरे। कभी कभी अपने बेटे को याद करके गीत गाती हैं और कहती हैं, मैं वो स्त्री हूँ जो सह न पाई, फिर से अपनी माँ के गोद में आ बैठी। स्त्री कितनी भोली है, अपनी पीड़ा का दोषी स्वयं को मानती है, क्योंकि उसे सह न सकी। वैसे बुआ का नाम पद्मा है, यानी कमल, जो खिलकर दलदल को भी शोभायमान कर देता है।
1: अभी आप सुन रहे थे क्रम सर्जना में वर्षा साहू की स्वरचित कहानी पद्मा।
2: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
3: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
4: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
3: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
4: 47 सालों से निरंतर सेवा में
3: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
1: दोस्तों, आज क्रम इंद्रधनुष में हम उस अभिनेता की बात करने जा रहे हैं जिनकी फिल्में कहती है आज का युवा होना कोई बच्चों का खेल नहीं, इसमें डॉक्टर या इंजीनियर के बजाय कुछ और बनने की चाह भी हो सकती है, और जाहिर है जिस पर अब्बा नहीं मानेंगे।
5: युवा जो इंतजार में है कि कब राजनीति में हिस्सेदारी का अवसर मिले। यूं तो वो अपनी मस्ती की पाठशाला में खोया रहता है, पर साथ ही देशभक्त इतना कि पूरे देश को बसंती रंग में रंग दे।
1: जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पहचाना। हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेता आर माधवन की, जिनका आज जन्मदिन है।
5: आर माधवन, इनका जन्म 70 के दशक में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ। इनके पिता जमशेदपुर में एक स्टील कंपनी में सीनियर मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव थे और इनकी माता बैंक कर्मचारी थी।
1: प्यार से उनके दोस्त उन्हें मैडी बुलाया करते थे, और बचपन में वो बड़े ही शरारती थे। माँ की डांट को अनसुना कर कभी पेड़ों पर चढ़कर फल चुराते तो कभी गली में इधर उधर घूमते।
5: दोस्तों, शरारती माधवन पढ़ाई में तो कमज़ोर थे, पर खेल और बाकी क्षेत्रों में बड़े होशियार। स्कूली दिनों में उन्होंने NCC कैडेट के रूप में कनाडा में भारत का प्रतिनिधित्व किया, और बाद में इन्हें इंग्लैंड की ब्रिटिश आर्मी के साथ ट्रेनिंग करने का अवसर मिला।

उन्होंने पिता के सपने पूरे करने के लिए कोल्हापुर में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला तो ले लिया, पर वो इंजीनियर नहीं बनना चाहते थे। अपनी एक नई राह बनाने के लिए उन्होंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस शुरू की। एक दिन किसी छात्र ने उन्हें मॉडलिंग करने की सलाह दी, तो उन्होंने टीवी चैनल में अपनी कुछ तस्वीरें भेजी। यही से उनके जीवन में एक नया मोड़ आया।

0: दोस्तों, उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो टीवी के मशहूर धारावाहिक जैसे बनेगी अपनी बात और सी हॉक जैसी धारावाहिकों में नजर आए। तमिल फिल्म इंडस्ट्री में भी मणिरत्नम जैसे दिग्गज निर्देशकों के साथ उन्होंने काम किया।
1: फिर बॉलीवुड का रुख करते हुए फिल्म रहना है तेरे दिल में से डेब्यू किया। उनकी बॉय नेक्स्ट डोर वाली छवि लोगों को बेहद पसंद आई।

0: साक्षी उनका एक दिलचस्प किस्सा है। संघर्ष के दिनों में किसी निर्देशक से काम मांगने जाते तो किसी दोस्त से कहते कि तुम गाड़ी चलाना, मैं पीछे बैठूंगा। वही दोस्त मीटिंग के बीच बीच में बार बार आकर कहता कि आपके लिए फोन आ रहा है। वो मजाक में कहते हैं कि ये झूठी ठाट बात देखकर निर्देशक उन्हें ज्यादा भाव देते थे।
1: और दोस्तों उनकी खास बात यह है कि उन्होंने अपने दमदार अभिनय से हमेशा ये साबित किया कि मुख्य किरदार के साथ साथ उनकी सहायक भूमिकाएं भी जगमगाती थी। सहायक भूमिकाओं में भी जगमगाना संभव था। अब फिल्म थ्री इडियट में फरहान के किरदार को भला कोई भूल सकता है क्या?

0: दोस्तों, निजी जिंदगी में आर माधवन शाकाहारी हैं और उन्हें अपने खाली समय में पहाड़ों पर ट्रैकिंग करना और बाइक राइडिंग करना बेहद पसंद है।
1: हमेशा खुद को चुनौती देने में विश्वास रखने वाले आर माधवन ने 2019 में फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट से बतौर निर्देशक के रूप में डेब्यू किया। सिनेमा में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने इसी साल यानी जनवरी 2026 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा, क्योंकि उनकी फिल्मों में समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश होता है जो लोगों को सोचने पर मजबूत करता है।

0: दोस्तों, आर माधवन का फिल्मी सफर अभी जारी है। आशा है कि वो अपनी फिल्मों से हम सभी का ऐसे ही मनोरंजन करते रहेंगे। हम सभी की ओर से उन्हें जन्म दिवस की हार्दिक बधाइयां।
1: इसी के साथ आज का सफर यहीं तक। जाने से पहले जान लीजिए कल के कार्यक्रम। कल की युववाणी सजेगी छत्तीसगढ़ी में और क्रम होंगे सवाल जवाब और माटी के गीत। और अब हमें यानी प्रगति तांडी
0: और साक्षी मिश्रा को दीजिए इजाजत और स्वीकारें हमारा नमस्कार।

0: युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 6 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक रक्षा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री

0: पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि इस समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल वस्त्र, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता मिलेगी।
1: I am confident that this comprehensive agreement
2: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। LPG आपूर्ति के संबंध में उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिन में 1,21,00,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई, जबकि 1,22,00,000 से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल RN रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। शपथ लेने वाले सदस्यों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शंकर घोष और अन्य शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। प्रख्यात पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का अंतिम संस्कार आज मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। उनका निधन कल रात मुंबई में हुआ था। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 19 पदक जीते हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलो हर्ट्स और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।
4: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे
1: हो? हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम Hello? गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित,
1: कब आना है?
0: अरे देख के सामने।
1: ठीक है, और कौन आएंगे?
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद के और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं?
4: अरे जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
5: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ?

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

0: मीडियम वेव 305.8 मीटर अर्थात 981 किलो हर्ट्स और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार छत्तीसगढ़ी में।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग धर्मेंद्र दुबे के जय जोहार। आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के आज 6 बछर पूरा। प्रधानमंत्री है कहीं कि बिना गारंटी के कर्जा मिले ले लाखों रेहड़ी पटरी वाले मन के जिंदगी में हो है सुधार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है आज राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के करें शुभारंभ। छत्तीसगढ़ में घलो प्राकृतिक खेती और मृदा संरक्षण ल बढ़ावा दे बर आज ले खेत बचाओ अभियान शुरू। और प्रदेश में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव पर आज डारेगी वोट। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 बछर पूरा हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है योजना के प्रशंसा करत कहिन कि पीएम स्वनिधि योजना है बिना गारंटी के कर्जा वित्तीय समावेशन और विकास के नवा मौका खोल के लाखों रेहड़ी पटरी वाले मन के जिंदगी में सुधार करे है। प्रधानमंत्री है सोशल मीडिया पोस्ट में कहिन कि यह योजना विश्वास सम्मान ऊपर आधारित है। बछर 2020 में योजना के शुरू होने के बाद अब तक 1,12,00,000 कर्जा दे गए है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के रामसिया गांव ले राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के शुभारंभ करिन। एक महीना तक चलैया ये अभियान देश के खेती वाले भूइया ला बचाए और किसान मन ला वैज्ञानिक खेती करे बर जागरूक करे की दिशा में बड़का पहल हरे। इति छत्तीसगढ़ में घलो प्राकृतिक खेती और मृदा संरक्षण ला बढ़ावा दे बर आज ले खेत बचाओ अभियान शुरू हो गए है। कृषि मंत्रालय के ये अभियान में किसान मन ला प्राकृतिक खेती सही मात्रा में खातु के प्रयोग और माटी के उर्वरा शक्ति ला बचाए के बारे में जागरूक करे जाही। ग्राम पंचायत विकास खंड और जिला स्तर में कृषक संगोष्ठी कृषि चौपाल और जन जागरूकता कार्यक्रम रखे जाही। कृषि वैज्ञानिक मन हा किसान मन ला रासायनिक खातु के दुष्प्रभाव और प्राकृतिक खेती के फायदा के बारे में जानबा दही। अभियान के दौरान किसान मन ला अपन खेती वाले भूइया के एक हिस्सा में प्राकृतिक खेती करे के बात कहे जाही। संगे संग खातु के कालाबाजारी और जमाखोरी रोके बर निगरानी व्यवस्था ला और मजबूत करे जाही। प्रदेश में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव पर आज मतदान डारेगी। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक नगरीय निकाय में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 71 ठिन पद पर 96 मतदान केंद्र में मतदाता मन है वोट डारिन। तो उन्हें त्रिस्तरीय पंचायत मन में जनपद पंचायत सदस्य सरपंच और पंच के कुल 151 पद पर 274 मतदान केंद्र में 1,00,000 ले ज्यादा मतदाता मन अपन मत के प्रयोग करिन। नगरी निकाय में मतदान बिहनिया 8 बजे ले संझा 5 बजे तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेकर आएगी। तो उन्हें पंचायत चुने में मतदान बिहनिया 7 बजे ले मंझनिया 3 बजे तक मतपेटी के माध्यम ले हुई। पंचायत चुनाव के मतगणना मतदान के तुरते बाद शुरू हो गई है। राज्यपाल रमेन डेका आज लोकभवन में राखे गए एक विशेष कार्यक्रम में माना स्थित SOS बालिका गृह के नोनी मल्ले गोट बात करें। संगे संग ओमन अंगदान और देहदान के संकल्प लेवैया मानवता के सेवा के संदेश दिवैया 75 जिन लोगन मल्ला सम्मानित करें। ये मौका में राज्यपाल है कहिन कि समाज में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाए ले कतकोन जरूरतमंद लोगन मल्ला नवा जिंदगी मिल सकते। ओमन कहिन कि जौन लोगन मन अंगदान और देहदान के संकल्प ले हैं ओमन समाज के बड़का नायक है। राज्यपाल है नोनी मल्ला शिक्षा अनुशासन आत्मविश्वास और कड़ा मेहनत करे के बारे में कहिन। विश्व तंबाकू दिवस के मौका में प्रदेश भर में नशा मुक्ति और जन जागरूकता अभियान चला के लोगन मल्ला तंबाकू और आने नशीला पदार्थ के दुष्प्रभाव के जागरूक करेगी। ही कड़ी में सूरजपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डहार ले जागरूकता कार्यक्रम चलाएगी। अभियान के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र मन में जागरूकता कार्यक्रम संगोष्ठी और जनसंवाद राखे गे लोगन मल्ला नशा के गलत दुष्प्रभाव के जानबा देगी। थाना मन में नियुक्त पैरालीगल वॉलंटियर्स मन डहार ले कतकोन जगह में लोगन मन ला तंबाकू सेवन ले होवैया बीमारी के बारे में बताएगी। ये मौका में गांव के लोगन मन के संगे संग युवा मन ला नशा मुक्त समाज बनाए के शपथ दिवाएगी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर सुनत हो।
2: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
1: अब बांचे समाचार कोती। होटल रेस्टोरेंट और आने व्यवसाय मन में प्रयोग होवैया 19 किलोग्राम के व्यावसायिक LPG सिलेंडर के भाव में बढ़ोतरी करे गए है। राजधानी रायपुर में वाणिज्यिक LPG सिलेंडर के भाव में 52 रुपया के बढ़ोतरी हो है तो उन्हें 5 किलोग्राम सिलेंडर के भाव में 13.50 रुपया की बढ़ोतरी हो है। मुख्यमंत्री आज कोंडागांव जिला के ग्राम पंचायत बड़े कनेरा में बने अटल डिजिटल सुविधा केंद्र के निरीक्षण करें। इस दौरान उमन ग्रामीण डिजिटल सुशासन के अभिनव मॉडल सेवा सेतु के कामकाज लघलो देखिन। सुशासन तिहार में राखे गए जन समस्या निवारण शिविर में आम लोगन मल्ले गलत व्यवहार और अपन काम में लापरवाही बरते के आरोप में जनपद पंचायत दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रूपेश कुमार पांडे ल निलंबित कर दे गए है। संभागायुक्त दुर्ग डहार ले जारी निलंबन आदेश में कहे गए है कि जन समस्या निवारण शिविर में ये अधिकारी मंडहार ले आम लोगन मन के संग गलत व्यवहार करेगी जौन छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम के विपरीत हरय। ए बारे में संभागायुक्त दुर्ग डहार ले मुख्य कार्यपालन अधिकारी ल कारण बताओ नोटिस घलो जारी करेगी रहीस फिर ओमन एखर बने ढंग ले जवाब नहीं दे पाइन ये आदेश तुरते प्रभाव ले लागू हो गए है। लोक निर्माण विभाग मार्च 2026 तक मंजूर करेगे जम्मो काम पर 30 जून तक निविदा मंगाए है और 31 जुलाई तक काम शुरू करे के निर्देश दे है। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल आज जम्मू मुख्य अभियंता अधीक्षण अभियंता और कार्यपालन अभियंता मन के बैठका लेके विभागीय कामकाज के समीक्षा करें। ओमन नक्सल प्रभावित क्षेत्र मन में सड़क संपर्क परियोजना ला अवैया बछर के 31 मार्च तक पूरा करे और संगे संग भू अर्जन ले जुड़े मामला ला अवैया 6 महीना में निपटारा करे बर कहिन। तउहे पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा नवा रायपुर में विभागीय कामकाज के समीक्षा करें। बैठका में ओमन कहिन कि आम लोगन मल्ला विकसित भारत अधिनियम के बारे में पूरा जानबा देना शासन के पहली प्राथमिकता है। ओमन 1 जुलाई ले लागू होवैया ए अधिनियम के बारे में पूरा जानबा समाज के आखिरी मनखे तक पहुंचाए बर विशेष जागरूकता अभियान चलाए के बात कहिन। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में हुए सड़क दुर्घटना में भिलाई के चंद्राकर परिवार के संगे संग 8 लोगन के मौत हो गए। ये घटना साच पास रद्दा ऊपर हुई जहां पर्यटक मल्ले भरे एक ठीन कार करीबन 500 मीटर गहरा खाई में गिर गए। मृतक में भिलाई के एक दंपत्ति और 2 लड़का घलो शामिल है। ये परिवार मन बेंगलुरु में राहत रहिन। जानबा के मुताबिक 2 परिवार डलहौजी ले साच पास घूमे पर गए रहिन। गाड़ी के वापिस नई लहूटे के जानबा मिले के बाद GPS के माध्यम ले एकर पता लगाया गिस। हादसा के कारण के जांच करे जाते। जुआ और सट्टा के विरुद्ध चलाए जात ऑपरेशन अंकुश के तहत रायगढ़ पुलिस IPL फाइनल मुकाबला के दौरान ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा चलावत एक ठिन संगठित गिरोह के पर्दाफाश करके 2 सटोरी मन गिरफ्तार करे है। आरोपी मन के तीर ले मोबाइल फोन नोट गिने के मशीन और सट्टा के रकम ले जुड़े 31,99,000 रुपया नकदी बरामद करे गए है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज लोरमी के गांव जरहापारा में जन चौपाल लगा के गांव के लोगन मन ले गोट बात करके जरहापारा में देवगुड़ी बनाए बर 5,00,000 रुपया दे के घोषणा करीन। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम धमतरी जिला में पुलिस की पाठशाला के लोकार्पण करीन। एमा आने आने प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी ले जुड़े किताब मल्ला मुफत में दे जाही। और रायगढ़ जिला के मांड नदी में हाथी के सावा के नदियां में डूबे ले मौत हो गए। ये घटना खरसिया रेंज के गुर्दा गांव के तीर होइस। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फिर। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के आज 6 बछर पूरा। प्रधानमंत्री कहिन कि बिना गारंटी के कर्जा मिले ले लाखों रेहड़ी पटरी वाले मन के जिंदगी में हो है सुधार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के करीब शुभारंभ। छत्तीसगढ़ में घलो प्राकृतिक खेती और मृदा संरक्षण ला बढ़ावा देबर आज ले खेत बचाओ अभियान शुरू। और प्रदेश में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनई पर आज डारेगी वोट। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहें सिरावत है। जय जोहार।
0: मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलो हर्ट्स और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 6:20 होने को है। संस्कृत में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
3: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुरुषोत्तम शर्मा। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्यांमायाः राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन च नवदिल्ल्यां द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवन्तौ। उभयोः मध्ये ऐतिहासिक सभ्यतागत संबंधान् सुदृढीकर्तुं वार्ता अभवत्। भारत ओमान व्यापकार्थिक सहभागिता संधिः CEPA इति अद्य क्रियान्वितः अभवत्। अनेन भारतीय निर्यातकेभ्यः ओमाने प्रतिशतं 98 मितं विपणौ शुल्कमुक्त कार्यानुमतिः भविष्यति। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजनायाः 6 वर्षपूर्तौ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवोचत् यत् अनया योजनया पथव्यवसायिभ्यः प्रगतेः नूतनावसराः प्रदत्ताः। पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अद्य मंत्रिमंडलस्य विस्तारं विधाय 35 नूतन मंत्रिभ्यः मंत्रिमंडले स्थानम् अयच्छत्। अपि च हांगकांग नगरे आयोजितायां 22तमायां एशिया महाद्वीपीय

0: वर्तमानम् अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप इति स्पर्धा मालिकायां भारतेन 10 स्वर्ण पदकानि समेत्य 19 पदकानि विजितानि। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी म्यांमायाः राष्ट्रपतिः ओ मिन आउं लाइन च अद्य नवदिल्ल्यां द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवन्तौ। उभयोः मध्ये ऐतिहासिक सभ्यतागत संबंधान् इतोपि सुदृढीकर्तुं वार्ता अभवत्। संवादे म्यांमा भारत देशयो मिथः सुरक्षां संपर्कं च समेत्य देशद्वयोः संबंधानां समेपि पक्षाः चर्चिताः। उपवेशनस्य अनन्तरं विदेश सचिवः विक्रम मिसरी अवोचत् यत् देशद्वयेन विदेश व्यवहार विकास शिक्षा स्वास्थ्यादि विषयेषु कार्याचरणाय सहमत्यं प्रकटितम्।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: भारत ओमान व्यापकार्थिक सहभागिता संधि CEPA इति अद्य क्रियान्वितः अभवत्। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अवोचत् यत् अयं संधिः देशद्वयस्य आर्थिक रणनीतिक संबंधान् दृढयिष्यति। एकस्मिन् राष्ट्रीय दैनिक पत्रे प्रकाशिते लेखे श्री गोयलः अवोचत् यत् अयं निधिः नूतनापणम् उद्घाटयिष्यति। अनेन निर्याते वृद्धिः भविष्यति, निवेशः अपि वृद्धिं यास्यति। व्यापकार्थिक सहभागिता संधे अंतर्गतम् भारतीय निर्यातकेभ्यः ओमाने उत्पाद समूहेषु विपणौ प्रतिशतम् 98 मिता शुल्कमुक्ति कार्यानुमतिः भविष्यति। श्रीगोयलेन उक्तं यत् अनेन आजीविका संवर्धनाय विद्यार्थिभ्यः श्रमिकेभ्यः महिलाभ्यः कृषकेभ्यः मत्स्यजीविभ्यः सूक्ष्म लघु मध्यमोद्योगेभ्यः च महत्वपूर्णरूपेण लाभो भविष्यति।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
3: of our shared future.
0: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजनायाः 6 वर्षाणि पूर्णानि अभवन्। श्रीमोदी अस्याः योजनायाः प्रशंसां विधाय अवदत् यत् PM स्वनिधि योजनया प्रतिभूतिं विना ऋणप्रदानं वित्तीय समावेशनम् अपि च विकासस्य नवीन अवसराः प्रदत्ताः, येन लक्षशः पथ विक्रेति जनानां जीवने उन्नतिः समागता। पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अद्य मंत्रिमंडलस्य विस्तारम् अकरोत्। राज्यपालः RN रविः कोलकातायाः लोकभवने आयोजिते समारोहे 35 नूतन मंत्रिभ्यः पदस्य गोपनीयतायाः च शपथग्रहणं कारितवान्। समारोहे मुख्यमंत्रीवर्येण सह अन्य वरिष्ठ नेतारः अपि उपस्थिताः आसन्। नवनियुक्त मंत्रिभ्यः विभागानां आवंटनम् अनन्तरं भविष्यति। शपथग्रहण समारोहे स्वप्नदास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शकर घोष च शपथवचनं स्वीकृतवन्तः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः रक्षामन्त्रिणोः द्वितीय संवादोपवेशनं राजधान्यां नवदिल्ल्याम् अभवत्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अथ च ऑस्ट्रेलिया देशस्य उपप्रधानमन्त्री रक्षामन्त्री च रिचर्ड माल्सः उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवन्तौ। सिंहेन प्रोक्तं यत् उपवेशनावधौ भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोर्मध्ये सुरक्षा सम्बन्धः सुदृढः अभवत्। श्रीमाल्सः अवादीत् यत् ऑस्ट्रेलिया भारत देशौ रक्षा सहभागितां सुदृढः अकुरुताम्। देशद्वयं सामुद्रिक क्षेत्रे मिलित्वा कार्यं करिष्यतः। वार्तायां द्विपक्षीय रक्षा सहयोग विषये प्रगतिः समीक्षिता, यया सहभागितायाः

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर, चाहे पास रहें या दूर।

0: आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार बारी बखरी के गोट स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा ता आपो सुनो संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, कलाकार थी पुष्पा हंस। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हिंदी में।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
8: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
9: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
7: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
10: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
9: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
10: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
9: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
10: आकाशवाणी से।
7: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपनिर्वाचन के लिए आज हुआ मतदान। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 52 रूपये और 5 किलोग्राम के सिलेंडर में 13.5 रूपये की वृद्धि की गई। और मौसम विभाग ने प्रदेश के 18 जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपनिर्वाचन के लिए आज मतदान हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 71 पदों के लिए 96 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच के कुल 151 पदों के लिए 274 मतदान केंद्रों पर 1,00,000 से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। नगरीय निकायों में मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराया गया, जबकि पंचायत चुनावों में मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतपेटी के माध्यम से हुआ। पंचायत चुनाव की मतगणना मतदान के बाद संबंधित केंद्रों पर ही चल रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों से खेतों में संतुलित खाद प्रयोग करने की अपील की।
1: हमको किसान भाई बहनों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। नंगा धुंध खाद मत डालो, अपनी मिट्टी का परीक्षण करवाओ और उसके बाद कौन से खाद की कितनी जरूरत है, संतुलित खाद डालो। उसे को खेती बदलनी है, बदलनी है मतलब ऐसी करनी है कि जिसमें किसान को ज्यादा आमदनी हो और ज्यादा फसल पैदा हो और खर्चा घटे। ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए।
0: इधर छत्तीसगढ़ में भी प्राकृतिक खेती और मृदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज से खेत बचाओ अभियान शुरू हो गया है। कृषि मंत्रालय के इस अभियान के तहत किसानों को प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और मृदा संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा। ग्राम पंचायत, विकास खंड और जिला स्तर पर कृषक संगोष्ठी, कृषि चौपाल और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कृषि वैज्ञानिक किसानों को रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव तथा प्राकृतिक खेती के लाभों की जानकारी देंगे। अभियान के दौरान किसानों को अपनी कृषि भूमि एक हिस्से में प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। साथ ही उर्वरकों की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं। होटल, रेस्तराओं और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देशभर में वृद्धि की गई है। राजधानी रायपुर में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 52 रूपये की बढ़ोतरी हुई है। अब यह सिलेंडर 3,346.50 रूपये में मिलेगा। वहीं 5 किलोग्राम के सिलेंडर के दामों में 13.50 रूपये की वृद्धि हुई है। अब यह सिलेंडर 882.50 रूपये में उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के तहत कोंडागांव जिले के ग्राम बड़े कनेरा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ज्ञान भारतम अभियान के तहत संरक्षित लगभग 150 वर्ष पुरानी उड़िया भाषा में लिखित प्राचीन पांडुलिपियों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने इन पांडुलिपियों को सहेज कर रखने वाले परिवारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि समाज की भागीदारी के बिना सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्ञान भारतम अभियान भारत की बौद्धिक विरासत को सुरक्षित रखने के साथ ही नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का प्रभावी माध्यम बन रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने कोंडागांव जिले के ग्राम पंचायत बड़े कनेरा में स्थापित अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण डिजिटल सुशासन के अभिनव मॉडल सेवा सेतु की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया। राज्यपाल रमन डेका ने आज लोकभवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में माना स्थित SOS बालिका गृह की बालिकाओं से संवाद किया। इसके साथ ही उन्होंने अंगदान और देहदान का संकल्प लेकर मानवता की सेवा का संदेश देने वाले 75 नागरिकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि समाज में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ने से कई जरूरतमंद लोगों को नया जीवन मिल सकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
2: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। लोक निर्माण विभाग ने मार्च 2026 तक स्वीकृत सभी कार्यों के लिए 30 जून तक निविदाएं आमंत्रित करने और 31 जुलाई तक कार्यादेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने आज सभी मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं और कार्यपालन अभियंताओं की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क परियोजनाओं को अगले वर्ष 31 मार्च तक पूरा करने तथा भू अर्जन से जुड़े मामलों का आगामी 3 से 6 माह में निराकरण करने को कहा। वहीं पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा ने नवा रायपुर में विभागीय कार्यों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को विकसित भारत अधिनियम के बारे में पूरी जानकारी देना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने 1 जुलाई से लागू होने वाले इस नए अधिनियम के प्रावधानों और नियमों की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाने को कहा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में नशा मुक्ति और जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। इसी कड़ी में सूरजपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभियान के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम, संगोष्ठियां और जनसंवाद आयोजित कर लोगों को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। थानों में नियुक्त पैरालीगल वॉलंटियर्स द्वारा विभिन्न स्थानों पर लोगों को तंबाकू सेवन से होने वाली गंभीर बीमारियों और सामाजिक दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों, महिलाओं और युवाओं को नशामुक्त समाज निर्माण की शपथ भी दिलाई गई। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुए एक सड़क हादसे में भिलाई के चंद्राकर परिवार समेत 8 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा साच पास मार्ग पर हुआ, जहां पर्यटकों से भरी एक कार करीब 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। मृतकों में भिलाई के एक दंपत्ति और उनके 2 बच्चे भी शामिल हैं। ये परिवार बेंगलुरु में रह रहा था। जुआ और सट्टा के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन अंकुश के तहत रायगढ़ पुलिस ने IPL फाइनल मुकाबले के दौरान ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालित करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, नोट गिनने की मशीन तथा सट्टे की रकम से जुड़े 31,99,000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सुकमा, बीजापुर, बस्तर सहित दक्षिण छत्तीसगढ़ के जिलों के साथ ही महासमुंद, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा सहित प्रदेश के 18 जिलों में तेज हवा के साथ वर्षा होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके चलते इन स्थानों में तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने धमतरी जिले में पुलिस की पाठशाला का लोकार्पण किया। पुलिस की पाठशाला में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़ी किताबें निःशुल्क उपलब्ध कराई गई हैं। सुशासन तिहार के तहत आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में आम जनता से अशिष्ट व्यवहार और कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में जनपद पंचायत दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रूपेश कुमार पांडे को निलंबित कर दिया गया है। रायगढ़ जिले में मांड नदी में डूबने से एक हाथी के बच्चे की मौत हो गई है। ये घटना खरसिया रेंज के अंतर्गत मांड नदी के गुर्दा गांव के पास की है। और कांकेर जिले की पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लगभग 33 लाख रुपए कीमत का चोरी का सामान और वाहन बरामद किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपनिर्वाचन के लिए आज हुआ मतदान। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 52 रूपए और 5 किलोग्राम के सिलेंडर में 13.5 रूपए की वृद्धि की गई। और मौसम विभाग ने प्रदेश के 18 जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7 बजे हैं, लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। आज का चित्रपट संगीत पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को समर्पित।

नसीब फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे कमलेश अवस्थी, अनवर और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल। अप्रैल फूल, लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

सूरज फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। गीतकार थे हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: AIR at 90.
1: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। राजकुमार फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। किसान साथियों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चौपाल।

0: राम राम चंपेश्वर भैया।
1: राम राम लाल जी भाई हो, संगे संग चौपाल सुनैया हमार जम्मू संगवारी मल्ल हलो हमार दोनों के
0: राम राम।
1: लाल जी भाई।
0: हाँ भैया।
1: कहाँ कहाँ चल देथस, अतका दिन हो गए, अतका दिन हो गए, बड़ भारी दिन बाद हमार मन के एक संगे दे गोड़ बात हुआ थे।
0: अब देख भैया, ऐसे है कि समय है, समय मिलाते कथे है ना, और ये मनमाने गर्मी में आदमी तो आदमी कोई जीव जंतु घलो नहीं निकलत है ना,
1: सिरतोन सिरतोन।
0: तो ये गर्मी देखत कोनो कोती आ जाए मन नहीं करे भैया, तेकर सेती आपसे मुलाकात गजब दिन बाद हुई से। अब ये थोड़ी वर्षा जहाँ हो ही तहान फिर गर्मी उमस ले परेशानी बढ़ जते, और यदि खेती किसानी के बेरा घलो हो गए हैं, और खरीफ फसल के तैयारी बिहनिया बेरा घंटा दो घंटा जाके साफ सफाई काटी काटा खुटी भी नहीं मेड़ पार के रचई चलत है भैया।
1: ये तो काम बुता हो गए, लेकिन यहाँ गर्मी चलत है तो खेत जाए के पहली मुला ये बता लाल जी भाई, बासी खाथस की नहीं
0: भैया? छत्तीसगढ़िया मनखे के जीवन है बिना बासी के तो अधूरा है भैया।
1: बासी ला इसने खा लेथस कि ओकर संग थोड़ा कुछ कुछ चीज मिला थस?
0: अब जब बासी कहे ना भैया, तो आमा के अथान है, छेज भाजी है और गोंदली है, ये मन हा आगू मा जाते, तो ये बासी है बगैर वो सब के अधूरा लागते हैं।
1: अब जब किसान है ये गर्मी में बासी के मजा लेके खेत जाते ना, और वो जो बासी के ऊर्जा है और बासी के जेन फायदा है, अब भाई वो कर तो फिर मजाच मजा है। तो कहे जाते ना कि वो लग खाए के बाद में पेट जुड़ा जाते कहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अब तो बासी ला नवा नवा तरीका नवा नवा उदीम कर करके घलो भाई दही डाल देवा थे, उमाओ कुछ जिनिस डाल देवा थे, तो ये जो हमारे छत्तीसगढ़िया खान पान है ओकर अलगे मजा है।
0: बिल्कुल भैया।
1: आओ जब ये जो 12 महीना काम लगे रहे थे, गर्मी है, किसान संगवारी के तो फिर बातें है, अलग अलग मौसम में अलग अलग बूता है, बरसा जाड़ा सबो बेरा हर किसानी के ही होते, और मानसून बरसा के अगोरा तो सबो लहे, जैसे ही बरसा होइस तहान पाक देख के जून के पहली हफ्ता में थरहा देवैया मन थरहा दीही, बीझा डरैया मन बीझा डारही, और धान के खेती के जोन बूता है शुरुआती बूता कांटा लग बिन डरेस बिल्ली खा के है ना, अब ये जोन बूता है वो शुरू हो ही। तो उकरे तो बात घलो हो जाते ना लाल जी भाई कि बीता थे पहर बीती ही पहर, बेरा कहाँ ले रुका थे, बेरा नहीं करे कखरो अगोरा यही बेरा कहा थे, और खेती में बेरा के बहुत महत्व है।
0: बिल्कुल सिरतोन बात है भैया, और का कहते कि यदि बेरा नहाक गए तो फिर पछताए से कोई फायदा नहीं है,
1: सिरतोन कहे।
0: और यदि जैसे अब पानी गिर ही अब देखत हन गुरु घरर के दिन बाद आ गए है ना, तो बोईता जो बोईया किसान संगी मन है वो मन है अगोरा करत है कि एक बरसा बरसीस तो बेरा आ गए कि बोईता धान बोए ऐसे करके। और वैसे भी खरीफ फसल में प्रमुख रूप ले हमार किसान संगी मन धान के ही खेती करते, संग में कतकोन संगी मन है जेमन हा सब्जी घलो लगाते और दलहन के भी खेती करते, और मुख्य बात ये हो जाते कि हमार खेती तभे बने रही भैया जब हम प्रमाणित बीज के उपयोग करबो।
1: बिल्कुल सही
0: है ना, और खाद के व्यवस्था करन खास तौर पे आजकल जैविक खाद के चलन है, तो हम किसान संगी मन यही कहो कि रासायनिक उर्वरक के कम ले कम उपयोग करके जैविक खेती को अपन ध्यान ला बढ़ावा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जैविक खेती को हमला हमार ध्यान ला ले जाना है, और मोला एक जिनिस के मैं आप ले चर्चा करत हूँ, वो टमाटर में वो जो हम पहली जो खुशबू देखत रहे,
0: खुशबू देखा
1: जो धनिया में वो खुशबू देखत रहे, जो दुरियाल पता चल जाए टमाटर की चटनी पिसावत है
0: ओकरे से भैया धनियाल कोनो चुराक नहीं लेके,
1: तब वो जिनिस जो नंदावत हवे आप लग इसे लागते वो
0: नहीं। ये तो बहुत जरूरी बात बोले भैया, टमाटर पहली टमाटर ला देखन नहीं तो लाल टपक जाए
1: हाँ।
0: और वैसने वाला खाएम भी आनंद आए
1: सिरतोन,
0: लेकिन आजकल के जो रासायनिक जो ये है काबर जनसंख्या बढ़त है और उत्पादन कम होते और संग में जो जल्दी बाजार में लाए के कारण से उन्हें आनी बानी के रसायन के प्रयोग है उकर जो कहना चाहिए वास्तविकता खत्म कर दे।
1: अब अब जैसे भी हो भाई साग भाजी लत खाना छे ओकर बिना बूता चले नहीं। फिर है अभी भिंडी लौकी हल्दी के खेती के घलो तैयारी करथन ओकर बुआई घलो शुरू कर देथन। आजकल बढ़िया बढ़िया तकनीक आगे है वो तकनीक के हमन प्रयोग करथन और अलग अलग माध्यम ले जेन भी हमर विशेषज्ञ मन के सलाह है उचित सलाह है वो सब माध्यम के उपयोग करके हमन हा खेती किसानी में आगू बढ़ाथन। कोनो कम समय में ज्यादा लाभ लेना है तो आजकल हरहुना किस्म के घलो आगे है चाहे धान हो मक्का रहे राहेर रहे मूंगफली रहे ओकर बुआई हम ये सीजन में करन। एकर बर विशेष कर दलहनी तिलहनी फसल या सब्जी के खेती करथन त खेत ला ढाल वाला बनावन जेखर ले अतिरिक्त पानी ह खेत में जमा झन हुए और नहीं तो फिर सड़े गले और बीमारी लगे के संभावना घलो बढ़ जाते वो पानी कारण।
0: हाँ हाँ बिल्कुल भैया का है बारिश के मौसम में देखेल मिलते साग सब्जी के धाम है ओकर रंग कस मनमाने चढ़ जाते हैं। और यदि हम बेरा रहत कोई एकर थरहा नर्सरी तैयार पहले कर लेवन तो बिल्कुल हमला जुलाई अगस्त में हमला जो सब्जी है वो मिल जही और सही समय में हमार सब्जी आ जाते हैं तो ओकर दाम घलो बढ़िया हमार किसान संगी मतलब मिल सकते हैं।
1: सहायक व्यवसाय के रूप में हमन एला लेथन हमार प्रमुख जो व्यवसाय है ओला करे पर कर्जा लेक जरूरत नहीं पड़े। हाँ ये सब हम करा था तो साग भाजी ले बेचन नगदी हमला पैसा मिला थे वो हम हमार आगू खेती के जो काम होता है ते में लगावन और जैसे कि एकर अब तैयारी घलो हो अब तैयारी पर भाई कहना चाहिए कि बीज के चयन सही ढंग ले होना चाहिए बीजोपचार हम करन ये सब जो प्रयोग है और फफूंद नाशक दवाई के उपयोग करन जेन हाँ बीजा ला माटी के जो रहिया दीमक या फफूंद ले लड़े के क्षमता ला बढ़ावे संगे संग फसल के शुरुआत में लगैया रोग राई के संभावना हर घलो कम हुआ ऐसा ढंग ले हम तैयारी करन।
0: अब भैया इसे है कि जब हम खेत के तैयारी करत हन चाहे सब्जी खेती हो चाहे धान के खेती हो पहली के तो आप मालूम है भैया गाड़ा में खातु पालन और ओकर जो असर है माटी में भरपूर रहा है और वो प्राकृतिक खेती के आनंद जो है चाहे अनाज हो चाहे सब्जी हो उसमें मिले। आज भी कतकोन संगी मन है रासायनिक उर्वरक ले हट के गोबर खातु बना थे कंपोस्ट खाद बना थे और ओकर प्रयोग करत हैं। हम किसान संगी मन ऐसे कहो कि ये खातु ला जैविक खातु ला बढ़िया मिलाए और बढ़िया से जुताई करें ताकि माटी में मिल जाए
1: तो भाई पताल के वही खुशबू धनिया के वही खुशबू ममहासी और मिर्चा के वही ममहासी पाना है तो प्राकृतिक जो खेती है वो कोती हमला लहुटना है। अब हमार संगवारी मन उदाहरण घलो है भाई हमार किसान संगवारी मन ऐसा ढंग ले खेती घलो करत है तो संगवारी हो खेती हमार महान है सेवा जिला किसान खेती ले सबो जिनी से खेती ले है हमार मान।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
0: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
0: 47 बच्चर ले सब लग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
2: लाल जी भाई।
3: हाँ भैया।
2: गुड बात है, गुड बात सन जानकारी है, जानकारी सन हमर मन के गीत संगीत के घलो पारी रथे। तो भाई ऐसे है कि जग भर मनाव जगावत है, जेकर जस अमृत बरसावत है, अमरैया कुआं बारी मकारी कोयली घोरावत है, जय हो छत्तीसगढ़ दाई, तोर धजा गजब लहरावत है, पर्वत मात नमावत है और नदिया चरण पखारत है।
3: तो भैया आपके भाव ले जुड़े ये गीत सुनथन, जिला स्वर दे कुलेश्वर ताम्रकार और साथी मन।

0: ओला कैसे ढंग से हम उकर प्रयोग ले बाचन और हमर जो माटी है उकर सेहत ले हम कोर से रिकिम ले सुधारन और कैसे ढंग ले हम प्राकृतिक खेती ले बढ़ावा देवन। अच्छा एकर बर ऐसे है कि सबले पहली तो हम ये जानेल पड़ी कि हमर माटी के जो उपजाऊता है या पोषक तत्व है वो कतेक है, तो एकर बर जो हमर कृषि वैज्ञानिक मन है एमन गांव गांव जा करके जो माटी है ओकर जांच करत है और वो में कतेक खाद और उर्वरक के आवश्यकता है एकर घलो सलाह देते हैं। अब इमें इसे भैया यदि हम ला सही जानकारी मिली तो निश्चित रूप से लागत में कमी आई और एति ओती के जो आनी बानी के उर्वरक वो खाद हमन छीटत रहें जेकर ले हमला कहना चाहिए लागत में बढ़ोतरी से एकर ले भी बचेल मिली।
1: ये अभियान के उद्देश्य तो बड़ बढ़िया आप बताते छो, एमा कुछ एक जिनिस में जोड़त हूँ लाल जी भाई, प्राकृतिक खेती में बड़ जोर देवत है और किसान संगवारी मन प्राकृतिक खेती हरी खाद जैविक उर्वरक के उपयोग पर प्रोत्साहित हो ते नाम से ये जो योजना है वाला चलाया जाते और भाई जो योजना है वाला तो छोड़े नहीं जा सके, ते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसान क्रेडिट कार्ड KCC और फसल बीमा योजना जिसे सरकारी योजना के लाभ किसान मन तक सुनिश्चित करे जा किसान मन तक पहुँचाए जा संगे संग मौसम के अनुकूल फसल जैसे पानी के बचत करैया फसल है फसल के विविधीकरण है ये सब उद्देश्य ले लेके आओ प्रमुख रूप ले हमार जो जैविक खेती है वो कोती ले हम लौटन ये कर उद्देश्य है। तो हमर मन के चर्चा घलो सर लगा हिच में चला था और किसान संगवारी मन ये सब उदिम ला अपनावत घलो है, हालांकि तकनीक के युग है रकम रकम के खातू के युग है लेकिन भाई जैविक जो खेती है जैविक खाद है ओकर जो विशेषता है वो तो फिर विशेष रही।
0: अब भैया इसे है देख कि जोन भी फसल है एकर बर हम जैविक के इस्तेमाल करत हन और एकर संगे संग बात आते कि हमर जो स्वास्थ्य है एकरो बर यदि हम जो पुराना आयुर्वेद है ना एकर उपयोग करन। अब एकर उपयोग कैसे करबो तो एकर ले जुड़े हुए जो पौधा है जेल हम जानथन जरूर लेकिन ओकर महत्व नहीं समझ पान।
1: पेड़ लगाए के जो बात एमा में जोड़ा था अब अभी ऐसे हो गए कि गर्मी के मौसम घलो है तो अतका अकन जो पौधा है ओला एक उचित मार्गदर्शन ले माटी पानी के हिसाब ले लगाना है। एकर अलावा मैं देखता हूँ कि खेत के मेड़ है तरिया के पार है नदिया कछार है भाई अतका बाढ़त गर्मी है और बाढ़त गर्मी में हमला का चाहिए भाई ठंडा पानी चाहिए और शीतल छइया चाहिए और ये कोनो रद्दा रेंगैया मिल जाए तो का बात है। तो जो प्रकृति कोती लहुटना हमला ज्यादा जरूरी है भाई, गमला तो घर में गमला लगाना है फिर जमीन देख के बने बने पेड़ पौधा लगाना है और लगाना ही नहीं है पेड़ लगावन और पेड़ लगा के जतन करन। आप औषधि पौधा के बात करत रहे हो तो मुला लगते कि आज के सलाह में घलो वही बात आबे।
0: हाँ तो भैया आज के सलाह में सुनथन औषधि पौधा के खेती जेकर विशेषज्ञ है डॉक्टर सत्य प्रकाश विश्वकर्मा सहायक प्राध्यापक वानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र साकरा पाटन दुर्गले। किसान संगी हो हमन अपन परंपरागत खेती ल तो करबे करथन संग में अतिरिक्त आमदनी बर औषधि पौधा के खेती करन तो ये हर हमर बर लाभ के हो सकते। आज हमन जानबो औषधि पौधा के खेती ले अतिरिक्त लाभ और ये विषय में जानकारी दे खातिर हमर बीच विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश विश्वकर्मा सहायक प्राध्यापक वानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र सांकरा पाटन दुर्गले। डॉक्टर साहब के हमर कार्यक्रम में स्वागत है, राम राम।
2: राम राम किसान भाइयों।
0: सबले पहली ये बताते हो सर कि ये औषधि पौधा का होते?
2: औषधि पौधा वो होता है जो बीमारियों के लिए उपयोग में लाते हैं उसके इलाज करने के लिए दवाई बनाने के लिए उसका जड़ हो गया बीज हो गया बहुत सारे जो पत्ते का भी इस्तेमाल करते हैं।
0: हमार किसान संगी मतलब एक खेती काबर करना चाहिए बताते?
2: इसका खेती जैसे बहुत सारे जैसे अश्वगंधा हो गया तुलसी हो गया सर्दी बुखार कमजोरी हो गया तनाव शक्तिवर्धक दवाई बनाने में इन सब चीज़ों के लिए विटामिन सी की कमी त्वचा में अगर कोई बीमारी है तो एलोवेरा जैसे पौधे इन सब के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए औषधि पर्पज के। जो आजकल हमारे यहाँ परंपरागत खेती है उसमें ये औषधि पौधा उगाकर उसमें

0: जो है आप अपना आमदनी डबल करने के पर्पस से इसका खेती कर सकते हैं और अधिक से अधिक जो है इसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं, मुनाफा मिल सकता है हमको।
1: हमर किसान संगी मन यदि एकर खेती करना चाहते हैं तो उकर शुरुआत कैसे ढंग ले करना चाहिए और कौन से भुइयां में करना चाहिए ला बताते हैं।
0: भुइयां की बात करें तो बलुई दोमट या रेतीली दोमट, अलग अलग औषधि पौधा के लिए अलग अलग मिट्टी है। जैसे आप सफ़ेद मूसली करेंगे उसमें बलुई दोमट की जगह रेतीली दोमट अच्छी मानी जाती है, और अश्वगंधा हो गया, तुलसी हो गया, तो इन सब के लिए बलुई दोमट उचित माना जाता है। कम पानी में हो सकता है और गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में, जैसे कि छत्तीसगढ़ आप मानते हैं कि उष्णकटिबंधीय मानसून के लिए जाना जाता है, और यहाँ वर्षा अधिक होती है और सर्दी हल्की होती है, तो यहाँ पे इसके लिए इन सब औषधि पौधों का खेती आसानी से अच्छे तरीके से उगाया जा सकता है।
1: ये तो बहुत बढ़िया बात बताओ डॉक्टर साहब कि हमारे जो छत्तीसगढ़ के जलवायु है ओकर हिसाब से आप जो बताते रहे हो एमन तो लाभ के है, ओकर अतिरिक्त और कौन कौन से ऐसे पौधा है जो हमारे छत्तीसगढ़ में आसानी से उगाए जा सकते हैं और ओकर लाभ हमारे किसान संगी मन ले सकते हैं।
0: पहले तो अश्वगंधा हो गया, तुलसी, काल मेघ, गिलोय, सफ़ेद मूसली, सर्पगंधा, आंवला, एलोवेरा, ब्राह्मणी, ये सब ऐसे पौधे हैं जो छत्तीसगढ़ में आसानी से उगाए जा सकते हैं। इनके लिए आसानी से उगती हैं कम पानी में और नम जलवायु वाली जगह पे।
1: जैसे अमर किसान संगी मन औषधि पौधा के खेती को यदि रुझान बढ़ाना चाहते तो सबले पहली बात आते हैं उकर बीज के, तो ये बीज कहाँ ले मिलही और एकर खातिर कोनो प्रकार के शासकीय अनुदान मिलते कहाँ?
0: हाँ, इसका बीज जैसे आप यहाँ पे रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ से ले सकते हैं, यहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से ले सकते हैं, और दूसरा है नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, वहाँ से भी आप जो है नर्सरी से पौधे प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ वन विभाग में भी इसका नर्सरी तैयार किया जा सकता है और वहाँ से भी आप संपर्क करके इसका बीज प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो नर्सरी में जैसे पौधा उगा करके सीधा हमला पौधा भी मिल सकते का?
0: हाँ, मिल जाता है। सरकार इसमें जो है 30-70% तक अनुदान देती है। हाँ। जैसे आपका नेशनल आयुष मिशन हो गया, वो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बताया आपको, वहाँ से राज्य औषधि बोर्ड जो है पादप बोर्ड, वहाँ से इसको सब्सिडी मिल सकता है किसान भाई को 30-70% तक।
1: तो एकर खेती करे में मतलब अनुदान है जो है बहुत फायदा के रहे।
0: हाँ।
1: डॉक्टर साहब तो ये कितना कन बीज के प्रयोग और कितना मात्रा में करना चाहिए इला बताते हो?
0: अश्वगंधा की खेती के लिए जो बीज दर की मात्रा है, 1 हेक्टेयर में 6 से 8 किलो बीज कतार में बुआई के लिए एवं छिड़काव के लिए 10 से 12 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। छिड़काव विधि के लिए बीजों को इसकी बीज दर से 6 से 8 गुना बारीक छनी हुई मिट्टी के साथ मिलाकर किसान भाई को इसकी बुआई करनी चाहिए।
1: एलोवेरा खेती की शुरुआत हम कैसे प्रकार से कर सकते हैं नेला बताते हैं।
0: एलोवेरा खेती के लिए अत्यधिक ठंड की आवश्यकता नहीं होती है, ये ऐसा नहीं है कि जहाँ ठंडी हो, ठंडा जगह हो वहाँ पर इसका खेती नहीं करना चाहिए, वहाँ अच्छा नहीं हो पाता। इसके लिए रेतीली दोमट मृदा जो बताया मैं आपको, वहाँ पे ये इसकी अच्छी मिट्टी उपजाऊ मानी जाती है, यहाँ पे इसका खेती करना चाहिए।
1: औषधि पौधा के जैसे हम खेती करत हैं तो कोनो भी खेती हो सिंचाई प्रबंधन बहुत जरूरी होते हैं, तो हम औषधि पौधा के सिंचाई खातिर हमला का ध्यान रखना चाहिए और के बार सिंचाई के ज़्यादा जरूरत पड़ते हैं बताते हो?
0: सिंचाई जैसे आप अश्वगंधा की बात करें तो इसके लिए ज़्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं है, बारिश वाले दिन में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब बारिश नहीं हो रही है तब उस समय 10 से 15 दिन में एक बार सिंचाई कर देना चाहिए, पहली सिंचाई 30 से 35 दिन बाद और दूसरी जो है 60 से 70 दिन बाद करना चाहिए, जो कि जीवन रक्षक सिंचाई बोला जाता है।
1: जैसे ये तो सिंचाई के बात हुई डॉक्टर साहब, और जैसे हम खाद उर्वरक के बात करें तो कौन कौन से खाद कब कब और कितना मात्रा में डालना चाहिए ला विस्तार से बताते हो?
0: देखिए औषधि पौधों के लिए तो बहुत खाद की आवश्यकता नहीं होती है, इसको गोबर की खाद हो गया, सड़ी गोबर की खाद 10 टन या 1.5 टन, वर्मी कंपोस्ट हो गया, कम से कम नाइट्रोजन जैसे 30 kg, फास्फोरस 20 kg और पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसको देना चाहिए। औषधि पौधा है तो इसमें बहुत ज़्यादा हम जोर नहीं डालते हैं आपका केमिकल वाले चीज़ पे, तो सड़ी गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट जैसे खाद ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं।
1: तो ये जिसे आप जो पौधा के नाम बताते रहे हो ये है जब उगाथन हम मेला तो इसमें का का रोग लगते हैं और एक देखभाल हमला कैसे करना चाहिए और रोकथाम खातिर करना चाहिए का प्रयोग करना चाहिए ला बताते हो?
0: देखिए सभी पौधों में अपना अलग अलग बीमारी लगता है, लेकिन हम सर्पगंधा की जैसे बात करें तो उसमें पौधे का गलना या मुरझाना ये एक बीमारी है जो कि नए पौधे को पूरा नष्ट कर देते हैं। इसकी बीमारी की रोकथाम के लिए बीमारी रहित बीज का उपयोग करना चाहिए। और दूसरा है इस पे पत्ते पर धब्बे पड़ना। इस पे ये फंगस और विषाणु की वजह से होता है, ये बहुत तेज़ी से बीमारी फैलती है। ये 30 दिन बाद इसमें डाइथेनम 45 एक लीटर पानी में मिलाकर उस पर स्प्रे कर दे तो ये बीमारी 15 दिनों में रहता है। और दोबारा इसमें जो स्प्रे है 15 दिन बाद वो कर देना चाहिए।
1: तो जैसे कि हम सबो प्रकार से अपन तैयारी करें, हमारे फसल तैयार हो गए तो कर कटाई और भंडारण ये कौन सी रिकम करना चाहिए बताते हैं।
0: अश्वगंधा की बात करें तो ये 160 से 180 दिन में तैयार हो जाता है। और इसका जब पत्ते सूख रहे होते हैं और इसका जो फल लाल संतरी रंग का दिखने लगे तब इसका कटाई करना चाहिए। कटाई हाथों के द्वारा उसको उखाड़ कर या मशीन द्वारा उखाड़ा जाता है जिससे उसकी जड़ों को नुकसान न पहुँचे।
1: अब जैसे कि हम फसल लाड रहे हमला जिसे बाजार में बेचना है, कहाँ बेचना उचित रही या एकर लिए का व्यवस्था रहते है बताते हो।
0: बाजार व्यवस्था में जैसे देखा जाए तो इसका दवाई जहाँ पे बनता है औषधि दवाई वहाँ पे ज़्यादा मांग रहता है। और स्थानीय मंडी हर जगह का है, जैसे बिलासपुर में कोई खेती कर रहा है तो वहाँ जैसे एलोवेरा हो गया, सुगंधा हो गया, सब भारी मात्रा में औषधि पौधे उगाए जाते हैं तो वहाँ की जो लोकल मंडी है वहाँ किसान भाई को संपर्क करके वहाँ सेल करना चाहिए। और ऑनलाइन या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू आप जो है अपने प्रोडक्ट को बेच सकते।
1: डॉक्टर साहब अभी आप बहुत सुघर अकन जानकारी देवत रहे हो, एकर अतिरिक्त हमारे किसान संगी मतलब और का कहना चाहो औषधि पौधा के खेती के बारे में।
0: इसके बारे में यही किसान भाई को बताना चाहता हूँ कि किसान के पास बहुत सारे बंजर जगह खाली रहते हैं जहाँ पे वो खेती नहीं करता है या कुछ फसल नहीं उगा पाता है। तो ऐसे जगह पे जो पेड़ के नीचे हैं, जगह खाली हैं, तो वहाँ नम जलवायु वाले जो पौधे हैं उनको वहाँ लगा दें। जैसे हल्दी हो गया आपका, एलोवेरा हो गया, इन सबको ज़्यादा धूप की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये नम जगह पे आसानी से उगाए जा सकते हैं, पेड़ के नीचे छायादार वृक्ष के नीचे ये हो सकता है। तो किसान भाई वो जो उनकी जगह जिसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे औषधि पौधे लगाकर फसल के साथ साथ या वृक्ष फल वृक्ष के साथ साथ वो अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर सत्य प्रकाश विश्वकर्मा जी आप हमर बिचाए हमर किसान संगी मल्ला औषधि पौधा ले जुड़े अतेक सुघर जानकारी देव ये खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
2: भाई, बड़ बढ़िया जानकारी अभी हमन क्रम आज की सलाह में पाए हमन। औषधीय पौधों की खेती विशेषज्ञ डॉक्टर सत्य प्रकाश विश्वकर्मा सहायक प्राध्यापक वानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र साकरा पाटन दुर्ग ले। लाल जी भाई कतका बढ़िया कहान की लाभ के बात है बेमा कि औषधि पौधा ले हमार स्वास्थ्य ले संबंधित अलग जो लाभ है ओकर बारे में, व्यावसायिक लाभ अलग हवे, हर तरह से लाभे लाभ है। तो हम तो कथन प्रकृति के साथ जुड़े ले कोनो प्रकार के नुकसाने नहीं है। ये देखो ये हमार सब विशेषज्ञ मनाते अब आके सब बात ल फरिया फरिया के बताते। और ऐसने जब हमार सब्बो कार्यक्रम ल सुनते हमार किसान संगवारी मन है, हमार श्रोता संगवारी मन है, त लाभान्वित घलो होते। और सब कार्यक्रम ल ध्यान से सुने हैं ओला हमन कब जानथन,
1: जब क्रम होते कृषक प्रश्न मंच।
2: हाँ तो कृषक प्रश्न मंच हमन करथन ओकर सही उत्तर लोगन पठोते घलो। तो आज के कार्यक्रम ला आप मन ध्यान लगा के सुने हो तो फिर लाल जी भाई है पूछत प्रश्न ल।
1: तो संगवारी हो लिखाओ आज के प्रश्न ल कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख औषधि पौधा के नाम बताओ। प्रश्न एक घाव सुन लेवो, छत्तीसगढ़ के प्रमुख औषधि पौधा के नाम बताओ। और आप मन आएला हमार ईमेल आईडी के माध्यम से भेजू राय आज के प्रश्न 23@gmail.com में। और आज के दिन तक आप मन के जवाब के अगुरा रही। ऐसने पाछू हफ्ता आजे के दिन पूछे गे रही से कि दूध प्रसंस्करण ले कौन कौन से जीनिस या उत्पाद बनाए जा सकते, जेकर सही जवाब रही से दही, मट्ठा, घी, पनीर, मिठाई, आइसक्रीम, रबड़ी, चॉकलेट। और सही जवाब भेजैया ये संगी मन है गांव तेंदुभाठा मगरलोड जिला धमतरी ले उमेन कुमार निषाद, मोहेश्वरी, देविका, पोषण, नूतन, सुरेंद्र, यशस्वी, भास्कर, किशन, भूपेश, दिव्यांश, शिवा निषाद, ग्राम फुलझर घटारानी जिला गरियाबंद ले। योगेश्वर साहू, डुमेश्वरी, यामिनी, मुस्कान, हर्षिता साहूमन, परसा टोला, अंबागढ़ चौकीले, ओम प्रकाश मसिया, तुषारनी, सिलोचनी, खुमेंद्र मसिया, लोरमी ग्राम चचेड़ीले, कमलकांत मरावी, प्रमिला, नेहा, पुष्पराज, ऋषभ मरावी, आर्यनगर, कोहका, भिलाईले, उत्तम सिंह जंघेल, मोरस, अनिल, अजीत, आयुष और नंदनी जंघेलमन। आप मन सही जवाब भेजो ये खातिर जम्मो झनला गाड़ा गाड़ा बधाई।
2: बधाई है। और ऐसने आप मन हा आज के जिन हमन प्रश्न पूछे हन तेकरो उत्तर ला भेजू और इसने अपन नाम ला शामिल करवाऊ संगवारी हो। और अब मोर हाथ में है सूचना।
1: बिल्कुल भैया।
2: और सूचना है काली के, तो श्रोता संगवारी हो, आगामी मंगलवार 2 जून 2026 के प्रसारित होवैया हेलो किसानवाणी कार्यक्रम की विषय रही खेती के लागत घटाए लाभ बढ़ाए नैनो और थानेदार खाद के विवेकपूर्ण उपयोग। एमा दानेदार खेती के लागत घटाए लाभ बढ़ाए नैनो और दानेदार खाद के विवेकपूर्ण उपयोग, ये विषय में आपके समस्या और जिज्ञासा के समाधान खातिर हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ रही श्री दिनेश गांधी, उप महाप्रबंधक इफको रायपुर। आप अपन जिज्ञासा और शंका के समाधान पाए खातिर हमन ल फोन कर सकत हो। हमार फोन नंबर है 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर के एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग 2 जून 2026 के 11:30 ले 12 बजे तक करे जाही, माने काली मंगलवार 2 जून 2026 के 11:30 ले 12 बजे तक करे जाही। ये कार्यक्रम के प्रसारण मंगलवार के सांझ के 7:30 में हुई संगवारी हो। आप मतलब विषय एक पैत और बता देता हूँ। विषय रही काली के खेती के लागत घटाए लाभ बढ़ाए नैनो औ दानेदार खाद के विवेकपूर्ण उपयोग। तो संगवारी हो आप मन ज़्यादा ले ज़्यादा हमन ला फोन करो, ऐसे हमन हाँ उम्मीद रखा थन। और ये जोन सूचना है यही मेर सुरा सिरावत हवे
1: भैया। ये तो बहुत सुग्घर अकन सूचना रही से जेकर माध्यम से हमन अपन किसान संगी मन से जुड़थन। और अब बेरा हो गए है गीत संगीत के।
2: अब गीत संगीत के बेरा है त मुरकर भाव घलो है।
1: हाँ भैया,
2: काम बूता है तो काम हमला सिर्फ करना है। लाल जी भाई, काम हमला सिर्फ करना है, मेहनत ले पाछू नहीं हटना है। मिल ही एक दिन जेन खोजा थन गवाही कहाँ, वो तो मिलना है। और भाग तो भाग है, मेहनत तो मेहनत हरे।
1: और एक किसान संगी मन है बिल्कुल सबके भाग जगते जब खेती किसानी बूता चालू होते। तो सुनथन गीत जिला स्वर दे ओम ठाकुर हर।

0: ओम ठाकुर के स्वर में बड़ सुघर गीत सुनें, बड़ा अच्छा लागी संगवारी हो।
1: भैया गोट बात करत अब होते जाए के बेरा, तब बता देथन काली के कार्यक्रम, काली संझा चौपाल में आज के बात के संग क्रम हुई हेलो किसान वाणी, और गीत संगीत तो होबे करी भाई, तो देवा विदा जम्मो श्रोता संगी मल्ला लाल जी
0: चंपेश्वर के राम राम।

किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात के ठीक 8 बजे हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

100 डेज। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में। गीतकार थे दिलीप ताहिर, संगीतकार राम लक्ष्मण। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में लीजिए सुनिए दाग द फायर। इस फिल्म का गीतकार हैं समीर, संगीतकार राजेश रोशन।

चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से। उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाजों में लीजिए सुनिए दिल तो पागल है इस फिल्म का गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार उत्तम सिंह।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। कलाकार हैं कुसुम बड़ौदकर।

0: कुछ यादें अतीत की।
1: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
0: कुछ बातें वर्तमान की।
2: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ, रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
0: कुछ सपने भविष्य के।
3: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
0: कुछ किस्से अनकहे।
4: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
0: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
5: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, कलाकार थी कुसुम बड़ौदकर। मीडियम व्यू 305.81 मीटर अर्थात 981 किलो हर्ट्स और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। WTT फेडर टेबल टेनिस में दिव्यांशी भौमिक ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए महिला सिंगल्स का खिताब जीता। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार IPL का खिताब जीता, फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 22वीं एशियाई U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी। भारतीय पुरुष टीम ने U18 हॉकी एशिया कप में कोरिया को 4-1 से हराया और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कल से शुरू। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भारत का नेतृत्व करेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं टेबल टेनिस से, जहां दिव्यांशी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। WTT फेडर टेबल टेनिस में भारत की दिव्यांशी भौमिक ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए महिला सिंगल्स का खिताब जीता। आइए जानते हैं उनके प्रदर्शन के बारे में।
1: दिव्यांशी भौमिक 15 वर्ष की आयु में टेबल टेनिस प्रतियोगिता में सिंगल्स खिताब जीतने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गई हैं। विश्व रैंकिंग में 211वें स्थान पर काबिज दिव्यांशी ने फाइनल में चीनी ताइपे की विश्व नंबर 38 ये यी तियान को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से पराजित किया। वे जापान की स्टार खिलाड़ी मीवा हरिमोतो के बाद WTT फीडर सर्किट में महिला सिंगल्स खिताब जीतने वाली दुनिया की दूसरी सबसे युवा खिलाड़ी मानी जा रही हैं। दिव्यांशी ने अपने शानदार अभियान में एक और स्वर्ण उपलब्धि जोड़ते हुए महिला डबल्स वर्ग का स्वर्ण पदक भी जीता। दिव्यांशी ने सिंड्रेला दास के साथ मिलकर जापान की साची आओकी और कोकोना मुरामात्सु की जोड़ी को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराया। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
0: अब सीधे रुख करते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर, जहां डिफेंडिंग चैंपियन ने टाइटल डिफेंड करते हुए शानदार जीत दर्ज की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने IPL का खिताब लगातार दूसरी बार जीता, फाइनल में RCB ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया। आइए सुनते हैं विशेष शुक्ला की खास रिपोर्ट।
2: फाइनल मुकाबले में टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस 8 विकेट पर 155 रन ही बना सकी। पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले गुजरात के सलामी बल्लेबाज कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन इस अहम मैच में फ्लॉप रहे। सुदर्शन 12 और गिल 10 रन बनाकर आउट हुए। GT की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर एकमात्र सफल बल्लेबाज रहे। सुंदर ने नाबाद 50 रन की पारी खेली। रसिक सलाम डार ने 27 रन देकर सर्वाधिक 3 विकेट लिए। 156 रन के लक्ष्य के जवाब में वेंकटेश अय्यर और विराट कोहली ने RCB को तेज शुरुआत दी और 5वें ओवर के भीतर 62 रन बना दिए। अय्यर ने ताबड़तोड़ 32 रन की पारी खेली। 89 रन पर 3 विकेट गवा देने के बाद विराट कोहली ने एक छोर संभाले रखा और 25 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। यह विराट का IPL में सबसे तेज अर्धशतक था। विराट ने 42 गेंदों पर 3 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 75 रन की पारी खेलकर RCB को 5 विकेट से जीत दिलाने और लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई। कोहली ने 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर RCB को चैंपियन बनाया।
3: That's it. He finishes off in style with a 6. It's back-to-back titles for RCB. They won it after 18 years. They win it in the 19th.
2: RCB ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 161 रन बनाकर खिताब जीता। फाइनल में विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच के बाद विराट कोहली ने कहा कि मैं इसी तरीके से मुकाबले को अपनी टीम के लिए जिताना चाहता था।
4: Well, Virat, many congratulations yet again a player of the match. You saved the best for the last.
5: It's stuff that you dream of. I've thought of this moment many times that you know once when we win the IPL I should be standing there hitting the winning runs and tonight it was possible. So yeah, just a dream day for us and as I mentioned straight after the game as well. We just felt really relaxed coming to the game today and really confident about how we wanted to go about our game and what kind of team we have and you, that gives you confidence to just, you know, see any kind of situation through. But yeah, in a chase, I felt really comfortable out there knowing exactly what to do.
2: 2025 mein RCB ne Punjab Kings ko hara kar IPL ka pehla khitab jeeta tha. Rajat Patidar ki kaptani mein Bengaluru ne lagatar dusri bar khitab jeet kar Chennai सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के एलीट ग्रुप में शिरकत कर ली है।
5: सो दिस वन इज फॉर यू अगेन आरसीबी फैंस। ई साला नु कप नमदू।
2: वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। प्रतियोगिता में सबसे अधिक 776 रन बनाने के लिए वैभव को ऑरेंज कैप से भी नवाजा गया। वैभव ने सबसे अधिक 72 छक्के लगाए और उन्हें सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन के साथ साथ इमर्जिंग प्लेयर का भी अवार्ड मिला। अवार्ड लेने के बाद वैभव ने कहा, इस प्रतियोगिता से मेरे खेल में बहुत सुधार हुआ है।
6: इस सीजन सर प्रेशर्स के गेम में कैसे खेलना है, अपने गेम को कब किस तरीके से चेंज करना है? हर गेम में आप एक मोड से नहीं खेल सकते, आपको गेम के सिचुएशन को रीड करके खेलना पड़ेगा और टीम का क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग खेलना पड़ेगा। तो ये चीज काफी सीखने को मिला प्लेऑफ्स के गेम्स में भी।
2: 17 वर्ष तक आईपीएल खिताब का इंतजार करने वाली आरसीबी का यह लगातार दूसरा खिताब है। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उत्कृष्ट प्रदर्शन भारत के युवा एथलीटों के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्टता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस उपलब्धि से आने वाले वर्षों में और भी भारतीय युवा इस खेल में भाग लेंगे। गृह मंत्री ने बधाई देते हुए कहा कि खिलाड़ियों की उपलब्धि भारत की अपार खेल प्रतिभा का प्रमाण है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेल क्षेत्र में लगातार प्रगति हो रही है और युवा शक्ति ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। भारत ने हांगकांग में आयोजित हुई 4 दिवसीय प्रतियोगिता में 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 19 पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया। चीन 14 स्वर्ण, 9 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ पहले, वहीं जापान 5 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य के साथ तीसरे स्थान पर रहा। और अब रुख करते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। इंडोनेशिया के जकार्ता में कल से इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भारत का नेतृत्व करेंगे।

0: खेलेंगी। अन्य भारतीय खिलाड़ियों में मालविका मंसूर का सामना थाईलैंड की सातवीं वरीयता प्राप्त पोर्नपावी चोचुवोंग से होगा, जबकि उन्नति हुडा को पहले दौर में जापान की विश्व की नंबर 12वीं खिलाड़ी नोजुमी ओकुहारा जैसी मजबूत प्रतिद्वंदी मिली है। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले मुकाबले में इंडोनेशिया के अलवी फरहान से भिड़ेंगे। वहीं किदांबी श्रीकांत का सामना जापान की युशी तनाका से होगा। आयुष शेट्टी का मुकाबला चीन के वेंग होंग यांग से होगा, जबकि एचएस प्रणॉय आयरलैंड के एनट के खिलाफ चुनौती पेश करेंगे। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा कृष्टो के साथ रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद इंडोनेशिया की फेब्रियाना द्वीपजी कुस्मा और मेलिसा ट्रियास पुष्पिता सारी के साथ खेलेंगी। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: अब बात कर लेते हैं हॉकी की। पुरुष अंडर 18 हॉकी में आज एशिया कप के पूले मुकाबले में कोरिया को 4-1 से हराकर भारत ने शानदार जीत दर्ज की। कप्तान केतन कुशवाहा के 2 गोल किए। कुशवाहा ने तीसरे और 36वें मिनट में गोल दागे, जबकि वरिंदर सिंह ने 5वें और शाहरुख अली 54वें मिनट में 1-1 गोल किया। भारत अब 3 जून को अपने अंतिम पूले मुकाबले में चीनी ताइपे से भिड़ेगा। अब रुख कर लेते फुटबॉल की ओर। भारत ने महिला SAFF फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय टीम ने कल गोवा के मारगांव स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-0 से हराकर चैंपियनशिप के ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। वहीं 11 जून से शुरू होने वाला फीफा फुटबॉल विश्व कप का प्रसारण भारत में जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड करेगा। जी ने टूर्नामेंट से 10 दिन पहले आज फुटबॉल की विश्व संचालन संस्था फीफा के साथ 8 साल की भागीदारी की घोषणा की। रांची में आयोजित हुई फेडरेशन कप में 100 मीटर फ्रीस्टाइल दौड़ स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर ने कल मन की बात के 134वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने प्रतियोगिता में हुई कठिनाइयों और संघर्ष के बारे में जाना।
2: सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है। 100 मीटर रेस में दौड़ना कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया। तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
3: जी सर, मैं गोविंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
2: अनिमेश जी।
4: सर, मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है, तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर, ये सारी चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
2: अच्छा, देखिए मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा। मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
4: सर जी, पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर वीर ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही। उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कॉम्पिटिशन करने के लिए, तो वहां भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहां भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया

0: किस पेंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
2: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था भी अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कॉम्पिटिशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना वो देश का मान बढ़ाने के लिए की, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
2: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका सर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया है। और श्रोताओं अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
5: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
4: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमा के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। I am confident that this

0: कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट।
1: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
2: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनेरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
2: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
1: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों की विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: कर लेते हैं।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
2: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
1: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-10481 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
5: वैली 1 जून से 31 ऑफ अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
3: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U May Aung Hlaing hold talks in New Delhi, emphasize upon preventing misuse of their territory against each other's security interests. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement becomes effective, giving duty-free access to Indian exporters on 98% of Oman's tariff lines. India and Australia to enhance defense industrial collaboration in futuristic technology research. Malaysia joins countries banning social media use by children below 16. And orange alert for thunder squall issued for Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh till tomorrow. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U May Aung Hlaing held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
6: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
0: Mr. Misri said both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan Multimodal Transit Transport Project.
6: Both sides expressed an interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, in development cooperation, in health, in education, in energy. Both sides underlined the importance of connectivity for people-to-people contacts and agreed to work as quickly as possible towards the completion of the Kaladan Multimodal Transit Transport Project, as well as the Kalewa-Yaji segment of the India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway.
0: President Draupadi Murmu has said Myanmar is an important partner in India's Neighbourhood First, Act East and Mahasagar policies, welcoming Myanmar President U Min Aung Hlaing at Rashtrapati Bhavan today. President Murmu said both the countries share deep cultural, civilizational and spiritual ties that go back to centuries. The President said Myanmar is India's gateway to Southeast Asia, as it is the only ASEAN country that shares a land border with India. Congratulating President Hlaing on assuming office as the President of Myanmar, President Murmu said that India looks forward to working closely with the new government to strengthen the bilateral partnership further. The India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, has come into force today. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the CEPA will deepen the economic and strategic ties between the two nations. Addressing media in New Delhi, Mr. Goyal said that this partnership agreement is not simply a trade agreement. It is a statement of civilizational trust. The union minister informed that from day one, India will secure duty-free access on 98% of Oman's tariff lines, covering over 99% of India's export to Oman.
7: I am confident that this comprehensive agreement will add a new momentum to our ties with Oman. From day one, India will secure duty-free access on 98% of Oman's tariff lines, covering over 99% of India's exports to Oman. SEPA is a blueprint of our shared future.
0: Mr. Goyal informed that multiple consignments are being shipped today from Mumbai, Kolkata and Chennai to mark the operationalization of the agreement.
7: More than 10 consignments are being shipped availing preferential duty access in Oman from different parts of India. Oman is a gateway to the wider Gulf Cooperation Council, GCC countries of the Middle East, to East Africa and the Indian Ocean economy through its ports at Sohar, Dukum and Salalah.
0: Mr. Goyal underlined that the India-Oman agreement is part of India's 9 free trade agreements covering 38 nations, finalized in the last 3.5 years. He added, India is negotiating agreements with several countries, including Israel, Chile and Canada. Prime Minister Narendra Modi today shared an article written by Mr. Goyal on the India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement. The Prime Minister said the article emphasizes that the government's efforts to sign trade agreements with developed countries help improve the lives of every Indian. India and Australia today affirmed the importance of enhancing cooperation with regional partners to help maintain a free, open, peaceful, stable and prosperous Indo-Pacific during the second edition of India-Australia Defence Ministers' Dialogue in New Delhi. Both the countries agreed to enhance defence industrial collaboration in futuristic technology research. The meeting was co-chaired by Defence Minister Rajnath Singh and Australian Deputy Prime Minister and Minister for Defence Richard Marles. In his opening remarks, Mr. Singh said the defence ties between India and Australia have strengthened significantly.
8: In the coming years, we work with a renewed momentum, effectively contributing to growth of bilateral defence relations. Excellency, today is the 5th anniversary of elevation of our relations to comprehensive strategic partnership. I appreciate the significant strides made in our bilateral relationship across a wide range of sectors, from political exchanges to defence partnership.
0: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at EIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and download the News on EIR app. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. In our special feature today, we bring a report on government's measures towards the welfare of farmers. A report.
9: The Narendra Modi government has taken several initiatives in the last 12 years for the welfare of farmers and enhancing their income. One of the most significant steps has been the launch of the PM Kisan scheme, which is one of the largest welfare initiatives in the country. Under this Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme, farmers receive 6,000 rupees annually directly into their bank accounts. More than 4,28,000 crore rupees has been transferred into the accounts of around 9 crore 50 lakh farmer families. The schemes like PM Matsya Sampada Yojana and National Livestock Mission were also launched to increase farmers' income through multiple sources. The efforts like PM Krishi Sichai Yojana and the Soil Health Card scheme have strengthened irrigation and soil productivity. Since 2014-15, nearly 26 crore soil health cards have been issued till March this year. The Fasal Bima Yojana has helped nearly 23 crore farmers with crop insurance claims worth 1,92,000 crore rupees. The Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana is providing a monthly assured pension of 3,000 rupees to small and marginal farmers. Talking to Akashwani News, a beneficiary of Uttar Pradesh hailed the scheme, saying that it is beneficial for farmers as it will support their livelihoods.

दामिनी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। गीतकार थे समीर, संगीतकार नदीम शमन। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में लीजिए सुनिए साजन फिल्म का गीत। गीतकार हैं समीर, संगीतकार नदीम शमन।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम गरीब कल्याण।

0: सो ऑन एंड सो फोर्थ. लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ अगर हम बात करें वो है जल जीवन मिशन का. टैप वाटर ये एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारे, खास करके भारत देश में सीजनल रेन्स एंड ऑल यू नो एंड वाटर बोर्न डिजीजेज, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता था. जल जीवन मिशन एक ऐसा एक स्कीम मतलब ये लेकर आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जहाँ पर कि हर घर नल योजना की शुरुआत की गई. कैसे देखते हैं आप, खास करके अगर हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ को प्रायोरिटी देने की बात करें तो?
1: ये बहुत एक महत्वपूर्ण योजना है सरकार की, जिसके तहत सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है एक हाउस होल्ड की महिला को, क्योंकि हम जानते हैं कि इतने साल हो गए हमारी इंडिपेंडेंस को, लेकिन फिर भी अभी भी इतने सारे हाउस होल्ड्स ऐसे थे रूरल एरियाज़ में, ये रूरल हाउस होल्ड्स को जोड़ने की स्कीम है ज़्यादातर, और इतने सारे हाउस होल्ड्स थे कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते थे, पढ़ते थे. आज तक ऐसी खबरें छप रही थी कि 8-8, 9-9 घंटे तक लोगों को चल के जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, या बहुत किलोमीटर्स का सफ़र तय करके दूर दराज इलाकों में लोगों को जाना पड़ता है. जो हिली टेरेन्स हैं उसमें पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी, जो डेज़र्ट एरियाज़ हैं खासकर जैसलमेर, राजस्थान और गुजरात, कच्छ के साइड में बहुत सारे ऐसे हमें एविडेंस मिलते थे कि जहाँ पानी की समस्या इतने साल बाद भी आज़ादी के, मतलब ये एक किसी भी देश के लिए कोई अच्छी कन्वीनियंट स्थिति नहीं है, कन्वीनियंट पिक्चर नहीं है कि आप एक बेसिक सुविधा, जैसे आप पावर की बात कर लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लीजिए, या पानी की बात कर लीजिए, टॉयलेट्स की बात कर लीजिए, ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो आम तौर पर अभी तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन किसी वजह से जो नहीं हो पाई. और आपने सही कहा कि अगर आप स्वास्थ्य लाभ भी देखें इस योजना से तो बहुत ज़्यादा लाभ होता है, और इस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, बहुत लोगों ने बहुत सारे रिसर्च और एविडेंस बेस्ड पेपर्स भी निकाले हैं, जिससे ये भी कहा है कि इससे जल जीवन मिशन की वजह से बीमारियों में बहुत कमी आ रही है, चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स इम्प्रूव हो रहे हैं, महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति इम्प्रूव हो रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट गर्भवती महिला के लिए ये एक बून की तरह आया है, क्योंकि बहुत सारी वाटर बोर्न डिजीजेस गर्भवती महिला को गंदे पानी की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ता था. और जल जीवन मिशन से क्या हुआ है, ना सिर्फ पेयजल घर तक गया है, बल्कि बहुत सारी मतलब प्रोडक्टिव टाइम जो महिला का पानी इकट्ठा करने में जाता था वो अब और चीज़ों में वो व्यस्त हो सकती है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर बन सकती है, वो लखपति दीदी योजना का लाभ उठा सकती है, क्योंकि उसके पास अब वक्त है, घर में पानी आ रहा है. ये सुनने में बहुत छोटी बात लगती है लेकिन बहुत बड़ा प्रभावी कदम है.
0: जी जी जी अदिति, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ें. शुभमय, सैनिटेशन की अगर बात करें, स्वच्छ भारत मिशन ये एक फ्लैगशिप मिशन जिसे कहें, और जब भी इसे इम्प्लीमेंट किया गया था उसके पहले शायद पता नहीं इस तरह की योजना कभी सुनने को नहीं मिली थी. सैनिटेशन की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन जिसे ओपन डेफिकेशन एलिमिनेट ऑलमोस्ट कर दिया गया, मास कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी टॉयलेट्स, ये कोई छोटी बात नहीं है. शुभमय, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में?
2: हाँ, ये वाला चीज जो आप देखेंगे
0: जी,
2: कि पानी का सप्लाई, स्वच्छ भारत मिशन, इन सभी चीजों से जो बदलाव अभी दिख रहा है वो है काफी सिग्निफिकेंट. आप इसके पहले एक आम बात थी कि बहुत सारे जगहों पे ओपन डिफिकेशन और उससे चलते जितने सारे तरह की बीमारियां, उनका खासकर मानसून में फैल जाना, बाकी समय में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें एक आम सरफ चीज था कि भाई होता है, क्या किया जाए. इसमें जो भी जो नेशनल हेल्थ सर्वे के आप डेटा देखेंगे तो सबसे बड़ी बदलाव आप उस डेटा से देख सकते हैं कि ये एक से कहते हैं आपका एक मेजरमेंट आ गया है कि कितना और कितना प्रभावी ये सारे बदलाव हुए हैं. अभी आप, मैं आग्रह करूंगा कि कोई आकाशवाणी के जो लिसनर्स हैं, कभी अगर वो ट्रेन का सफर करे, दूर दराज के रास्ते में चलते हुए एक जो कॉमन साइट था ओपन डेफिकेशन का, वो करीब एकदम वैनिश हो गया. और ये बहुत ही बड़ा बदलाव है, इसमें टाइम लगा, इसमें करने में शुरुआत में बहुत सारे हिचक आए, बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस करने पड़े, लोगों को बहुत सारे हिदायतों के साथ साथ बहुत सारे आग्रह का भी इंटरेस्ट चीजें दिया गया, इधर उधर की जिसे कहते हैं शॉर्टकमिंग्स भी आई, लेकिन इतने साल के बाद अब जाके उनका इफेक्ट लोगों के जिंदगी के ऊपर अभी दिख रहा है. और ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज इसलिए है कि ये एक तरफ एक सिविक चेंज आ गया है हमारे देश में, बहुत सारे इलाकों में. अब जिन सारी चीज़ों की बात करें, जैसे ओपन डेफिकेशन, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन के साथ उज्ज्वला, या उसके पहले जब जैम ट्रिनिटी, इन सब

0: Gujarat alone, as we can see, is of three stages: Shishu, then Kishore, and then Tarun. So there are three stages in which, so you graduate from one to another. To be able to do that sort of a thing, you need a considerable amount of financial, what I should say, architecture in place. And that is a very interesting innovation that has been created. Obviously, compared to, say, Ujwala or Sakshat Mission or missions like the Swachh Bharat Mission, this is relatively more recent. So it'll start showing its effect later. But already you can see from the PLFS survey, the Periodic Labor Force survey, that about 50% of Indians are now reporting self-employment. And that self-employment is not distress employment. It is employment, self-employment that is being made possible for a large number percentage of them because they are confident that they can take on these enterprises and can take on capacity building, expansion of their products and services, which wasn't possible earlier. How it will pan out is a very big thing. Remember, we are talking about a population base, which is the largest population base in the world. To be able to create self-employment in that sort of a large population, with being able to support themselves, being able to support their families, being able to carry on the business for long length of time, not being drawn into the race for getting a job. Here, there we are talking of plenty of changes, which is not very easy to think of as just, you know, suddenly that we've done it and it's one-time support. It's not a one-time support. It's something which is actually a result of series of interventions, which brings a scheme like Mudra into being a success that it is being envisaged.
1: Right, Shubh. Main Diti, abhi Shubh ne self-employment ki baat ki, stand-up India scheme bhi ek aisi scheme hai jiske tahat 15,000 प्लस करोड़ लोन अभी तक डिसबर्स किए जा चुके हैं, इस बारे में भी थोड़ा हमें बताएं। और पीएम स्वनिधि योजना जो कि एक एक बहुत ही, जिसे कह सकते हैं, एक फ्लैगशिप स्कीम जिसे कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को ये लाभान्वित कर रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे?
2: देखिए, ये जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, ये एक बहुत कॉन्सिक्वेंशियल रिफॉर्म है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे याद है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ साथ ही इसका आरंभ किया गया था कोविड-19 के दौरान। जून 2020 में ये शुरू की गई थी। उस वक्त मंशा ये थी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो बहुत बुरी तरीके से हिट हुए थे, जिनकी वजह से हम और आप कोविड से लड़ पाए थे, क्योंकि वो सब्जी बेच रहे थे, वो वेयर्स बेच रहे थे, तो हम उसको खरीद रहे थे।
1: इवन अगर गिग वर्कर्स की बात करें,
2: बिल्कुल गिग वर्कर्स की भी स्वनिधि में वो भी काफी हद तक कवर होते हैं, तो उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी कि बेसिकली आइडिया था कि वर्किंग कैपिटल जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको दी जा सके, ताकि वो ऐसा ना हो कि कोविड-19 की वजह से बिल्कुल ही त्रस्त हो जाएं। तो तब से इतनी इम्पोर्टेंट बन गई स्कीम और इसका लाभ इतना दिखाई देने लगा फाइनेंशियल सिस्टम में कि स्ट्रीट वेंडर्स को डिग्निटी मिली, फाइनेंशियल इंक्लूजन मिला। सबसे इम्पोर्टेंट होता है वर्किंग कैपिटल हाथ में है तो आप 10 तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। तो अब क्या किया गया है, हाल ही में 2025 में यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को रिस्ट्रक्चर भी किया है और लोन देने की जो अवधि है वो 2030 तक बढ़ा दी गई है। और ना सिर्फ ये किया गया है, तीन लेवल्स पर लोन दिया जा रहा है स्वनिधि में स्ट्रीट वेंडर्स को। पहले लेवल पर आप ये 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है, वैसे ही दूसरे लेवल पे 20,000 से 25,000 कर दिया गया है, और फाइनल लेवल जो है वो 50,000 है। और इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है उन लोगों को जो टाइमली रीपेमेंट कर रहे हैं। प्लस एक बहुत महत्वपूर्ण जो इस स्कीम का बिंदु है वो ये है कि अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर पा रहे हैं तो उस स्थिति में आपको कैशबैक इंसेंटिव भी दे रही है ये स्कीम। तो अभी तक अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि करीब 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स पूरे देश में हैं जो इसमें लाभान्वित हो चुके हैं, और करीब 17,000 करोड़ तक का जो लोन है वो दिया जा चुका है। 122 लाख लोन्स दिए जा चुके हैं करीब 17,000 करोड़ के।
1: राइट अदिति, लेट्स टॉक द वुमेन फोक लखपति दीदी अभियान। ये लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं बन चुकी हैं लखपति दीदी, और 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी है, कुछ बताएं इसके बारे में।
2: जी, ये एक बहुत बड़ी मुहिम है सरकार की। और किसान सम्मान निधि की जो बात हुई उसमें बस छोटी सी एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि जब ये अमाउंट तय हो रहा था तब एक स्टडी करवाई गई थी कि फार्मर्स का कॉस्ट इनपुट क्या है, उनकी कॉस्ट कवर करने का ये कवायद है जो 6,000 की रकम तय की गई है। ऐसा पाया गया कि अगर ये दे दी जाए तो एटलीस्ट उनका जो इनपुट है वो कवर हो जाएगा। इस वजह से ये 6,000 पे तय हुई थी। पर अब जो महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, महिलाओं को क्या किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बहुत सारे वक्तव्यों में ये कहा है कि विकसित भारत के चार स्तंभ होंगे, जिसमें से पहले हम चर्चा कर चुके हैं गरीबों की, उसके बाद हम चर्चा कर चुके किसानों की, तीसरा यूथ, आपने स्टैंड अप इंडिया की बात की, और अब चौथी आप बात कर रहे हैं महिलाओं की। ये चार स्तंभ हैं। जब तक आप इनको फाइनेंशियली एम्पावर नहीं करते, तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि आप विकसित भारत के गोल को अचीव कर पाएं। जिसकी वजह से ये हुआ है कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की मूवमेंट इस देश में चल रही है। करीब 80 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस वक्त कार्यरत हैं। उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिलाएं जो भाग ले रही हैं, लखपति दीदी योजना उसके तहत ये कोशिश कर रही है कि हर महिला एक साल में 1,00,000 रुपए अपने बलबूते पर कमा सके। उसमें तरीके तरीके के प्रावधान किए गए हैं, जैसे द्रोण दीदी का प्रोग्राम भी उसके साथ इंटीग्रेट किया गया है। कुछ महिलाएं द्रोण दीदी प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग लेकर खेतों में ड्रोन के माध्यम से मतलब पेस्टिसाइड्स छिड़काव कर रही हैं या और बहुत चीज़ें कर रही हैं। सिमिलरली कुछ लोगों को आप हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व कर रहे हैं। इस तरीके से डाइवर्सिफाई किया जा रहा है, फिशरीज में भी इन्वॉल्व कर रहे हैं महिलाओं को। उनका फाइनेंशियल जो इक्वेशन है, फाइनेंशियल जो एम्पावरमेंट है, उसको बढ़ाने की कवायद है। और एक चीज़ की वर्ल्ड बैंक की अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी, जिसको हम जिनी इंडेक्स के नाम से जानते हैं, वो देशों को मापती है इस माध्यम से कि कितनी इक्वल सोसाइटीज़ हैं और जो फ्रूट्स ऑफ पावर हैं वो कितनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं लोगों में। ये जितना कम होता है इसका वैल्यू, उतना एक सोसाइटी को इक्वल माना जाता है। तो वहाँ मैं पढ़ रही थी कि भारत का जो वैल्यू है जिनी इंडेक्स में वर्ल्ड बैंक की, वो 25.5 है और चाइना का 35.7 है और US का 41.8 है। कहने का मतलब है कि ये जो सरकार ने एक लैंडस्केप तैयार किया है वेलफेयरिज्म का, इससे ये प्रूव हो रहा है, और ये थर्ड पार्टी ऑडिट है, दुनिया की बहुत बड़ी एजेंसी है वर्ल्ड बैंक की, हम और आप नहीं कह रहे हैं या सरकारें नहीं कह रही हैं यहाँ बैठकर, ये एक थर्ड पार्टी ऑडिट एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी कह रही है कि भारत में अब धीरे धीरे वेलफेयर बेनिफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने लगे हैं। और जैसा आपने अपने वक्तव्य में कुछ देर पहले कहा कि एक्सट्रीम पावर्टी, जिसका मेजर क्या है, उसका मेजर है कि $3 से कम पर प्रतिदिन कितने लोग इस देश में रहते हैं, उसकी जो संख्या है वो 16.2% 2011-12 में थी और अब घट के 5.3% रह गई है। तो धीरे धीरे एविडेंस क्रिएट हो रही है। इसी वजह से बहुत सारी एजेंसीज, जो सरकारी ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल एजेंसीज भी, अपने एविडेंस बेस्ड पेपर्स में ये कह रही है कि भारत अब उस तरफ बढ़ रहा है जहां उसको विकसित भारत बनने के लिए जो मैकेनिज्म्स चाहिए थे वो इन प्लेस हैं। विकसित भारत का क्या मतलब है? विकसित भारत का मतलब है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है हमने अपनी। अभी हम लो मिडिल इनकम कंट्री के कैटेगरी में हैं, हमें हाई इनकम कंट्री बनना है 2047 तक। वो बनने के लिए चर्चा की है आपने, जिन तबकों की, उनको आपको धीरे धीरे फाइनेंशियली इंक्लूसिव बनाना है, उनको एम्पावर
1: करना है। राइट राइट, थैंक यू सो वेरी मच शुभमा एंड अदिति, बोथ ऑफ यू फॉर हैविंग जॉइंड अस एंड शेयर्ड योर व्यूज ऑन द टॉपिक। थैंक यू सो वेरी मच।
2: थैंक यू।
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं और उनका जमीनी असर। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक सुभमोय भट्टाचार्य जी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशित कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR@nsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: इन द स्पेशल सीरीज यू आर लिसनिंग टू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, key welfare schemes and their grassroots impact. Participants were Shubhamoy Bhattacharji, economic analyst, and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Nishit Kumar. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at AIRNSDtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। श्रोताओं, हमें खेद है कि 9:15 से 9:25 तक ट्रांसमीटर में आए विद्युत अवरोध के कारण आप हमारा प्रसारण नहीं सुन पाए। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है।

आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। रात के 10 बजे हैं, लीजिए सुनिए पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम सुरों का सफर। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, तो स्वीकार कीजिए मंदाकिनी मिश्रा का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और हेमंत कुमार के गाए बहू रानी इस फिल्म के गीत के साथ। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार एसडी बर्मन। फरमाइश है हमारे इन श्रोताओं की। भाटापारा से बचकमल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भिगू, विनय ठाकुर। भाटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री। दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा, वाणी वर्मा। खैरागढ़ से रविंद्र अग्रवाल, पुष्पलता, डॉक्टर झरना, प्रेरणा, दीक्षा, शिक्षा अग्रवाल। नवागढ़ कटी से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। बेमेतरा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता, कमलकांत, वीरेंद्र ब्रजकांत सारथी। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले, राजदीप, राशि, शीतल। तो लीजिए सुनिए आप सबकी फरमाइश पर ये गीत।

कार्यक्रम के अगले गीत के लिए फरमाइश है हमारे इन श्रोताओं की। डोंगड़ गांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, सिमगा से डॉक्टर प्रदीप, सविता जैन, देवेंद्र जैन, कटुरा तालाब रायपुर से मोहनलाल देवांगन, प्रभा देवी देवांगन, सर्रेगातापाड़ से लावण्या साहू, उपासना देवराज, ओम कुमार, पुष्पराज, प्रभुराम साहू, जामुल से विकास वर्मा, खुशी वर्मा, ग्रंथ संजय प्रधान, पूजा प्रधान, बेलरगांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु, अंकित देवांगन, कोटा रायपुर से योगिता वर्मा, रुचि खुशी, उज्जवल वर्मा, यहीं से है अरुण वर्मा, अनिल वर्मा, ईश्वर वर्मा और दिनेश सेन, रामनगर रायपुर से राजेश अंबादी, शशिकला, पूजा अंबादी, दतरेंगी से विश्राम यदु, पार्वती, प्रतिमा, रीना, लक्ष्मीना यदु। तो लीजिए सुनिए आप सबकी फरमाइश पर एक दिल सौ अफसाने, इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

दिल एक मंदिर। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत। मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में, गीतकार हैं हसर जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। फरमाइश है हमारी इन श्रोताओं की। पहंदा पलारी से नीतीश कुमार, तनुजा, ईशांत, लखन, सावित्री। पीपरलोड सरगांव से दीपेश कुमार, पूनम, ज्योति, शिवांश। हठौत बाजार से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार पटेल, समीर, राजकुमारी पटेल। चिरमिरी कुरासिया से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह और राम सहोदर। नागरकोहरा से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी, विपुल कांबड़े। सौंगामगलोड से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार चंदन। पंडरिया से उत्तम कुमार, बघेल, रुखमणी, साहिर और भारती। तो लीजिए सुनिए आप सबकी फरमाइश पर दिल एक मंदिर इस फिल्म का गीत।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम सुरों का सफर। आमने सामने लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सब। सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम, रेशमा, आदिबा। बेरडी से राजेश सोनी, कंचन, गायत्री, वैष्णवी, चंचल, अर्जुन, धीरज। उमरखेड़ से अभिजीत, सरिता, प्रिंस, एकांश। बलौदा से दिधारण गौतम, अंजलि, आनंद, समृद्धि पटेल। बाटापारा से अमृता यादव, पार्वती, ईश्वरी, लक्ष्मी, प्रेरणा, डिम्पी यादव। मानूरा से पेंटर तुलसीराम डेरे, मायावती, संदेश, आदेश, किरण, प्रज्वल डेरे। महासमुंद से अदालत दास, वैष्णव, मानस, सतीश, रीचा, गायत्री, भीषम दास, मानिकपुरी। बबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम, प्रोनिका, प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम। रिंगनी से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। तो लीजिए सुनिए आप सबकी फरमाइश पर आमने सामने इस फिल्म का गीत।

आवारा फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन। फरमाइश है हमारी इन श्रोताओं की, बेमेतरा से राज और सारिका वैष्णव, खैरागढ़ से देवेंद्र कांति, गौरी, सुधीर, जागृति, जयंती और सक्षम चौबे, सक्षम महोबे, धरसीवा से छिदुलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, अल्पना यादव, भिलाई से सुशील जैन, कल्पना, श्रेया, सौरभ, शौर्य और शुभम जैन, और मरीखुर्द से चूरामन लालवाड़े, जैनी वाड़े, विवेक कुमार वाड़े और नेहा वाड़े, ग्राम ब्रह्मासी से डगेश्वर राम साहू, गौरव साहू, नूतन घनश्याम, अलका जानवी साहू, हथनीपारा भाटापारा से चौराम वर्मा, मुकेश वर्मा, दुलारी वर्मा, दुर्गा दुर्गेश्वरी वर्मा, दिल्ली शहर मुरीगेट से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, दरचूरा से ददवा साहू, भूरी रेखा, मोतीलाल साहू, यहीं से हैं फिरंता साहू, दुलोरिन, कामेश्वरी, प्रथम कुमार साहू, पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल और दिव्यांश श्रीवास्तव। तो लीजिए सुनिए आप सबकी फरमाइश पर ये गीत।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए जिगरी दोस्त, इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फरमाइश है हमारे इन श्रोताओं की, तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल, मानस, गंगा देवी विश्वकर्मा, राजकोट से जूली, जगदीश, प्राची और प्रवीण, भावना, रोली, दिव्या, सृष्टि, आकांक्षा, बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार, हैप्पी, नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति, दीपा गुप्ता, हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी प्रिंस और सीताराम। तो लीजिए सुनिए आप सबकी फरमाइश पर जिगरी दोस्त फिल्म का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम सुरों का सफर, आकाशवाणी का जो रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात के 10:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए जयदीप घोष का सरोद पर बजाया राग परज बसंत में आलाप तथा मध्यलय एक ताल और द्रुत तीन ताल में एकगत। तबले पर आपके साथ संगति की है सुरेश भट्ट ने।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप जयदीप घोष का सरोद पर बजाया राग परज बसंत सुन रहे थे। तबले पर आपके साथ संगति की थी सुरेश भट्ट ने। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात के 11 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिसमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitarakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुँच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज के साथ तूफानी मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज शेयर बाय अपराजिता नायर। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said, both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said, Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
4: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
3: Mr. Misri said, both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan Multimodal Transit Transport Project. President Draupadi Murmu has said, Myanmar is an important partner in India's Neighbourhood First Act East and Mahasagar policies. Welcoming Myanmar President U Min Aung Hlaing at Rashtrapati Bhavan today, President Murmu said, both the countries share deep cultural, civilizational and spiritual ties that go back to centuries. The President said, Myanmar is India's gateway to Southeast Asia, as it is the only ASEAN country that shares a land border with India. Congratulating President Hlaing on assuming office as the President of Myanmar, President Murmu said that India looks forward to working closely with the new government to strengthen the bilateral partnership further. The India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement has come into force today. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the CIPA will deepen the economic and strategic ties between the two nations. Addressing media in New Delhi, Mr. Goyal said that this partnership agreement is not simply a trade agreement, it is a statement of civilizational trust. The Union Minister informed that from day one, India will secure duty-free access on 98% of Oman's tariff lines, covering over 99% of India's export to Oman. Mr. Goyal informed that multiple consignments are being shipped today from Mumbai, Kolkata and Chennai to mark the operationalization of the agreement. Prime Minister Narendra Modi today shared an article written by Mr. Goyal on the India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement. The Prime Minister said the article emphasizes that the government's efforts to sign trade agreements with developed countries help improve the lives of every Indian. India and Australia today affirmed the importance of enhancing cooperation with regional partners to help maintain a free, open, peaceful, stable and prosperous Indo-Pacific. During the second edition of India-Australia Defence Ministers' Dialogue in New Delhi, both the countries agreed to enhance defence industrial collaboration in futuristic technology research. The meeting was co-chaired by Defence Minister Rajnath Singh and Australian Deputy Prime Minister and Minister for Defence Richard Marles. BJP National President Nitin Naveen today held a meeting with senior party office bearers and workers in New Delhi. Talking to media, party MP and spokesperson Dr. Sambit Patra shared key details, highlighting discussions on Narendra Modi government's 12 years of service, organizational expansion and future initiatives aimed at broadening the party's outreach across various sections of society. He said that the government is completing 12 years in office and everyone has witnessed how India has progressed under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, with advancement taking place across every sector. Mr. Patra said, today, the Bharatiya Janata Party and the NDA have been given the opportunity to serve in government in 22 states. The Supreme Court today refused to entertain a plea seeking that the NEET UG 2026 retest be conducted in computer-based test mode instead of the existing pen and paper format. The India Meteorological Department has issued an orange alert for thunder squalls conditions over Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh till tomorrow. And that is the end of this news bulletin.
0: मीडियम व्यू 305.81 मीटर अर्थात 981 किलो हर्ट्स और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की सांध्यकालीन सभा का यही समापन होता है। कल सुबह 5:53 पर पहली सभा में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।

के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की सांध्यकालीन सभा का यही समापन होता है। कल सुबह 5:53 पर पहली सभा में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।